सुप्रभात। FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948, वैशाख मास की तिथि 23, तदनुसार 13 मई ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्र परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगु वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test on NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for investigation in the matter. The NEET UG 2026 examination was conducted by the National Testing Agency on 3rd of this month. In this case, Special Operations Group of the Rajasthan Police has so far detained 15 people. The Special Operations Group yesterday detained an alleged mastermind identified as Manish from Jaipur. Nashik Police have also detained a man in connection with the NEET paper leak case. CBI has now taken his custody. In Tamil Nadu, the TVK government is scheduled to prove its majority in the assembly today. Chief Minister C. Joseph Vijay has been holding meetings with leaders of supporting parties to consolidate support ahead of the floor test. Along with the backing from allies, the TVK government has secured the support from the breakaway faction of AIADMK and the lone MLA of AMMK, S. Kamaraj. The TVK now has support of around 150 MLAs in the assembly. Meanwhile, in a dramatic turn of events in the political situation in Tamil Nadu yesterday, the AIADMK split into two groups over extending support to the government. The faction, led by former Chief Minister and Party General Secretary Eddapadi K. Palaniswamy, has directed party MLAs not to support the TVK government. In West Bengal, following the change of government, the state police has adopted a stringent stance regarding law and order and past cases of political violence. In this regard, ADG Law and Order issued a detailed directive yesterday to all police commissioners, police superintendents and railway police authorities mandating a series of immediate actions. The directive orders a fresh review of all cases related to violence following the 2021 assembly elections, including those where final reports have already been submitted. In Maharashtra, 6 devotees were killed and around 15 were injured after a wall collapsed during a religious gathering in Jat Tehsil of district yesterday. More than 300 devotees had gathered at the site when strong winds accompanied by heavy rain lashed the area. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the loss of lives. He has wished for the speedy recovery of the injured. The fragile ceasefire between the United States and Iran appears increasingly unstable after President Donald Trump rejected Tehran's latest peace proposal, describing the agreement as being on massive life support and dismissing Iran's counteroffer as garbage. The sharp exchange has deepened uncertainty over efforts to prevent a wider conflict in West Asia. On the other hand, Iran's parliament speaker, Mohammad Bagheer Ghalibaf, warned that the country's armed forces were prepared to deliver a lesson-giving response to any aggression, while Tehran defended its proposal as reasonable and generous. U.S. President Donald Trump is scheduled to arrive in Beijing today for a high-stake three-day visit to China. The much-anticipated meeting between Donald Trump and Chinese President Xi Jinping is expected to feature discussions on several aspects of bilateral ties, with Mr. Trump indicating that trade would be a key topic on the agenda. The visit will mark Trump's 7th face-to-face meeting with Xi and the first trip by a U.S. president to China since 2017. The India Meteorological Department has issued red alert for heat wave conditions in Rajasthan. Border districts of state are currently reeling under severe heat wave conditions. Temperatures at several places are being recorded between 45 and 47 degrees Celsius. Barmer was the hottest place in the state yesterday, with a maximum temperature recorded at 48.3 degrees Celsius. In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Sunrisers Hyderabad by 82 runs to take the top position in the points table with a compelling all-round show in Ahmedabad last night. Chasing the target of 169 runs, Sunrisers Hyderabad were bundled out for just 86 runs in 14.5 overs. In today's fixture, Royal Challengers Bengaluru will take on Kolkata Knight Riders in Raipur. The match will begin at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम खेती की बातें। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कृषि में AI की भूमिका, इस विषय पर कुछ जानकारी।

खेती की बातें सुनने वाले सभी खेतियर भाई बहनों को जोहार। किसान भाई बहनों, आज विज्ञान इतनी तरक्की कर गया है कि हर क्षेत्र में इसका उपयोग बढ़ गया है। कृषि क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। पारंपरिक तरीके से की जाने वाली खेती में कई बार सही समय पर उचित जानकारी न होने की वजह से काफ़ी नुकसान भी आपको उठाना पड़ता है। ऐसे में AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता कृषि क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में उभर रहा है, जो पारंपरिक खेती को स्मार्ट फार्मिंग में बदल रहा है। खेतीर भाइयों, AI आधारित तकनीकें आपके फसल के उत्पादन बढ़ाने, संसाधनों के कुशल उपयोग और जोखिम कम करने में सहायता करता है। AI फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, सटीक कृषि, मौसम और फसल का पूर्वानुमान, डिजिटल कृषि और सलाह जैसे कामों में मदद करता है। AI सेंसर मिट्टी की नमी, पोषक तत्व का स्तर और उर्वरक के बारे में पूरी जानकारी आपको दे सकता है। इससे आपको मिट्टी में कितनी सिंचाई करनी है, कितने पोषक तत्व डालना है और कितनी मात्रा में खाद का उपयोग करना है, इसकी सही जानकारी मिलती है। AI आधारित इमेजिंग और कंप्यूटर विजन तकनीकी फसलों में कीटों, रोगों या कुपोषण की पहचान शुरुआती चरण में ही कर लेती है। इससे आप शुरू में ही फसलों की सुरक्षा कर सकते हैं। AI आधारित एप्लीकेशन बुआई की सिस्टम गहराई, बीज उपचार और मौसम के आधार पर सटीक सिंचाई की सलाह देता है। यानी बीज को किस तरह बीज उपचार करना है और कितनी गहराई में बोना है, साथ ही साथ उसके लिए कितनी पानी की ज़रूरत है, इसकी भी वो जानकारी देता है। ड्रोन के माध्यम से AI फसलों की मैपिंग करके उर्वरकों और कीटनाशकों का लक्षित छिड़काव करता है। यानी फसल को कितने उर्वरक की ज़रूरत है और कितनी मात्रा में कीटनाशक का छिड़काव करना है और किस तरह करना है, इसकी भी वो जानकारी देता है, जिससे लागत और रसायनों का उपयोग कम होता है। AI तापमान, वर्षा और हवा की गति की सही जानकारी दे सकता है। इससे आप बुआई या कटाई किस समय करें, इसका निर्णय आप ले सकते हैं। AI एल्गोरिदम संभावित फसल उपज का आंकलन करता है, जो आपके बीमा दावे और विपणन में मदद करता है। किसान ई मित्र चैटबॉट एक वॉइस बेस्ड AI चैटबॉट है, जो आपको आपके भाषा में सवाल का जवाब देता है, जिससे कि आपको समझने में आसानी होती है। और साथ ही साथ इससे आप सरकारी योजनाओं की भी जानकारी ले सकते हैं। खेतीर भाई बहनों, एग्री स्टैक पहल से आप ये जान सकते हैं कि कम लागत वाले ऋण कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी जानकारियाँ सही डेटा आपको दे सकता है। किसान भाई बहनों, कृषि क्षेत्र में AI का इस्तेमाल कर आप अच्छी उपज प्राप्त कर सफल किसान बन सकते हैं। इस जानकारी के साथ ही खेती की बातें कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आज का चिंतन। गौतम बुद्ध के अनुसार भूतकाल में मत उलझो, भविष्य के सपनों में मत खो जाओ, वर्तमान पर ध्यान दो, यही खुश रहने का रास्ता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनवा रहे हैं ये देशभक्ति गीत।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना। अब आइए सुनवाते हैं भक्ति रचनाएं। प्रथम प्रस्तुति है सुरेश वाडकर के स्वर में।

राजाधिराजाय प्रसन्नसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामां कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति।

जमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौमः सार्वायुष आन्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्य

0: सभासदैति।
1: अब आइए सुनवाते हैं ये अगली रचना सुरेश वाडकर और कविता कृष्णमूर्ति के स्वरों में।

कविता कृष्णमूर्ति और साथियों के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस।

श्री रामचरित के विविध प्रकरणों की व्याख्या करने के पार्वती के अनुरोध पर सुख स्वरूप भगवान शंकर ने श्री राम की लीलाओं का सांगोपांग वर्णन किया। बोले, जिनके नाम के उच्चारण के साथ काशी में मरते हुए प्राणी को मैं शोक रहित कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु जड़ चेतन के स्वामी और सबका अंतर्मन जानने वाले हैं। पार्वती का प्रश्न सहज था, तब उन्होंने किस कारण मनुष्य का शरीर धारण किया? उमापति ने तब निर्मल रामचरितमानस की वो मंगलमय कथा सुनाई जिसे काकभुशुंडी ने विस्तार से पक्षीराज गरुड़ को सुनाया था। वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है, उसके बारे में ये नहीं कहा जा सका कि वो कारण बस यही है। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षसों का प्रकोप बढ़ जाता है, तब तब प्रभु विविध रूपों में शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस, ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वित्री कड़कम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना। अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवीके सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच कराने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा है कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम

0: फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में कुछ स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान दौरे पर रहेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अल्पकालीन अनुमानों और चौथी तिमाही के अनुमान जारी करने की तिथि संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि 7 जून को अवकाश होने पर अनंतिम अनुमान पिछले कार्य वर्ष पर जारी किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बदलाव आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में है। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। वहीं जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिन तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर।

श्रोताओं, अब आइए आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:10 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत में गजलें। 7:20 का समय होगा लोकगीतों का और 7:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरांजलि स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम का प्रसारण समय होता है सुबह के 7:50 पर। सुबह 8:00 समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा और यहीं से आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज़ 8:15 पर। 8:30 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। 8:45 पर आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। सुबह 9:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा। 9:05 पर कार्यक्रम सुरंजना में आज आप सुनेंगे एक ही फिल्म से गाने। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत का प्रसारण होगा। सुबह 10:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा और यहीं से आप सुन सकते हैं 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 10:10 पर विश्व दर्पण। 10:20 पर श्रोताओं, आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। सुबह 11:00 और दोपहर 12:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किए जाएंगे। 11:05 पर कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर की प्रस्तुति होगी और दोपहर 12:05 पर आप सुनेंगे भावगीत। 12:30 का समय होता है शास्त्रीय संगीत का। दोपहर के 1:00 हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 1:10 पर प्रादेशिक समाचार का प्रसारण होगा। 1:20 और दोपहर 2:30 पर आप सुनते हैं फिल्म संगीत। दोपहर के 2:00 मिड डे न्यूज आकाशवाणी दिल्ली

से प्रसारित किया जाएगा और यहीं से आप सुनेंगे 2:15 पर दोपहर समाचार। प्रादेशिक समाचार का प्रसारण समय होगा 2:55 का। अपराह्न के 3 बजे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित किया जाएगा। 3:30 पर आप आनंद ले सकते हैं सुगम संगीत में गजलों का। 3:45 पर लोकगीत कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी। संध्या 4 बजे एवं 5 बजे समाचार मुख्यांश आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। 4:02 पर आज के दिन हमारे श्रोता सुनते हैं नाटक। 4:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। संध्या 5:02 पर युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युवाणी का प्रसारण होगा। 5:30 का हमारा समय होता है कल कारखाने का। संध्या 6 बजे हिंदी में समाचार, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 6:20 पर संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। 6:10 पर आप सुन सकते हैं झारखंड के लोकगीत। 6:30 पर घर गृहस्थी कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी। संध्या 7 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। 7:10 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल। 7:15 का समय होता है बांग्ला कार्यक्रम का। 7:45 पर आज के दिन श्रोता सुनते हैं कार्यक्रम जिज्ञासा। रात्रि 8 बजे फिल्म संगीत प्रस्तुत किया जाएगा। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से। रात्रि 9 बजे यहीं से आप सुन सकते हैं न्यूज एट नाइट। 9:15 पर स्पॉटलाइट। रात्रि 10 बजे आज के दिन हमारे श्रोता सुनते हैं उड़िया कार्यक्रम और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किए जाएंगे और रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी।

0: श्रोताओं, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनवाते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे फनकार भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की गाई गजलें।

मिताली सिंह के गाये इस गजल के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का सुगम संगीत का ये सफर अब यहीं पूरा होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 7:20 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे लोक गीतों का कार्यक्रम। आज के लोक गीतों के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अंगिका गीत नेहा सिंह से।

नेहा सिंह और साथियों के गाए इस अंगिका गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का लोकगीतों का ये सफ़र अब यहीं पूरा होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 7:35 हो रहे हैं। अब आइए सुनवाते हैं सुरांजलि। कार्यक्रम सुरांजलि में आज आप सुनेंगे रविंद्र संगीत रोशनी बंदोपाध्याय सिंह।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रोशनी बंदोपाध्याय का गाया रविंद्र संगीत। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम सुरांजलि अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जमशेदपुर और अब आइए सुनवाते हैं स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज आप जानकारी प्राप्त करेंगे फिजियोथेरेपी सामान्य जानकारी। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जाहिद, जिनसे बातें कर रहे हैं राजेश कुमार।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आज हम बातें करेंगे फिजियोथेरेपी के बारे में। फिजियोथेरेपी है क्या और इसके क्या फायदे हम अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए उठा सकते हैं, इस बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जाहिद। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी होता क्या है।
2: फिजियोथेरेपी एक ऐसा मेथड है ट्रीटमेंट का, जिसमें फिजिकल थेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी के जरिए डैमेज टिश्यू को इसके हीलिंग को असिस्ट करने के लिए अप्लाई किया जाता है। और फिजियोथेरेपी में जनरली दो तरह का ट्रीटमेंट होता है, एक एक्सरसाइज थेरेपी द्वारा किया जाता है और दूसरा इलेक्ट्रोथेरेपी द्वारा किया जाता है।
1: अच्छा।
2: एक्सरसाइज थेरेपी में आपका कुछ स्पेशलाइज एक्सरसाइजेस होता है जो डिफरेंट मसल्स के लिए, डिफरेंट ज्वाइंट्स के लिए किया जाता है। और उसके बाद इलेक्ट्रोथेरेपी होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप की मशीनें होती हैं, जिसको अल्ट्रासाउंड मशीन कहते हैं, IFT मशीन कहते हैं, MST मशीन कहते हैं, जिसके जरिए आप बहुत डिफरेंट प्रॉब्लम्स को, जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल जो जनरली जो चल रहा है प्रॉब्लम, कमर दर्द का और सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस का, अर्थराइटिस का, यह बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखने मिलता है, तो इसका बहुत ही सही उपचार किया जाता है फिजियोथेरेपी के द्वारा।
1: आम एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी में जो एक्सरसाइज होता है उन दोनों में क्या अंतर देखने को मिलता है?
2: फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज जो होता है जनरली बेस्ड होता है पेशेंट के प्रॉब्लम को देखते हुए। किसी पेशेंट का जो प्रॉब्लम होता है वो स्टिफनेस से रिलेटेड होता है, तो स्टिफनेस को दूर करने के लिए कुछ मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज जो उस पर्टिकुलर ज्वाइंट के लिए ही किया जाता है।
1: अच्छा।
2: और किसी को मसल वीकनेस का प्रॉब्लम होता है तो मसल वीकनेस को दूर करने के लिए सम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जो पर्टिकुलर होता है उसके लिए वही अप्लाई किया जाता है। और जनरल फिटनेस के लिए जनरली जैसे लोग जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग के लिए जाते हैं, या कुछ टमी एक्सरसाइजेस के लिए लोग जाते हैं, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि वो पेशेंट नहीं होते, नॉर्मल लोग होते हैं जो अपने बॉडी को फिट करने के लिए जिम वगैरह जाते हैं और वहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं। तो फिजियोथेरेपी जो एक्सरसाइज होता है वो पार्टिकुलर पेशेंट्स के लिए होता है और अकॉर्डिंग टू पेशेंट रिक्वायरमेंट का होता है।
1: और मशीन या किसी इक्विपमेंट के द्वारा जो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट आप करते हैं वो किस तरह का होता है?
2: उसमें जैसे एक मशीन होती है जिसको IFT शॉर्ट में कहते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है इंटरफेरेंशियल थेरेपी। ये एक मशीन होती है जो कमर दर्द के लिए या गर्दन दर्द के लिए किसी भी एरिया में जहाँ पे पेन होता है।
1: अच्छा।
2: या स्टिफनेस होता है या फिर कहीं पे स्वेलिंग होती है उसको दूर करने के लिए बहुत ही यूजफुल मशीन है आज के दौर में फिजियोथेरेपी में, और यह काफी फेमस मशीन है। इसके जरिए जनरली स्पोंडिलाइटिस हो गया, स्पोंडिलोलिस्थेसिस हो गया, या फिर अर्थराइटिस हो गया, इस तरह के ट्रीटमेंट किया जाता है इस तरह के बीमारियों के लिए। फिर अर्थराइटिस में ये काफ़ी यूजफुल होता है।
1: अच्छा।
2: फिर एक इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, एक इंफ्रारेड लैंप होता है जो इंफ्रारेड रे के जरिए ट्रीटमेंट किया जाता है। एक मशीन होती है जिसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं
1: जी।
2: ये जनरल अल्ट्रासाउंड जो होता है गायनेकोलॉजिस्ट जो यूज़ करते हैं वो नहीं होता है, बल्कि
1: अलग होता है,
2: अलग होता है ये। और इसमें एक अल्ट्रासाउंड वेव होता है, वेव के जरिए से ट्रीटमेंट किया जाता है जो स्वेलिंग और पेन के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। और रिसेंट इंजरीज जो होती है, चोट लग जाना हो गया या स्पोर्ट इंजरीज में काफ़ी यूजफुल है अल्ट्रासाउंड।
1: इसमें कुछ दवाओं का भी आप उपयोग करते हैं क्या?
2: नहीं, इसमें कोई भी दवाएं यूज नहीं की जाती है, एकदम फ्री ऑफ टैबलेट्स और कैप्सूल ट्रीटमेंट आप कह सकते हैं इसको
1: जी।
2: क्योंकि इसमें इसीलिए आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में किसी तरह का आपको साइड इफेक्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं।
1: अच्छा।
2: मगर अभी इस मीडियम से मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको
1: जी,
2: कि अभी जमशेदपुर में या पूरे इंडिया ही को ले लीजिए तो क्विक फिजियोथेरेपी भी बहुत ज्यादा हो गए हैं।
1: अच्छा।
2: इसीलिए अगर पेशेंट किसी फिजियोथेरेपी को दिखाने जा रहे हैं तो ये जाने से पहले श्योर कर ले
1: जिस
2: फिजियोथेरेपिस्ट पर आप जा रहे हैं वो क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट ही है।
1: अच्छा।
2: तो इससे आपको कोई भी इसके साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस नहीं होते। ऐसे भी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट साइड इफेक्ट्स नहीं के बराबर है कंपेरिजन टू आप कोई भी एनाल्जेसिक ले रहे हैं या कोई भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट करा रहे हैं, दवा खा रहे हैं, तो कोई भी आप दवा खाएंगे जो भी आप खाते हैं उसका साइड इफेक्ट्स होता है लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप खा रहे हैं तो, मगर इस पद्धति में अगर आप जाते हैं तो इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है।
1: डॉक्टर साहब, आपने जो उपयोगी जानकारी दी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, फिजियोथेरेपी सामान्य जानकारी और इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर जाहिद। इसी के साथ हमारा आज का स्वास्थ्य चर्चा का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: उपभोक्ताओं तक पहुँचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
6: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
7: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
6: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
7: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
8: एक आवश्यक सूचना, नीतीश कुमार सिंह उपायुक्त सरायकेला खरसवां समस्त जिले वासियों से अनुरोध करते हैं कि वर्तमान में चल रही भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत अब आप स्वगणना के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही भविष्य में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और सरकारी योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र तक पहुँच जाएगा। आप अपने मोबाइल से sucensor.gov.in पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं भरें। यह पोर्टल झारखंड में 15 मई 2026 तक स्वगणना हेतु खुली रहेगी। आपकी गोपनीयता ही प्राथमिकता है। जिले के सुनहरे भविष्य और सटीक योजना निर्माण के लिए अपनी जिम्मेवारी निभाने की अब आपकी बारी है। सूचना समाप्त हुई।

0: और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
1: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडपाड़ी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी विप

0: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोग ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि सीपीआईएम के राज्य सचिव पी शुनगमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह पांचवा कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सोनाना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाश।

0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेकिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति यूवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को

0: पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है नया भारत और बदलती सियासी समझ, संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देश बंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है अब क्यूआर कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला, मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता। राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Political activities in Tamil Nadu turn hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test today. All India NR Congress leader N. Rangasamy to take oath as Chief Minister of Puducherry today. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi governments implement measures for fuel consumption following Prime Minister Narendra Modi's austerity appeal. Centre increases import duty on gold and other precious metals. IMD predicts early arrival of monsoon this year. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Sunrisers Hyderabad by 82 runs in Ahmedabad. And now the news in detail. In Tamil Nadu, political activities have turned hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test in the assembly today. In a dramatic turn of events, the AIADMK has split into two groups over extending support to the TVK government. Lone AMMK MLA S. Kamaraj has decided to support the TVK government. We have more from our correspondent.
3: The TVK with allies like the Congress, VCK, CPI, CPIM and IUML had enjoyed a majority of 120 to form the government in Tamil Nadu. After the government was sworn in, now it has the support of 30 AIADMK MLAs from the breakaway faction and one AMMK MLA, having a total of 151 MLAs. TVK will now have to prove the strength of the government today. The AIADMK led by General Secretary E. Palaniswamy has already said that those who do not adhere to the rules of the Whip will be expelled from the party. The party founded by MGR will be facing a major political crisis presently. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
2: Meanwhile,

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड हाई कोर्ट ने गुमला से लापता बच्ची मामले में लापरवाही पर जताई नाराजगी। वर्ष 2018 से अब तक तैनात रहे सभी 6 एसपी और जांच अधिकारियों को 9 जून को किया तलब। रांची में सतत खनन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य के लिए ग्रीन एनर्जी पर दिया जोर। कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे का आज धनबाद दौरा। बीसीसीएल और जेआरडीए के अधिकारियों के साथ करेंगे उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में आंधी और वज्रपात से भारी तबाही। रामगढ़ और हजारीबाग में वज्रपात से 31 मवेशियों की मौत। 15 मई को 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और झारखंड के डेविड मुंडा का भारतीय सीनियर पुरुष रग्बी टीम में चयन। उज्बेकिस्तान में होने वाली सेंट्रल एंड साउथ एशिया चैंपियनशिप में देश का करेंगे प्रतिनिधित्व। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड हाई कोर्ट ने गुमला से 2018 में लापता बच्ची के मामले में पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत ने मामले की धीमी जांच पर कड़ी नाराजगी जताते हुए वर्ष 2018 से अब तक जिला में तैनात रहे सभी 6 एसपी और 6 जांच अधिकारियों को 9 जून को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब किया है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस बच्ची को ढूंढने में विफल रहती है तो जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती है। रांची के आईआईसीएम में विज्ञान भारती द्वारा आयोजित सतत खनन और पारिस्थितिकी बहाली पर राष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न हो गई। समापन समारोह में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने वर्ष 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए झारखंड को कोल इकोनॉमी से ग्रीन एनर्जी इकोनॉमी की ओर ले जाने की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक किफायत बरतने की अपील का गिरिडीह में व्यापक स्वागत हुआ है। स्थानीय महिलाओं, डॉक्टरों और महिला उद्यमियों ने देश हित में अपनी

0: विदेश यात्राएं स्थगित कर दी हैं। वहीं लोगों ने सोना न खरीदने, खाद्य तेल और डीजल पेट्रोल की खपत कम करने का संकल्प लिया है।
1: मोदी सरकार ने अपील किया है कि हम लोग कम से कम पेट्रोल डीजल का उपयोग करें, और अभी जहां मैं जॉब कर रही हूं वहां से काफ़ी डिस्टेंस है हमारा 2 किलोमीटर। पहले स्कूटी से आती थी बट अभी मैं वॉक करके ही आती हूं, तो इससे मेरा सेहत में भी इफेक्ट पड़ा है। एंड मैं आम लोगों से भी अपील करूंगी कि वो भी पेट्रोल एंड डीजल का कम से कम उपयोग करें।
0: झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र भेजकर देश की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताई है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पत्र में 9 प्रमुख मांगे रखी हैं, जिसमें प्रधानमंत्री से 1 वर्ष तक विदेशी यात्राएं, चुनावी रैलियां और रोड शो स्थगित करने तथा कॉरपोरेट कर्ज माफी पर रोक लगाने की अपील की गई है।
2: उनसे हम भी कहना चाहते हैं, आप अपनी विदेश यात्राएं 1 वर्ष तक स्थगित रखें, आप अपना रोड शो तथा भाजपा की रैलियों को 1 वर्ष तक आप स्थगित रखें। मित्रों का ऋण माफ करना बंद कीजिए, आप अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों तथा 22 भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के काफिले पर 1 वर्ष तक लो।

0: गाड़ी लेके इधर उधर मत घूमिए, सोना मत खरीदिए। 2013 में कैसे उस समय के वित्त मंत्री चिदंबरम ने कहा था कि सोना मत खरीदिए।
1: जिला प्रशासन BCCL और JRDA के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। इसके अलावा वे बेलगड़िया टाउनशिप का दौरा कर विकास योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्ति वितरण करेंगे। उत्तरी छोटा नागपुर के DIG अंजनी कुमार झा ने हजारीबाग SP कार्यालय में कानून व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। उन्होंने मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध और गुमशुदगी के लंबित मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए अपराधियों के खिलाफ CCA के तहत कार्रवाई करने और गुंडा पंजी में नाम दर्ज करने का निर्देश दिया। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह में कानून व्यवस्था को लेकर हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने DGP तदाशा मिश्रा और पूर्व DGP अनुराग गुप्ता की नियुक्तियों को नियमों के खिलाफ बताते हुए सूबे की बदतर कानून व्यवस्था के लिए सीधे मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया।
2: लॉ एंड ऑर्डर झारखंड में बद से बदतर और इस स्थिति तक लाने के लिए राज्य सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री जिम्मेदार। तो जहां इस प्रकार की करप्ट ऑफिसर को सीनियर पोस्ट पर सरकार बैठा के रखे तो अच्छे अफसरों को तो मनोबल गिरेगा, अगर जिला में पदस्थापित करेंगे तो लूट तो मचेगी।
1: CRPF के स्पेशल DG दीपक कुमार ने गढ़वा स्थित पूर्व नक्सल प्रभावित बूढ़ा पहाड़ का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने ग्रामीणों से मिलकर उनका हाल चाल जाना और जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि जहां CRPF है वहां विजय निश्चित है।
3: तो जहाँ जहाँ हमारी फोर्स तैनात है वहाँ जाके फोर्स को देखते हैं किस तरह से कार्य कर रही है और क्या उनको दिक्कतें कुछ तो नहीं है। तो हमारे जवान पूरी तरह से हौसले में है, किसी भी तरह की कमी नहीं है। आप देखिए जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसमें सफलता प्राप्त कर रहा है।
1: राज्य की कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची में छात्राओं के साथ लोकप्रिय नागपुरी फिल्म सेरिंग देखी। फिल्म देखने के बाद मंत्री ने स्थानीय कला संस्कृति को बड़े पर्दे पर जीवंत करने के लिए कलाकारों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार क्षेत्रीय भाषाओं और लोक कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
4: पॉलिसी में भी सरकार काम कर रही है ऐसे कलाकारों को और आगे बढ़ावा देने के लिए, और हमारे झारखंड में कलाकारों में छुपी हुई बहुत हुनर है और अब जो नई जनरेशन आ रही है वो नए स्टाइल में नए आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मूवी प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से एक बहुत वृहद मार्केट है ऐसे मूवीज के लिए भी।
1: और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आज पलामू प्रमंडल और कुछ अन्य जिलों को छोड़ रांची सहित अधिकांश झारखंड में येलो अलर्ट जारी किया है, जहां 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं और बारिश हो सकती है। वहीं 15 मई को रांची, धनबाद और संताल परगना सहित कई जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले कल राज्य में आए भीषण चक्रवाती तूफान ने भारी तबाही मचाई। रांची में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी से कई इलाकों में पेड़ और होर्डिंग्स गिर गए, जिससे आधा दर्जन टोटो क्षतिग्रस्त हो गए। हजारीबाग, बोकारो और जमशेदपुर में झमाझम बारिश हुई, जबकि खूंटी में ओलावृष्टि और रामगढ़ व हजारीबाग में वज्रपात से 31 मवेशियों की मौत हो गई। झारखंड के स्टार रग्बी खिलाड़ी डेविड मुंडा का चयन भारतीय सीनियर पुरुष रग्बी टीम में हुआ है। वे 16 और 17 मई को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित होने वाले सेंट्रल एंड साउथ एशिया सीनियर पुरुष रग्बी चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेलने के लिए चुनी गई भारतीय टीम में जगह बनाकर उन्होंने राज्य का नाम रोशन किया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने नीट परीक्षा रद्द होने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है नीट रद्द, 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़। प्रभात

खबर की सुर्खी है अदिति का पता नहीं, नाले की झाड़ियों में मिला मांस, होगी फॉरेंसिक जांच। हिंदुस्तान के शब्द हैं, PVUNL की दूसरी यूनिट से उत्पादन शुरू। दैनिक जागरण के अनुसार जिस लापता बच्ची का शव समझ पोस्टमार्टम को भेजा, निकली पशु की हड्डी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड हाई कोर्ट ने गुमला से लापता बच्ची मामले में लापरवाही पर जताई नाराजगी। वर्ष 2018 से अब तक तैनात रहे सभी 6 SP और जांच अधिकारियों को 9 जून को किया तलब। रांची में सतत खनन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य के लिए ग्रीन एनर्जी पर दिया जोर। कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे का आज धनबाद दौरा। BCCL और JRDA के अधिकारियों के साथ करेंगे उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में आंधी और वज्रपात से भारी तबाही। रामगढ़ और हजारीबाग में वज्रपात से 31 मवेशियों की मौत। 15 मई को 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और झारखंड के डेविड मुंडा का भारतीय सीनियर पुरुष रग्बी टीम में चयन। उज्बेकिस्तान में होने वाली सेंट्रल एंड साउथ एशिया चैंपियनशिप में देश का करेंगे प्रतिनिधित्व। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में श्रोताओं, हम हाजिर होते हैं फिल्म संगीत लेकर।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर और अब हम हाजिर हैं फिल्म संगीत लेकर। सुबह की ताजी हवा, सूरज की पहली किरण और मन में एक नई उम्मीद, इस एहसास को और भी मखमली बनाने के लिए आइए सुनवाते हैं फिल्म बॉम्बे का ये गीत हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। महबूब की रचना है और धुन ए आर रहमान का है।

और अब लीजिए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गाना, फिल्म रोजा से हरिहरण और सुजाता मेहता की आवाजें हैं। पीके मिश्रा ने इस गीत को रचा है, धुन ए आर रहमान का है।

फिल्म रोजा के इस गाने के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का फिल्म संगीत का ये सफर अब यहीं पूरा होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 102.4 MHz पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनीसामी के नेतृत्व वाली गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना। अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कारपूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लेटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कल हैदराबाद स्थित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन में फील द जेल कार्यक्रम और जेल संग्रह का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने कहा कि जेलों को सुधार केंद्रों में बदला जाना चाहिए। जेल संग्रहालय में तेलंगाना की जेलों के इतिहास, निजाम काल की वस्तुओं और नागार्जुन सागर बांध के निर्माण में कैदियों की भूमिका को दर्शाया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बीच कल रद्द कर दी गई। सरकार ने सीबीआई को अनियमितताओं की व्यापक जांच के निर्देश दिए हैं। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून आने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर फैला हुआ था। अगले 24 घंटे में इसके और अधिक प्रभावी होने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुन सकते हैं कार्यक्रम सुरंजना में आज एक ही फिल्म से गाने।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
6: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
7: ज्ञान विज्ञान
8: इतिहास के पन्नों से,
7: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
8: मौसम का मिजाज,
7: अपने शहर की खबरें,
8: बातों मुलाकातों के साथ सुरीला मनोरंजन
7: और भी बहुत कुछ।
6: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
8: दिन के 11:05 से 12 तक
7: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
6: नमस्कार जमशेदपुर।
9: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 से 12:30 के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।
10: डॉक्टर,
6: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
10: हेलो डॉक्टर,
6: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 से FM 102.8

0: 4 MHz पर। विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ। हेलो डॉक्टर,
1: जलवायु और नवाचार, यह यूनेस्को का संदेश है। आज दुनिया की लगभग एक तिहाई बिजली अक्षय ऊर्जा से आती है। नई खोज और बेहतर टेक्नोलॉजी की वजह से पवन और सौर ऊर्जा का तेजी से विकास हुआ है, क्योंकि ये सस्ती पड़ती है। कई इलाकों में हाइड्रो पावर अब भी महत्वपूर्ण है, जबकि जियोथर्मल और बायोमास जैसे स्रोत भी अक्षय ऊर्जा के विकल्प देते हैं। जब दुनिया जीवाश्म ईंधन छोड़ रही है, तो हमें उत्सर्जन कम करने और मजबूत टिकाऊ ऊर्जा प्रणालियां बनाने के लिए अक्षय ऊर्जा में निवेश करना जरूरी है। यहाँ एक रोचक तथ्य है, साफ ऊर्जा स्रोत अब दुनिया की बिजली का लगभग एक तिहाई हिस्सा दे रहे हैं। यह दिखाता है कि नई खोज बदलाव ला सकता है।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और अब हम हाजिर हैं कार्यक्रम सुरंजना लेकर।

श्रोताओं, कार्यक्रम सुरंजना में आज आप सुनेंगे एक ही फिल्म से गाने। चलते चलते, यह है फिल्म का नाम। और इस फिल्म ने 2003 में ये फिल्म रिलीज हुई। शाहरुख खान और रानी मुखर्जी अभिनीत एक लोकप्रिय हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, जिसे अजीज मिर्जा ने निर्देशित किया था। श्रोताओं, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी और 2003 की सबसे ज़्यादा कमाई जाने वाली फिल्मों में से एक थी।

ये गीत आपने सुना अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीतकार थे जावेद अख्तर, संगीत निर्देशन जतिन ललित का है। आज के कार्यक्रम सुरंजना में हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं एक ही फिल्म चलते चलते के गानों से।

अभी आप सुन रहे थे अभिजीत और अलका याग्निक का गाया फिल्म चलते चलते का ये गीत। इस फिल्म के गानों को लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीत निर्देशन था जतिन ललित और आदेश श्रीवास्तव का। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम सुरंजना में हमने आपको सुनवाया चलते चलते फिल्म के गाने।

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
4: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
3: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
4: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आइए सुनवाते हैं देबू चौधरी का सितार वादन, राग है कल्याणी विल्लावत।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे राग कल्याणी विलावत पर सितार वादन देबू चौधरी से। इसी के साथ हमारा आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी ने आज पुद्दुचेरी की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित समारोह में पुद्दुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में ये 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुद्दुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीति में नाटकीय मोड़ आया, जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डपड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बीच कल रद्द कर दी गई थी। सरकार ने सीबीआई को अनियमितताओं की व्यापक जांच के निर्देश दिए हैं। वैश्विक ईंधन में कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के बेड़े में 50% वाहनों की कमी का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या को कम कर दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावित हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लेटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा में भाग लेने के इच्छुक लोगों से 19 मई से पहले आवेदन करने का आग्रह किया है। इस यात्रा के लिए पंजीकरण जल्द ही बंद होने वाले हैं। इच्छुक आवेदक आधिकारिक वेबसाइट kmy.gov.in पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और पंजीकरण करा सकते हैं। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक शुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों से देश के अडिग

संकल्प को प्रदर्शित किया। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: और अब मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के कल से नई दिल्ली में होने वाले सम्मेलन की तैयारियां पूरी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 3 दिन के चीन दौरे पर। रूस ने समरथ अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। युगांडा में युवेरी मुस्मेनी ने लगातार 7वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। और बैडमिंटन में बैंकॉक में थाईलैंड ओपन में कई भारतीय खिलाड़ियों के महत्वपूर्ण मुकाबले आज। अब समाचार विस्तार से। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडल भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक से पहले डॉक्टर जयशंकर आज नई दिल्ली में कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। वे आज चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैकेना से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरा वियेरा के साथ भी वे द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। शाम को डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। उसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दों पर हमारी बातचीत होगी।
0: विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा में भाग लेने इच्छुक लोगों से 19 मई से पहले आवेदन करने का आग्रह किया है। इस यात्रा के पंजीकरण जल्द ही बंद होने वाले हैं। इच्छुक आवेदक आधिकारिक वेबसाइट kmy.gov.in के माध्यम से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और पंजीकरण करा सकते हैं। भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष ने 2033 तक के लिए नया 8 वर्षीय देश रणनीतिक अवसर कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण आय बढ़ाना, लोगों की क्षमता मजबूत करना और देश भर में टिकाऊ आजीविका के अवसरों का विस्तार करना है। इस अवसर पर आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर ने बताया कि भारत और कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष की साझेदारी केवल लंबे समय से ही नहीं बल्कि रणनीतिक तालमेल के लिए भी जानी जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। वे कल से पेइचिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ शिखर सम्मेलन करेंगे। वे द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करेंगे जिसमें व्यापार पर विशेष बल दिए जाने की संभावना है। ये शी जिनफिंग के साथ ट्रंप की 7वीं आमने सामने की बातचीत होगी और 2017 के बाद किसी अमरीका के राष्ट्रपति की चीन की पहली यात्रा होगी। अपनी यात्रा से पहले ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि इससे आने वाले दशकों में दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध स्थापित करने में मदद मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और युद्ध मंत्री पीट हेक्सेथ सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से फोन पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने रणनीतिक सहयोग और आपसी हितों के समर्थन में संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में नवीनतम घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। उन्होंने क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा स्थिरता पर गंभीर प्रभावों के साथ साथ उनसे निपटने के लिए चल रहे प्रयासों की भी समीक्षा की। उधर पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच कतर ने कल ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर से संबद्ध एक शस्त्र समूह की बिबुयान द्वीप में घुसपैठ की निंदा की। अमेरिका में उपभोक्ता महंगाई दर अप्रैल में पिछले 3 वर्षों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान युद्ध से उत्पन्न हुए आर्थिक प्रभाव को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। अमेरिकी श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI अप्रैल में सालाना आधार पर बढ़कर 3.8% हो गया, जबकि मार्च में ये 3.3% था। अमेरिका इसराइल और ईरान के बीच संघर्ष के कारण फरवरी के अंत से पश्चिम एशिया में हिंसा बढ़ गई है। ईरान की जवाबी कार्रवाई से अमेरिका के क्षेत्रीय सहयोगी प्रभावित हुए हैं और होर्मुज जलडमरू मध्य लगभग बाधित हो गया है। सामान्य परिस्थितियों में दुनिया का लगभग 20% तेल और प्राकृतिक गैस इसी जलमार्ग से गुजरता है। इस रुकावट के कारण दुनिया भर में ऊर्जा कीमतों में भी तेज बढ़ोतरी हुई है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। रूस ने समृद्ध अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सफल परीक्षण पर रूसी सेना को बधाई दी। उन्होंने कहा कि समृद्ध दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल प्रणालियों में से एक है और इसकी क्षमता सोवियत दौर की वोयोमोदा मिसाइल प्रणाली के बराबर है। श्री पुतिन ने कहा कि समृद्ध मिसाइल प्रणाली को इस वर्ष के अंत तक तैनात कर दिया जाएगा। रूस की सामरिक मिसाइल सेना के कमांडर सर्गेई काराकाइव ने कहा है कि परीक्षण ने मिसाइल प्रणाली की क्षमता और उसकी की मजबूती को साबित किया है। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में लिए ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसेवेनी पिछले 40 वर्ष से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसेवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में शपथ ली। चुनावों में मुसेवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए थे। वहीं विपक्षी नेता बॉबी वाइन को 25% वोट मिले। ब्रिटेन में स्थानीय चुनावों में लेबर पार्टी की हार के बाद प्रधानमंत्री की स्टार्मर पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा है। उनके मंत्रिमंडल में आवास समुदाय और स्थानीय सरकार मंत्री मियाट्टा फाहुनबुले ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने श्री स्टार्मर से देश हित में सही कदम उठाते हुए पद छोड़ने की समय सीमा तय करने का भी आग्रह किया। उधर श्री स्टार्मर ने पद छोड़ने की बढ़ती मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने आलोचकों को गलत साबित करने का संकल्प लिया। इससे पहले खबरों में कहा गया था कि इंग्लैंड और वेल्स में हाल में हुए स्थानीय चुनावों में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद 60 से अधिक लेबर सांसद श्री स्टार्मर से पद छोड़ने का आग्रह कर रहे थे। कई लेबर सांसदों ने सार्वजनिक और निजी तौर पर चिंता व्यक्त की है और श्री स्टार्मर का नेतृत्व अगले आम चुनाव से पहले पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। इसराइल में अमेरिका के राजदूत माइक हकाबी ने कहा है कि ईरान युद्ध के दौरान इसराइल ने आयरन डोम मिसाइल रोधी बैटरी और उन्हें संचालित करने के लिए कर्मियों को संयुक्त अरब अमीरात भेजा था। उनके इस बयान से इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों पर रेखांकित होते हैं। दोनों ही देश लंबे समय से ईरान को संदेह की नजर से देख रहे थे और संघर्ष में नाजुक युद्ध विराम अभी भी कायम है। नेपाल और भारत के बीच आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता समझौते को नेपाल के प्रतिनिधि सभा में पेश किया गया। नेपाल के विधि न्याय और संसदीय कार्य मंत्री सोभिता गौतम ने सदन में ये समझौता प्रस्तुत किया। ये समझौता इस वर्ष फरवरी में भारत और नेपाल के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। श्री गौतम ने कहा कि समझौते का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपराधिक मामलों की जांच, अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया को कानूनी रूप से अधिक प्रभावी और आसान बनाना है। पश्चिमी और दक्षिणी श्रीलंका में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने द्वीप के पास बने निम्न दबाव से मौसम बिगड़ने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा है कि बुधवार को पश्चिमी और सबरागुमा प्रांत में 200 किलोमीटर से अधिक बारिश होने की संभावना है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन में आज से भारतीय दल सिंगल्स वर्ग के मुकाबले खेलेगा। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा थाईलैंड की पोनपावी चोचुवोंग के साथ खेलेंगी। वहीं देविका सिहा का सामना जापान की खिलाड़ी से होगा। तारा शर्मा का मुकाबला जापान की हीना केची और ईशारानी बरुआ का मुकाबला इंडोनेशिया की थालिया रोसियाना वरियानवान से होगा। भारत ने थाईलैंड में आयोजित BWF सुपर 500 टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए 27 सदस्यीय दल भेजा है। उज़्बेकिस्तान में आयोजित एशिया अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के कल से नई दिल्ली में होने वाले सम्मेलन की तैयारियां पूरी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 3 दिन के चीन दौरे

पर। रूस ने सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। युगांडा में युवेरी मुस्मेनी ने लगातार सातवीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। और बैडमिंटन में बैंकॉक में थाईलैंड ओपन में कई भारतीय खिलाड़ियों के महत्वपूर्ण मुकाबले आज। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित विश्व दर्पण। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में श्रोताओं आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
0: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
3: प्रिय जिला वासियों जोहार, मैं नीतीश कुमार सिंह, उपायुक्त सरायकेला खरसावां, समस्त जिले वासियों से अनुरोध करता हूँ कि वर्तमान में चल रही भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत अब आप स्वगणना सेल्फ इनुमरेशन के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही भविष्य में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और सरकारी योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा। आप अपने मोबाइल से sc.census.gov.in पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं भरें। यह पोर्टल झारखंड में 15 मई 2026 तक स्वगणना हेतु खुली रहेगी। आपकी गोपनीयता हमारी प्राथमिकता है। हमारे जिले के सुनहरे भविष्य और सटीक योजना निर्माण के लिए हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, अब आपकी बारी। धन्यवाद।
4: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।
5: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
6: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग

0: नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001।
0: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: प्रिय जिलावासियों जोहार, मैं नीतीश कुमार सिंह, उपायुक्त सरायकेला खरसावां, समस्त जिलेवासियों से अनुरोध करता हूँ कि वर्तमान में चल रही भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत अब आप स्वगणना सेल्फ इनुमरेशन के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही भविष्य में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और सरकारी योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा। आप अपने मोबाइल से sc.census.gov.in पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं भरें। यह पोर्टल झारखंड में 15 मई 2026 तक स्वगणना हेतु खुली रहेगी। आपकी गोपनीयता हमारी प्राथमिकता है। हमारे जिले के सुनहरे भविष्य और सटीक योजना निर्माण के लिए हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब आपकी बारी। धन्यवाद।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब हम हाजिर हैं फिल्म संगीत लेकर।

दोस्तों, कहते हैं कि शब्द जहाँ थक जाते हैं, संगीत वहीं से अपनी यात्रा शुरू करता है। तो चलिए इस जादुई सफर में सुनवाते हैं सबसे पहले ये गाना अभिजीत की आवाज़ में।

श्रोताओं, ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल का गाया फिल्म साया से। सईद कादरी ने इस गीत को रचा है और संगीत निर्देशन अन्नू मलिक का है।

श्रेया घोषाल के गाए फिल्म साया के इस गाने के बाद अब आइए सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में कभी खुशी कभी गम फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं जतिन ललित।

और अब लीजिए सुनवाते हैं सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति का गाया फिल्म वास्तव का ये गीत। समीर की ये रचना है और धुन जतिन ललित का है।

0: प्रिय जिलावासियों, जोहार। मैं नीतीश कुमार सिंह, उपायुक्त सरायकेला खरसावां, समस्त जिलेवासियों से अनुरोध करता हूं कि वर्तमान में चल रही भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत अब आप स्वगणना सेल्फ इनुमरेशन के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही भविष्य में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और सरकारी योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा। आप अपने मोबाइल से sc.census.gov.in पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं भरें। यह पोर्टल झारखंड में 15 मई 2026 तक स्वगणना हेतु खुली रहेगी। आपकी गोपनीयता हमारी प्राथमिकता है। हमारे जिले के सुनहरे भविष्य और सटीक योजना निर्माण के लिए हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब आपकी बारी। धन्यवाद।
1: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। अब आइए सुनवाते हैं सुखविंदर सिंह और अलका याग्निक का गाया फिल्म ताल का ये गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं AR रहमान।

दोस्तों, फिल्म ताल के इस गाने के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये सफ़र अब यहीं पूरा होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: हमारा अगला कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर आप सुनेंगे इसी चैनल पर।
3: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: நான் ரங்கசாமி கடவுளின் பெயரால் உறுதி கூறுவது நான் நேர்முகமாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ ஒருவருக்கோ அல்லது பலருக்கோ இந்திய ஒன்றியத்தின் புதுச்சேரி ஆட்சி பரப்பின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் என் கவனத்திற்கு கொண்டுவரப்படும் அல்லது எனக்கு தெரியவரும் எந்த செய்தியையும் மேற்கூறிய முதலமைச்சர் என்ற வகையில் என்னுடைய கடமைகளை முறையாக ஆற்றுவதற்கு தேவைப்பட்டவரன்றி தெரிவிக்கவோ அல்லது வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன்.
0: अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए नमस्सीवेम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, भाजपा नेता अध्यक्ष वीपी रामलिंगम अधिकारी और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वित्री कड़गम टीवीके के सरकार को विधानसभा में आज बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वासमत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनकी हालिया यात्राओं के दौरान लागू की गई थी। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की है। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। वे आज चिली के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोपहर बाद वे दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। शाम को डॉ. जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गे लावरोव से भी मिलेंगे। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नाशिक पुलिस के क्राइम ब्रांच यूनिट ने कल महाराष्ट्र के नाशिक से शुभम को हिरासत में लिया। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बीच कल रद्द कर दी गई थी। सरकार ने सीबीआई को अनियमितताओं की व्यापक जांच के निर्देश दिए हैं। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार से पहले मामूली रूप से बढ़त नजर आई और फिर इसमें गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 75 अंक की अधिक की वृद्धि के साथ खुला और बाद में 180 अंक गिरकर 74,360 पर आ गया। निफ्टी 41 अंक की गिरावट के साथ 24,350 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

0: नमस्कार जमशेदपुर।
1: कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर के साथ आज मैं हूं अनिमा। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, तेज रफ्तार और अनिश्चितता से भरे आधुनिक जीवन में मानसिक तनाव, चिंता और भावनात्मक अस्थिरता सामान्य अनुभव बन चुके हैं। ऐसे समय में भारतीय परंपरा के रोजमर्रा के संस्कार, जैसे अपने कामों को निपटाना, सुबह की प्रार्थना, ध्यान, प्रकृति के बीच रहना, भोजन से पहले शांत होकर बैठना या दिन के अंत में कृतज्ञता व्यक्त करना, ये सिर्फ अनुष्ठान नहीं बल्कि मन को संतुलित करने वाले सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अभ्यास हैं। ये छोटे छोटे संस्कार इंसान के जीवन में एक लय और क्रम स्थापित करते हैं। जब कोई क्रिया नियमित रूप से सजगता और भावनात्मक जुड़ाव के साथ की जाती है ना, तो वो मन में स्थिरता और सुरक्षा का भाव उत्पन्न करती है, क्योंकि अनिश्चितताओं से भरी दुनिया में इंसान इन क्रियाओं के माध्यम से अपने लिए निश्चितता निर्मित करता है। ये दिमाग को आश्वस्ति देती है, जिससे तनाव और चिंता का स्तर जो है वो कम होने लगता है और मन प्रसन्न रहता है। शोधों में पाया गया है कि छोटे छोटे काम तनाव, शोक और असुरक्षा की भावनाओं को कम करने में सहायक होते हैं। अध्ययन संकेत करते हैं कि किसी क्रिया की भव्यता या जटिलता उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी उसकी नियमितता और उससे जुड़ा भावनात्मक संबंध। जब कोई अभ्यास निरंतर सजगता के साथ दोहराया जाता है ना, तो वो मन के लिए मनोवैज्ञानिक एंकर बन जाता है।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये प्रार्थना। फिल्म का नाम था सुबह। गीतकार थे पंडित नरेंद्र शर्मा। संगीत से सजाया था पंडित हृदयनाथ मंगेशकर ने।

श्रोताओं, भारत की पहली संसद का पहला सत्र आज के दिन यानी 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। ये सत्र नई दिल्ली में स्थित पार्लियामेंट हाउस में आयोजित किया गया था। ये वही समय था जब भारत में पहला आम चुनाव सफलतापूर्वक पूरा हुआ था। इन चुनावों के बाद चुने गए प्रतिनिधियों ने पहली लोकसभा और राज्यसभा का गठन किया। भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, लेकिन शुरुआत में देश का शासन संविधान सभा द्वारा चलाया जा रहा था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। इसके बाद देश में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव कराए गए। पहले प्रधानमंत्री भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने संसद में देश के विकास, लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया। पहले लोकसभा के अध्यक्ष बने गणेश वासुदेव मावलंकर। उन्हें भारतीय संसदीय परंपराओं का आधार स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। भारत की संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है। इसके मुख्य कार्य हैं कानून बनाना, सरकार को जवाबदेह बनाना, देश का बजट पास करना और जनता की समस्याओं पर चर्चा करना। संसद 2 सदनों से मिलकर बनी है। लोकसभा जनता द्वारा चुना गया सदन, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदन। पहला संसदीय सत्र इसलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि भारत ने लोकतांत्रिक शासन की औपचारिक शुरुआत की। जनता द्वारा चुनी गई सरकार ने काम शुरू किया। दुनिया को यह संदेश मिला कि भारत लोकतंत्र के रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ेगा। पहली लोकसभा का कार्यकाल 1952 से 1957 तक रहा। 13 मई 1952 को शुरू हुआ संसद का पहला सत्र भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने वाला कदम था। इसने ये दिखाया कि भारत स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए तैयार था। आज भी ये सत्र भारतीय संसदीय इतिहास में गर्व और प्रेरणा का विषय माना जाता है।

आप सुन रहे थे लक्ष्य फिल्म का ये गाना। शंकर महादेवन, सोनू निगम, हरिहरन, रूप कुमार राठौर, कुणाल गांजावाला और विजय प्रकाश की आवाज सुनी। बोल जावेद अख्तर के थे और संगीत से सजाया था शंकर एहसान लॉय ने।

श्रोताओं, आज है अंग्रेजी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय लेखक आर के नारायण की पुण्यतिथि। उनका पूरा नाम रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1906 को चेन्नई में हुआ था। वे सरल भाषा, मानवीय संवेदना और भारतीय जीवन के सहज चित्रण के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हुए। आर के नारायण ने अपने लेखन में आम भारतीय लोगों के जीवन, उनकी समस्याओं, भावनाओं और रिश्तों को बहुत ही सरल और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने एक काल्पनिक नगर मालगुड़ी की रचना की, जो उनकी अनेक कहानियों और उपन्यासों का केंद्र बना। ये नगर भारतीय समाज और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में मालगुड़ी डेज, द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स और द इंग्लिश टीचर शामिल हैं। उनके उपन्यास द गाइड के लिए उन्हें 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उनकी रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे कठिन विषयों को भी सरल और रोचक शैली में प्रस्तुत करते थे। उनके पात्र सामान्य भारतीय परिवारों से जुड़े होते थे, इसलिए पाठक आसानी से उनसे जुड़ाव महसूस करते थे। आर के नारायण को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने भारतीय साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 13 मई 2001 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी पाठकों के बीच उतनी ही लोकप्रिय हैं। उनकी कहानियां हमें भारतीय जीवन की सादगी, नैतिकता और मानवीय मूल्यों का संदेश देती है। इसलिए आर के नारायण को भारतीय साहित्य का अमूल्य रत्न माना जाता है।

0: आप सुन रहे थे शंकर महादेवन की आवाज में, शंकर एहसान लॉय के संगीत निर्देशन में, प्रतीक मजूमदार का लिखा ये गाना। फिल्म का नाम था हल्का।
1: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
4: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
3: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली, 110001।
4: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं। श्रोताओं, बढ़ती उम्र में नए टेक्नोलॉजी सीखना बुजुर्गों की मेंटल हेल्थ के लिए फायदेमंद है, बशर्ते इसमें स्क्रीन टाइम का ध्यान रखने के साथ साथ इसका उपयोग पूरी जागरूकता से किया जाए। श्रोताओं, जब आप नई तकनीक सीखते हैं तो याददाश्त मजबूत होती है। जो बुजुर्ग नई एप्स खुद सीखते हैं, वीडियो ट्यूटोरियल देखकर प्रैक्टिस करते हैं या ग्रुप क्लोजर ज्वाइन करते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ पर सकारात्मक असर देखने को मिलती है। मस्तिष्क की कार्य क्षमता भी इससे बढ़ती है। जब आप AI ट्यूटर से नई भाषा, संगीत या स्किल सीखते हैं तो दिमाग व्यस्त और सक्रिय रहता है। नया सीखने और समस्या सुलझाने की इस प्रक्रिया में मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे आपके जीवन में खुशी का स्तर और आत्मविश्वास बढ़ता है। शोध में पाया गया है कि ऑनलाइन ग्रुप, वीडियो कॉल पर रिश्तेदार दोस्तों से जुड़े रहने वाले बुजुर्गों में अकेलापन और तनाव कम होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की मदद से उनमें रिश्तों का डिजिटल ब्रिज बन जाता है। 60 से 80 वर्ष तक के लोगों पर हुई रिसर्च में पाया गया है कि जो बुजुर्ग स्मार्टफोन, इंटरनेट खुद चलाते हैं, उनमें समस्याएं हल करने और सोचने समझने की क्षमता जो है वो दूसरों से बेहतर होती है, और डिजिटल स्किल सीखने से सीनियर सिटीजन की याददाश्त 30% तक बढ़ सकती है। तो श्रोताओं, टेक्नोलॉजी रखेंगे हमारे बुजुर्गों को स्वस्थ और खुश।

फिल्म का नाम था हम दोनों। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी। गीतकार थे साहिर लुधियानवी, संगीतकार जयदेव।

श्रोताओं, आज है 80 और 90 दशक के प्रसिद्ध पार्श्व गायक और गजल गायक मनहर उदास का जन्मदिन, जिन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में अपनी आवाज दी। वे मशहूर गायक पंकज उदास और निर्मल उदास के बड़े भाई हैं। मनहर उदास का जन्म 13 मई 1944 को गुजरात के जेतपुर में हुआ था, जो गुजराती और हिंदी संगीत के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद वे मुंबई आए और कल्याणजी आनंद जी के साथ काम किया। 1969 की फिल्म विश्वास में उन्होंने एक गाना गाया था, आपसे हमको बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया। इस गाने से उन्हें बॉलीवुड में प्रसिद्धि मिली। मनहर उदास मुख्य रूप से गजल गायक हैं और उन्हें गुजराती गजल का सम्राट भी कहा जाता है। उन्होंने गजल के अलावा फिल्म संगीत में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई, अलग जगह बनाई। उन्होंने हिंदी, गुजराती, पंजाबी और बंगाली सहित कई भाषाओं में 300 से अधिक फिल्मी गाने गाए हैं। हमारी ओर से उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और आपको सुनवाते हैं मनहर उदास और साथियों की आवाज़ों में सौदागर फिल्म का ये गाना।

आप सुन रहे थे श्रोताओं सौदागर फिल्म का ये गाना मनहर उदास, कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण और सुखविंदर सिंह की आवाजों में। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में अब कुछ सेहत की बातें। श्रोताओं, मई में गर्मी से बचाव बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि बीच बीच में बारिश तो हो रही है, लेकिन फिर भी ख़ासकर बुज़ुर्गों के लिए शरीर की आंतरिक ठंडक को बनाए रखना ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आयुर्वेद से जुड़े तरीके काफ़ी लाभदायक साबित हो सकते हैं, जो सेहतमंद रखने के साथ साथ राहत भी प्रदान करेंगे। जैसे कि खस का पानी, मिट्टी के घड़े में खस की जड़ों का एक छोटा सा गुच्छा डाल दें और यही पानी पीने में इस्तेमाल करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि खस में तापमान कम करने वाले गुण होते हैं। रिसर्च के अनुसार ये हमारे शरीर के कोर टेम्परेचर को प्राकृतिक रूप से स्थिर रखता है। उसके बाद गुलकंद और दूध, रात को सोने से पहले ठंडे या सामान्य दूध के साथ में ये एक चम्मच गुलकंद का सेवन करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि गुलाब की पंखुड़ियों में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं। ये पेट के पीएच लेवल को संतुलित कर एसिडिटी रोकती है। गर्मी से होने वाली घबराहट को भी ये शांत करती है। उसके बाद भीगे खजूर और मुनक्का, रात भर भीगे हुए मुनक्का और खजूर को सुबह उसी पानी में मसल कर छान लें और पिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि इन दोनों में मौजूद पोटेशियम और मैग्नीशियम गर्मी में हृदय की गति को सामान्य रखते हैं, साथ ही भीषण गर्मी में आपको डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। तो गर्मी से बचाएंगे आयुर्वेदिक तरीके। लेकिन श्रोताओं, एक बात, किडनी शुगर या हार्ट के अगर मरीज़ हैं, तो दिल के अगर मरीज़ हैं, तो इन नुस्खों को आजमाने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श, उनसे सलाह ज़रूर लें। इतनी सारी बातों के बाद अब आपके लिए प्यारा सा गाना।

आप सुन रहे थे सपने साजन केसी फिल्म का गाना, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। नगमा निकार थे समीर, मौसीकार नदीम श्रवण। और अब चलते चलते मौसम की जानकारी हमारे श्रोताओं को दे दिया जाए। आज का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

ये था रोजा फिल्म का गाना मिनमिनी की आवाज में। नगमा निगार थी पी के मिश्रा, मौसीकार ए.आर. रहमान। और इस गाने के साथ ही कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर से हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलने के वादे के साथ।

0: good.
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आप सुनेंगे समाचार और समाचारों के बाद दिन के 12:05 का समय होगा कार्यक्रम शीर्षक गीत का। अभी आइए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण में शामिल होते हैं। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित तमिल का वित्री कड़गम टीवी के सरकार ने विश्वास मत में बहुमत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने पक्ष में मतदान किया है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए नमसिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम, अधिकारी और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनके हाल ही यात्राओं के दौरान लागू की गई। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिसो पेरेस मैकेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिसको ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। पंजाब सरकार ने रक्षा बलों में कार्यकाल पूरा करने के बाद अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति बनाने का निर्णय लिया है। प्रक्रिया रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी है। सरकार का कहना है कि पंजाब पुलिस, वन रक्षक, अग्निशमन सेवा, जेल, होमगार्ड और अन्य कई विभागों में उनकी सेवाओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटन्स ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:05 हुए हैं। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम शीर्षक गीत हमारे श्रोता सुनेंगे बस थोड़ी देर में।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम शीर्षक गीत। सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। स्वीकार कीजिए नमस्कार, बल्कि प्यार भरा नमस्कार।

प्रेम, प्यार, मोहब्बत, आशिकी, इश्क, अनुराग, उल्फत, दीवानापन, लव, नाम है बेशुमार, लेकिन शय सिर्फ एक है, प्यार।

प्यार यानी हजारों बरस का एक सपना, प्यार यानी हजारों सपनों के कुछ सुनहरे बरस, प्यार जो मिल जाता है तो हो जाता है तो कभी चैन से जीने नहीं देता, दिल को हमेशा बेचैन किए रहता है, एक कसक से होती रहती है दिल में, अरमानों को तो जैसे पंख लग जाते हैं।

प्यार जो जज्बात का छलावा नहीं चाहता, प्यार जो नफरत का कोहरा नहीं चाहता, प्यार के रूप अनेक, प्यार की चाहें अनेक, प्यार की राहें बेशुमार, प्यार का असीमित संसार, प्यार का बस एक आधार।

0: श्रोताओं, शीर्षक गीत के आज के इस कार्यक्रम में आज का हमारा शीर्षक था प्यार। प्यार शीर्षक गाने आपको जरूर पसंद आए होंगे, ऐसी हमारी आशा है। बहरहाल आज इस कार्यक्रम में जिन फिल्मों के गाने आपने सुने, फिल्में थी वारिस, एक रिश्ता, राज, प्रेम प्रतिज्ञा और MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। आवाजें थी लता मंगेशकर, मनमोहन सिंह, कुमार सानू, अलका याग्निक, आशा भोसले, बप्पी लाहिड़ी और पलक मुच्छल की। गीतकार थे वर्मा मलिक, समीर इंदिवर और मनोज मुंतशिर। संगीत से सजाया था उत्तम जगदीश, नदीम श्रवण, बप्पी लाहिड़ी और अमाल मलिक ने। इसी के साथ फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम शीर्षक गीत अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। दिन के 12:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे बस थोड़ी देर में।
1: पापा, लाइए 3,000।
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट मनी।
2: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
1: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
2: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
1: अपना मोबाइल लाओ,
2: ले ले।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: प्रिय जिला वासियों, जोहार। मैं नीतीश कुमार सिंह, उपायुक्त सरायकेला खरसावां, समस्त जिले वासियों से अनुरोध करता हूँ कि वर्तमान में चल रही भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत अब आप स्वगणना सेल्फ इनुमरेशन के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही भविष्य में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और सरकारी योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा। आप अपने मोबाइल से sc.census.gov.in पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं भरें। यह पोर्टल झारखंड में 15 मई 2026 तक स्वगणना हेतु खुली रहेगी। आपकी गोपनीयता हमारी प्राथमिकता है। हमारे जिले के सुनहरे भविष्य और सटीक योजना निर्माण के लिए हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब आपकी बारी। धन्यवाद।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में श्रोताओं लीजिए सुनिए अनंतलाल और साथियों का शहनाई वादन। आइए पहले सुनते हैं शहनाई पर बजाया गया राग मुल्तानी।

आप सुन रहे थे शहनाई पर बजाया गया राग मुल्तानी, कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में। अब लीजिए सुनिए शहनाई पर बजाया गया राग शुद्ध सारंग, कलाकार हैं अनंत लाल और साथी।

आप सुन रहे थे राग शुद्ध सारंग में, शहनाई वादन, कलाकार थे अनंत लाल और साथी। कार्यक्रम के अंत में आप ही से सुनते हैं शहनाई पर ही राग भैरवी।

आप सुन रहे थे शहनाई पर बजाया गया राग भैरवी। कलाकार थे अनंत लाल और साथी। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे दिन के 1 बजे हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार। अपने रांची केंद्र से रिले कर प्रादेशिक समाचार हम आपको सुनवाएंगे दिन के 1:10 पर। समाचारों के बाद आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से आप सुनेंगे दिन के 1:20 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम। अभी आइए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण में शामिल होते हैं। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वित्री कड़गम सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया, जबकि 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। प्रमुख विपक्षी दल डीएमके ने कार्यवाही के दौरान विधानसभा से वॉकआउट किया। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने विजय को सदन में अपना बहुमत साबित करने का आदेश दिया था। विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी को 108 सीटें मिली थीं। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के एन नमसिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रदीप वांछित था। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया है कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,881 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। सेंसेक्स 201 अंक बढ़कर 74,760 पर, जबकि निफ्टी 77 अंक के साथ 23,457 पर पहुंच गया। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार किया छोटा, ईंधन की बचत और आर्थिक मजबूती के लिए उठाया कदम। झारखंड कांग्रेस की नई कमेटी पर विवाद और गहराया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के बाद सांसद सुखदेव भगत ने भी प्रदेश नेतृत्व के फैसलों पर उठाए गंभीर सवाल। राज्य में श्रमिकों के लिए साल भर चलने वाला मुफ्त स्वास्थ्य जांच अभियान शुरू। रांची के ईएसआईसी अस्पतालों में होगी 40 से अधिक उम्र के कामगारों की जांच। राज्य के पूर्व मंत्री और गोमिया से 4 बार विधायक रहे माधवलाल सिंह का निधन। सादगी और जनसेवा के लिए मशहूर माधव बाबू के जाने से राज्य भर में शोक। और रेल यात्रियों की सुविधा को लेकर रांची और टाटानगर से दिल्ली के लिए 23 मई को चलेंगी जनजाति दिवस स्पेशल ट्रेनें, 25 मई को होगी वापसी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनकी हालिया यात्राओं के दौरान लागू की गई थी। यह कदम पश्चिम एशिया के संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री ने बिना नई खरीद के काफिले में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन पर विवाद गहरा गया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के बाद लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत ने प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि कमेटी बनाने से पहले पूर्व अध्यक्षों को भरोसे में नहीं लिया गया। उन्होंने डिलिमिटेशन कमेटी में किसी भी आदिवासी नेता को जगह न मिलने पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
1: केशव महतो कमलेश जी वो पार्टी के अध्यक्ष ना है, कोई व्यक्तिगत नहीं है और उसमें लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं चलता। आदिवासियों को सीटें घटी और हमें एक को रखा नहीं है। ये क्या कमेटी आपने बनाया है? और आपने एसआईआर कमेटी रखा लेकिन डिलिमिटेशन में सुखदेव भगत नहीं, बालमुचू जी नहीं, रामेश्वर जी नहीं, बंधु त्रिकी जी नहीं, उनका प्रतिनिधित्व आपने नहीं दिया।
0: झारखंड में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के निर्देश पर श्रमिकों के लिए वर्ष भर चलने वाला निशुल्क स्वास्थ्य जांच अभियान शुरू हुआ है। इसके तहत नामकुम और आदित्यपुर ईएसआईसी अस्पतालों में 40 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों की जांच की जाएगी। बीमा आयुक्त प्रायण सिन्हा ने नामकुम अस्पताल का निरीक्षण कर अभियान को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। धनबाद नगर निगम बोर्ड की बैठक में राज्य सरकार द्वारा होल्डिंग टैक्स में की गई 10% बढ़ोतरी का सर्वसम्मति से विरोध किया गया। मेयर संजीव सिंह की अगुवाई में बोर्ड ने टैक्स वृद्धि वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया। बैठक में पेयजल संकट दूर करने के लिए पानी टंकी स्थापित करने की मंजूरी भी दी गई।
2: बोर्ड में इस चीज का निर्णय लिया गया कि यह प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा कि जो टैक्स बढ़ोतरी किया गया 10% वो उसको पुनः पहले ही की तरह रखा जाए, उसको बढ़ोतरी ना किया जाए। और चूंकि धनबाद नगर निगम क्षेत्र के लोगों के हित में है इसके लिए ये बोर्ड पूरा एक निर्णय लिया है।
0: राज्य के पूर्व मंत्री और गोमिया से 4 बार विधायक रहे माधवलाल सिंह का आज रांची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। हमारे बोकारो संवाददाता ने बताया कि उनके निधन की खबर फैलते ही पूरे राज्य में शोक व्याप्त है।
3: माधवलाल सिंह गोमिया विधानसभा से वर्ष 1985, 1990, वर्ष 2000 और 2009 में विधायक चुने गए। उन्होंने वर्ष 2000 में बिहार सरकार और झारखंड गठन के बाद 2003 में मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। सरल स्वभाव और स्पष्टवादी व्यक्तित्व के कारण वे बोकारो में काफी लोकप्रिय थे। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो।
0: कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे आज धनबाद पहुंच रहे हैं। वे जिला प्रशासन, बीसीसीएल और जेआरडीए के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इसके अलावा वे बेलगढ़िया टाउनशिप का दौरा कर विकास योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्ति वितरण करेंगे। केंद्र सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे ने यात्रियों की भीड़ के मद्देनजर रांची और टाटानगर से दिल्ली के लिए जनजाति दिवस स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। रांची दिल्ली स्पेशल 23 मई को और टाटानगर आनंद विहार स्पेशल भी इसी दिन रवाना होगी। दोनों ट्रेनें 25 मई को दिल्ली से वापस लौटेंगी। रांची पुलिस ने हिंदीपीढ़ी इलाके में बड़े नशा कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए एक महिला सहित 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली एएसपी निखिल राय के नेतृत्व में 4 थानों की पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में ब्राउन शुगर, गांजा, नशीले इंजेक्शन और 8,74,200 रुपए नकद बरामद किए हैं। एएसपी ने बताया कि जांच में यह भी सामने आया है कि नशे के सौदागरों ने इलाकों में अलग अलग स्पॉट बना रखे थे जहाँ प्लास्टिक के टेंट लगाकर ड्रग्स का सेवन कराया जाता था।
4: हमें सूचना मिली थी कि खेत मोहल्ला हिंडपीरी में कुछ लोग हैं जो नशे का अवैध कारोबार कर रहे हैं। हमने तुरंत छापा मारा और 5 से 6 लोग को हमने अरेस्ट किया। तो हमें उसके अंदर टोटल लगभग 300 ग्राम गांजा, टेजोविन इंजेक्शन के 20 कैप्सूल, नाइट्रोजन 10 टैबलेट्स 40 की मात्रा में और लगभग 5 ग्राम ब्राउन शुगर और 8.74 लाख कैश बरामद किया।
0: घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों ने शुरुआती नुकसान की भरपाई करते हुए आज सुबह के सत्र में मामूली बढ़त दर्ज की। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 261 अंक बढ़

कर 74,820 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 97 अंक बढ़कर 223,476 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,41,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,78,000 रुपए प्रति किलो है। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आज पलामू प्रमंडल और कुछ अन्य जिलों को छोड़ रांची सहित अधिकांश झारखंड में येलो अलर्ट जारी किया है, जहां 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं और बारिश हो सकती है। वहीं 15 मई को रांची, धनबाद और संताल परगना सहित कई जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून आ जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित होने वाली अंडर 17 राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए कलकत्ता पब्लिक स्कूल ओरमांझी के 9 खिलाड़ियों का चयन झारखंड टीम में हुआ है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले इन खिलाड़ियों में अनुष्का, शिवानी, सृजल, आकांक्षा और रिया सहित कुल 9 छात्र छात्राएं राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार किया छोटा, ईंधन की बचत और आर्थिक मजबूती के लिए उठाया कदम। झारखंड कांग्रेस की नई कमेटी पर विवाद और गहराया वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के बाद सांसद सुखदेव भगत ने भी प्रदेश नेतृत्व के फैसलों पर उठाए गंभीर सवाल। राज्य में श्रमिकों के लिए साल भर चलने वाला मुफ्त स्वास्थ्य जांच अभियान शुरू। रांची के ईएसआईसी अस्पतालों में होगी 40 से अधिक उम्र के कामगारों की जांच। राज्य के पूर्व मंत्री और गोमिया से 4 बार विधायक रहे माधवलाल सिंह का निधन। सादगी और जनसेवा के लिए मशहूर माधव बाबू के जाने से राज्य भर में शोक। और रेल यात्रियों की सुविधा को लेकर रांची और टाटानगर से दिल्ली के लिए 23 मई को चलेंगी जनजाति दिवस स्पेशल ट्रेनें, 25 मई को होगी वापसी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 1:20 हुए हैं। फिल्म संगीत का कार्यक्रम हमारे श्रोता सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, समय की अपनी रफ्तार है, अपनी आवाज है, दुख सुख की लहर है तो धूप छांव का खेल भी, कभी सरसों की पीली छटा तो कभी मुरझाती फूलों की टूटने की सदा, यही जीवन है और यही इसका रंग रूप। खुद को दिल से उतारने के बाद कैसा लगता है हारने के बाद? जब दिल टूटता है तो फिर इसके टूटने की आवाज बहुत दूर तक मन में गूंजती है, एक दर्द, एक कसक लिए भावनाएं बिखरने लगती है।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा ये गीत, तर्ज बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, फिल्म थी महबूब की मेहंदी। ख्याल आता है मंजिल के पास आते ही कि कूच करना है एक दूसरे सफ़र के लिए। ये जिंदगी और इसके रास्ते ऐसे ही ऊंचे नीचे पत्थर और कांटों से भरे हैं। कभी कभी लगता है इस जीवन का आखिर पर्याय क्या है, क्या है इसका फलसफा। सच तो ये है कि इन परेशान करते सवालों का कोई जवाब नहीं।

गुलजार का लिखा गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीतकार थे मदन मोहन और फिल्म थी मौसम। वैसे श्रोताओं, मन का मौसम भी जीवन की राहों पर हमेशा साथ साथ चलता है। किसी अपने के बिना सब कुछ अधूरा लगता है। रूह प्यासी है बहुत, एक ही कतरा दे दे। रूह प्यासी है बहुत, एक ही कतरा दे दे। मैंने कब तुझसे कहा है मुझे दरिया दे दे।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: प्रिय जिला वासियों जोहार, मैं नीतीश कुमार सिंह उपायुक्त सरायकेला खरसावां समस्त जिले वासियों से अनुरोध करता हूँ कि वर्तमान में चल रही भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत अब आप स्वगणना सेल्फ इनुमरेशन के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही भविष्य में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और सरकारी योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा। आप अपने मोबाइल से sc.census.gov.in पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं भरें। यह पोर्टल झारखंड में 15 मई 2026 तक स्वगणना हेतु खुली रहेगी। आपकी गोपनीयता हमारी प्राथमिकता है। हमारे जिले के सुनहरे भविष्य और सटीक योजना निर्माण के लिए हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, अब आपकी बारी। धन्यवाद।
4: हेलो डॉक्टर, आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
5: हेलो डॉक्टर,
4: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-296-0445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-296-0445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
5: हेलो डॉक्टर।

अंतराल के बाद फिल्म संगीत कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। अंतराल से पहले हमने आपको सुनवाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में गुलजार का लिखा गीत राहुल देव बर्मन की तर्ज पर आंधी फिल्म से। श्रोताओं, जब कोई अपना बन जाता है तब लगता है कि हर खुशी सिमट आई है। हवा में ढूंढ रही है कोई सदा मुझको, पुकारता है पहाड़ों का सिलसिला मुझको।

फिल्म अभिमान का गीत अभी आपने सुना। लता मंगेशकर की आवाज में बोल थे मजरू सुल्तानपुरी के तर्ज बनाई थी सचिन देव बर्मन ने। प्रेम कथा का अंत ना कोई, कितनी बार इसे दोहराए, प्रीत की रीत अनोखी साजन, कुछ नहीं मांगे सब कुछ पाए।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में ये था आंसू बन गए फूल फिल्म का गाना। गीतकार थे गोविंद बोनिस, संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, जीवन की राहों में धूप छांव का ये खेल चलता रहता है, दुखों की बदली के पीछे से सूरज भी झांकता है, रात ढलती है सुबह होती है, यही तो है समय का संदेश, समय के साथ साथ जीवन का संदेश भी। फूल खुशबू तितलियां बादल हवाएं वादियां कोयल सब पर एक नशा सा छा गया है, तुम पर इन सब का असर क्यों नहीं होता।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म सरगम का ये प्यारा सा गीत। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, तर्ज बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ।

0: नमस्कार जमशेदपुर, नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
1: ज्ञान विज्ञान
2: इतिहास के पन्नों से,
1: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
0: मौसम का मिजाज,
1: अपने शहर की खबरें,
2: बातों मुलाकातों के साथ
0: सुरीला मनोरंजन
1: और भी बहुत कुछ।
0: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
2: दिन के 11:05 से 12 बजे तक
1: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
3: नमस्कार जमशेदपुर।

आकाशवाणी का यह जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। विश्व में भारत ने ताजा घटनाओं की जानकारी आपको मिलती है समाचारों से। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे दिन के 2 बजे मिड डे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार बुलेटिन। तो अभी आइए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण में शामिल होते हैं, कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। श्री रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिपिन एस

0: की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली, जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई है। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्री परिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कारपूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। CBSE ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
4: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली दो दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रदीप वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल पहली जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत

द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के पांचवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य चार मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार बुलेटिन आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 2:30 हुए हैं। फिल्म संगीत का कार्यक्रम हमारे श्रोता सुनेंगे बस थोड़ी देर में।

आप सुन रहे थे सड़क फिल्म का ये गाना। अनुराधा पौडवाल और मनर उदास की आवाजों में इस गीत को लिखा था समीर ने और संगीत से सजाया था नदीम शवर ने। कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए राम लखन फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गाना। अनुराधा पौडवाल और मनर उदास की आवाजों में बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत से सजाया है संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

अभी आपने सुने नाम फिल्म का ये गाना। मनर उदास और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ों में इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, एक आवश्यक सूचना। नीतीश कुमार सिंह, उपायुक्त सरायकेला खरसावां, समस्त ज़िलेवासियों से अनुरोध करते हैं कि वर्तमान में चल रही भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत अब आप स्वगणना के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही भविष्य में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और सरकारी योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा। आप अपने मोबाइल से sec.census.gov.in पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं

भरे। ये पोर्टल झारखंड में 15 मई 2026 तक स्वगणना हेतु खुली रहेगी। आपकी गोपनीयता ही प्राथमिकता है। जिले के सुनहरे भविष्य और सटीक योजना निर्माण के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने की अब आपकी बारी है। सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। श्रोताओं, हमारे इसी सभा में दिन के 3 बजे आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। दिन के 3:30 पर सुगम संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाएंगे पंकज उदास की आवाज में गजल। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 2:55 बज जाते हैं। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। यह कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। इस वर्ष सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 तक विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय के लिए आयोजित की गई थीं। बोर्ड के अनुसार परीक्षा में 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए, जिनमें से 15,07,000 से अधिक छात्र छात्राएं सफल हुए हैं। इस वर्ष कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% रहा। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% दर्ज किया गया। गोमिया के पूर्व विधायक तथा झारखंड बिहार में मंत्री रह चुके माधव लाल सिंह का आज रांची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। माधव लाल सिंह गोमिया विधानसभा से वर्ष 1985, 1990, 2000 और 2009 में विधायक चुने गए। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्री माधव लाल सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने लंबे समय तक जनसेवा और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने टेंडर घोटाला मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। रांची में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आलमगीर आलम को केवल जमानत मिली है, उन्हें आरोप मुक्त नहीं किया गया है। दुमका में दवा व्यवसायियों के विभिन्न मांगों को लेकर 20 मई को मेडिकल दुकानें बंद रहेंगी। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के आह्वान पर यह बंद आयोजित किया जाएगा। दुमका केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश प्रसाद साह ने बताया कि 15 मई से जिले के दवा व्यवसायी काला बिल्ला लगाकर विरोध दर्ज कराएंगे।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जामताड़ा जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव से पुलिस ने दो साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय संजय कुमार सिंह ने बताया कि उनके पास से 7 मोबाइल फोन और 9 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
1: पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना मिली थी कि फतेहपुर क्षेत्र में कुछ लोग साइबर अपराध कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस निरीक्षक पारूप के नेतृत्व में एक छापा दल का गठन किया गया और उनके द्वारा वहां पर छापेमारी की गई। दो अपराध कर्मियों को साइबर अपराध करते हुए इक्विपमेंट के साथ गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के पास से 7 मोबाइल और 9 सिम कार्ड बरामद हुए हैं।
0: इधर गिरिडीह में साइबर पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि इनकी गिरफ्तारी बेंगाबाद थाना क्षेत्र से हुई है। इनके पास से करीब 1 दर्जन मोबाइल और सिम बरामद किए गए हैं। ये अपराधी फर्जी लिंक भेजकर लोगों को ठगते थे।
2: सूचना प्राप्त हुई है कि बसनबाड़ी और कोलरिया जंगल में कुछ साइबर अपराधी एक्टिवेट हैं और इनके द्वारा ठगी की जा रही है। डीएसपी साइबर के नेतृत्व में टीम बनाया गया था और 6 साइबर अपराधी कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 11 मोबाइल, 13 सिम कार्ड और 5 बाइक ये भी बरामद किया गया है। ये लोग कई तरह का गैस से रिलेटेड या ई चालान से रिलेटेड भेजते थे और ठगी करते थे।
0: राजधानी रांची के कई इलाकों में आज दोपहर बाद हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज रांची सहित कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 15 मई को रांची, धनबाद और संथाल परगना के क्षेत्रों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित होने वाली अंडर 17 राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए कलकत्ता पब्लिक स्कूल और मांझी के 9 खिलाड़ियों का चयन झारखंड टीम में हुआ है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले इन खिलाड़ियों में अनुष्का, शिवानी, सृजल, आकांक्षा और रिया सहित कुल 9 छात्र छात्राएं शामिल हैं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आपने ट्यून किया है 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। दिन के ठीक 3 बजे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओं, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: तो श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर
1: जी,
2: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
1: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए
2: जी।
1: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं, और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
1: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप।
2: जी,
1: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
2: तो श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
1: जी बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
2: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा।
1: जी
2: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
1: तो विमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
2: जी अजीत जी, श्रोताओं, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
1: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
2: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओं कि खाली पेट घर से न निकलें।
1: जी
2: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
1: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
2: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है, वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओं जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे, तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते।
1: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
2: जी अजीत जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरे में 80-90% तक पानी होता है।
1: जी
2: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
1: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर धन्यवाद देना चाहिए।
2: जी
1: लेकिन दुखद है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करती है ना, उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
2: तो श्रोताओ, कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
1: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-44-0559 पर, जो हमारा IBRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है गर्मी।
2: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
3: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थीं, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थीं। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थीं।
4: अकर बकर बम्बी वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा।
5: अब तेरी बारी है,
6: तेरी तुम्हारी बारी, तुम सुना, तुम सुना।
5: अच्छा ठीक है, मुझे तो कहानी आती है,
6: तो कहानी सुना दो भाई।
5: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, कौवा लाया

0: कर घड़े में डाले कंकर। पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
1: अच्छी कहानी थी। भाई कौवे ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
0: हाँ प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
1: हाँ चलो चलो, वहाँ पे
0: चलो
1: पानी
0: चलो
1: होगा।
0: चलते हैं।
2: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुई। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
3: कौन है?
1: दीदी,
3: कौन है?
1: दीदी।
0: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
1: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
0: हम थोड़ा पानी पी लें?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
1: हाँ, पर ठंडा पानी था।
0: लेकिन अम्मा, आप कौन है?
4: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो मैं कौन हूँ?
1: कौन आप?
4: नहीं समझे?
1: नहीं।
4: अच्छा तो फिर ये पहेली सुनो।

0: पंखा जलते हैं
1: और सारा दिन पानी भी पीते हैं।
0: ऐसा मौसम।
1: अब
2: गर्मी अम्मा है।
3: बिल्कुल ठीक समझी। मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
2: गर्मी अम्मा, आप कब आती हैं पता ही नहीं चलता।
3: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू यानी यानी
1: हाँ, जब होली आती है तो गर्मी भी तो लगनी
3: शुरू हो जाती है। हाँ
2: अम्मा, मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
3: भाई मेरे मौसम में गर्मी ही तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
1: हाँ चलो अम्मा, चलते हैं।
2: चलो।
4: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गई। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
1: अरे ये क्या गिरा?
3: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
4: वहां दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
2: अम्मा आप क्या छुपा रही हैं?
1: अम्मा ये आपके हाथ में क्या है?
3: मेरे ही मौसम का एक फल है।
1: दिखाओ ना। अम्मा
3: दे दो। दूंगी तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
1: इसका नाम
3: सोचो। मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चे

0: को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद है। खट्टा, मीठा, रसदार फल। सोचो।
1: स्वाद है,
2: पसंद है,
1: सबसे अच्छा भी है।
0: कौन सा फल है? नहीं समझी?
1: नहीं।
0: अच्छा, तो फिर सुनो।

0: झट से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना।
1: बड़ी समझदार हो।
2: आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम कुल्फी वाला, बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो।
1: हाँ बच्चों, मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना?
3: अरे कोई खाने को दे तब ना।
4: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ। और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
5: लाओ अम्मा,
3: लाओ अम्मा।
4: लो
3: गर्मी अम्मा। हाँ? आप बहुत अच्छी हैं।
1: हाँ, तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ। हाँ।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
1: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
2: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है।
3: विजय श्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
2: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया, और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
4: You heard right behind you was the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
5: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
3: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्टाज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो है। वैसे भी ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में ही इतनी ठंड है तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
2: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की 2 सर्दियां देख ली हैं।
3: जरा उधर देखो।
2: अब किधर?
3: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
2: कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूं मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
3: पहनावे से तो कोई कबायली लगता है। लेकिन इधर क्यों आ रहा है? कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
2: आने दो। ए! कौन हो तुम? रुको, जाओ वहीं रुक जाओ, रुको।
4: कौन हो तुम?
5: साहब मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
4: क्या सूचना?
5: साहब दुश्मनों के बारे में।
4: अच्छा यहीं रुको, चलो कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
5: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
0: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
5: सर हम एक चरवाया है।
0: आगे बताओ।
5: सर ये 3 मई की बात है, कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
0: क्या देखा तुमने?
5: साहब मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा हैं।
0: क्या?
5: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ।
0: कितने लोग रहे होंगे?
5: साहब पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
0: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
5: साहब मेरा गांव है घरकोन, ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
0: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
1: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
0: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्को, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
1: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
0: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
1: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
0: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यम भावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
1: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
6: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
2: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
6: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
4: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
6: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
2: जी,
7: यस सर।
6: ये मेज के चारों ओर।
2: जी सर।
7: उधर से।
6: जी, तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
2: जी सर।
6: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
2: जी सर।
6: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
2: जी सर।
6: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
2: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर, यहां से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
6: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
8: यस सर।
6: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
2: जी सर।
6: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
2: सर।
6: कोई शक?
2: नो सर।
6: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
8: यस सर।
2: अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
7: धीमे बोलो, धीमे।
2: जी,
7: उन्हें पता ना चल जाए।
2: जी सर।
7: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे।
2: जी।
7: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
2: ठीक है सर।
7: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक घात गोला फेंकना।
2: जी सर।
7: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें

0: सांस नहीं निकलनी जैसे धीरे धीरे धीरे तपे बस अब हम चोटी पर आ गए हैं तो अब रेंगना शुरू कर रेंगेंगे
1: जी सर
0: कोई भी उठकर नहीं चाहेगा सब रेंगेंगे आवाज नहीं हर कोई अपनी पोजीशन ले ले
1: हाँ सर
0: एवरीबॉडी रेडी
1: यस सर
0: यस सर अब हथगोला फेंको
2: गुड वो अपने बंकरों से बाहर आ रहे हैं

0: इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
0: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
1: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा है कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
0: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।
2: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं FM के 102.4 MHz पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। दिन के 3:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में श्रोताओं लीजिए सुनिए पंकज उदास की आवाज़ में चंद गज़लें।

आप सुन रहे थे पंकज उदास की आवाज़ में गीत। सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 3:45 हुए हैं। लोकगीत, आदिवासी लोकगीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी देर में।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 4 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आप सुनेंगे समाचार मुख्यांश। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेटा। इस वर्ष सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 तक विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय के लिए आयोजित की गई थीं। बोर्ड के अनुसार परीक्षा में 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए, जिनमें से 15,07,000 से अधिक छात्र छात्राएं सफल हुए हैं। इस वर्ष कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20 रहा। गुमला जिला भाजपा ने आज समाहरणालय के समक्ष बिजली और पेयजल संकट को लेकर आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था, बिजली और पेयजल व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। रांची नगर निगम में नक्शा पास करने की प्रक्रिया को लेकर दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल किया कि राज्य में असिस्टेंट टाउन प्लानर कार्यरत होने के बावजूद रांची नगर निगम में उनसे नक्शा पास कराने का काम क्यों नहीं लिया जा रहा है। गोमिया के पूर्व विधायक तथा झारखंड बिहार में मंत्री रह चुके माधवलाल सिंह का आज रांची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। माधवलाल सिंह गोमिया विधानसभा से वर्ष 1985, 1990, 2000 और 2009 में विधायक चुने गए। गुमला नगर भवन में आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिर्गी रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सहिया, साथी और बीटीटी के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान मिर्गी रोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। और सरायकेला खरसावां जिले के 3 खिलाड़ी 17 मई को धनबाद में होने वाली राज्य स्तरीय मॉडर्न पेंटाथलॉन चयन प्रतियोगिता में भाग लेंगे। जिला संघ के सचिव सिकंदर महतो ने बताया कि शोभा महतो, रशिक चंद्र हासा और मिलन सोए जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: श्रोताओं, इस समय आपने ट्यून किया है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। शाम के 4:02 हुए हैं। लीजिए सुनिए नाटिका ठंडा मीठा जहर। लेखक हैं समीर कुमार गांगुली।

0: अरे केशव लौट आए?
1: हाँ भैया, दास सदा के लिए।
0: हिम्मत रखो केशव, अच्छा किया साथ ले आए।
1: लल्ला बेटे, इनको नमस्ते करो, ये अली चाचा।
0: बेटा, अच्छा केशव भाई, हुआ क्या था? क्या कुछ बीमार बीमार थी भाभी कुछ?
1: ना इंसान भाई, खेत में गई थी बेचारी, वहां सांप ने काट खाया।
0: या अल्लाह,
1: ये तो 13वीं भी हो चुकी थी। हम घरवाली का मर पाए, हमारे तो कर्म फूट गए हैं बस।
0: रो मत केशव, रो मत, आगे की सोचनी होगी, इस बच्चे लल्ला की सोचनी होगी, आज की कल की सोचनी होगी।
1: भैया, मालिक हमें कहीं नौकरी से तो नहीं निकाल देंगे? 2 महीने से ऊपर हो गए।
0: अरे काहे की चिंता करते हो यार, अगर वहां कोई ऐसी वैसी बात हो तो अपनी फैक्ट्री में आ जाओ। नए मालिक का नाम है चंदर साहब, नया नया मसाला लगता है और कुल्फी आइसक्रीम की भी नई नई वैरायटी।
1: अच्छा,
0: हाँ, कभी खिलाएंगे तुम्हें?
1: बाबा, हम तो क्या खाएंगे इंसान भैया, कभी कभार हमारे बच्चे पर थोड़ी कृपा कर देना बस।
0: अरे केशव, आज से वो तुम्हारा क्या, हम सब का बच्चा है। अरे लल्ला, इधर आ बेटा, तुम्हें आइसक्रीम कैसी लगती है राजा?
2: चाचा, ठंडी।
0: हाँ, और?
2: मीठी।
0: और
2: अच्छी।
0: अच्छा, तो फिर तुमको रोज एक आइसक्रीम मिलेगी, पक्की बात है?
2: रोज?
0: बिल्कुल रोज।
2: मैं स्कूल भी जाऊंगा चाचा।
0: हाँ हाँ, वहाँ मैं ही तो आइसक्रीम लेकर आया करूँगा और तुम्हें रोज दूंगा मुफ्त में।
2: चाचा, तुम कहाँ आइसक्रीम बेचते हो?
0: बेटा, स्कूल के बाहर। अरे मेरी आइसक्रीम की ढेली पर तो इतनी भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है कि बस।
3: अरे
0: अंजीर वाली नहीं, ऑरेंज वाली है भैया, वो ले लो, ये ले लो।
4: गड़बड़
0: नहीं भैया, छुट्टे पैसे लाओ, देखो छुट्टे पैसे नहीं है अपने पास। अच्छा अच्छा, लाओ लाओ।
3: अरे पूरे 1 रुपए दे दो क्या?
4: नहीं, बाकी की आइसक्रीम लेनी है मुझे।
0: अच्छा, तो हम देते ना आइसक्रीम आपको, ये लो भैया, ये लो,
4: जल्दी देना।
0: अच्छा
3: गुरुजी, हम भी मदद कर दे पैसे गिनने में। अपनी बिक्री तो बिल्कुल चौपट करवा दी तुमने, हम तो सोचते हैं कल से अस्पताल के सामने बेचा करें।
0: अच्छा ये बताओ, केशव भाई की खबर कुछ मालूम है?
3: हाँ, वो कुछ कह रहा था कि उसकी जोरू सांप के काटे मर गई।
0: अब इतना ही नहीं, उसकी तो इधर नौकरी भी छूट गई भैया, और साथ ही एक मासूम बच्चा है लल्ला।
3: हाँ भैया, और सुना है बाप से ज्यादा प्यार उसे तुम करते हो। अब क्या नाम है केशव के लड़के का?
0: लल्ला। अरे बेटा लल्ला।
2: आया चाचा।
0: अरे कितनी देर इंतजार कराता है बेटा तू, क्या कर रहा था?
2: किताब पढ़ रहा था चाचा।
0: अच्छा ले, ये पकड़ आइसक्रीम।
2: चाचा,
0: हाँ?
2: आइसक्रीम अच्छी है।
1: इंसान भाई, तुम्हारे दिल में इतना प्यार देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं कभी।
0: अच्छा ये बताओ, कहीं कुछ नौकरी का जुगाड़ बैठा या नहीं?
1: अजी कहाँ।
0: अरे तो तुम हमारी कुल्फी फैक्ट्री में क्यों नहीं आ जाते भाई, क्या हर्ज है?
1: नहीं वो बात नहीं है, पर तुम्हारे वो जो चंदर साहब के बारे में कुछ ऐसी वैसी बात सुनी है कि हमने जो।
0: अरे ऐसी वैसी बातों पर कान क्यों देते हो भाई।
1: सही है, तो ऐसा करता हूँ, परसों नर्सों ले चलना मुझे अपने साथ।
0: अरे खचेड़ू खचेड़ू। अरे यार बात क्या है, कोई बच्चा नहीं आया, आज इंटरवल खत्म होने आया भाई।
3: हाँ भैया, अब हमारे साथ तुम्हारे भी ग्रह उल्टे चलेंगे। बच्चों को मना कर दिया गया है कि बाहर से कुछ खरीद कर ना खाएं।
0: बच्चों को मना कर दिया गया?
3: हाँ हाँ, देखते नहीं आज गेट नहीं खुला।
0: क्यों?
3: अरे सुना है कल 2 बच्चे स्कूल में उल्टियां करते करते बेहोश हो गए, गाड़ी से अस्पताल जाना पड़ा।
0: अरे लेकिन उससे हम लोगों का क्या वास्ता भैया?
3: भगवान जाने, एक मास्टर जी आए थे कल, तब तुम चले गए थे।
0: हाँ।
3: मुझे 2-4 सुना गए, कहने लगे कि पता नहीं हम क्या क्या बेचते हैं कि बच्चे कक्षा में सुस्त पड़ जाते हैं, शायद हमें यहाँ से खदेड़ देंगे।
4: ये आइसक्रीम वाले, जल्दी से 6 मैंगो देना, बाकी पैसे छुट्टी में ले लेना। ये आइसक्रीम वाले जल्दी करना, मास्टर जी ने देख लिया तो छुट्टी हो जाएगी।
0: अरे तो ये लो ना भैया, ये लो भैया।
3: अली भैया, वो देखो, वो बच्चा तो दीवार बांध के आया। भाई आइसक्रीम का चस्का ऐसा होता है क्या? अरे उधर देखो अली भैया, वो बच्चे उस भिखारी को पैसे पकड़ा रहे हैं, शायद उसको तुम्हारे पास भेज रहे हैं आइसक्रीम के लिए।
1: अरे इंसान भाई, इंसान भाई।
0: हाँ हाँ केशव भैया, क्या हुआ, बात क्या है, क्यों हाँप रहे?
1: वो जल्दी करो जल्दी करो भैया, वो लल्ला।
0: हाँ क्या, क्या क्या हुआ लल्ला को?
1: वो अस्पताल में है इंसान भैया, उसे कुछ हो गया, जिंदा नहीं रहेंगे हम, जिंदा नहीं रहेंगे।
0: अरे केशव भैया रोना बंद करो, पहले तो ये बताओ कि उसे हुआ क्या?
1: इंसान भाई स्कूल से लौटा तो बोला सर दर्द से फटा जा रहा है।
0: हाँ।
1: मैंने कहा खाना खाकर सो जा बेटे।
0: अच्छा।
1: पर इतने में उल्टियां करते करते वो बेहोश हो गया और मैं बशीरा को अस्पताल में बिठाया हूँ उसके पास। अब तुम चलो।
0: हाँ, हाँ, चलो
1: जल्दी चलो
0: चलो।

0: तो तू है इंसान अली?
1: अजी भाई बाप,
0: 3 दिन तक कहाँ था तू?
1: अब साहब, दोस्त का लड़का बीमार था।
0: तो तू नर्स था वहाँ, नौकरी की जरूरत नहीं है क्या? क्या भाग गया यहाँ से?
1: साहब रहम कीजिए साहब।
0: और तू मुझे चूना लगा रहा है? तुम लोग किस मिट्टी के हो, दिल लगाकर काम करना ही नहीं जानते। चल उस कार से सामान उतार कर गोदाम में पहुंचा।
1: जी साहब। ठीक है,
2: पैकेट तो छोटा है लेकिन है बहुत भारी। जरूर आइसक्रीम का पाउडर होगा। और ये अपना गोदाम भी तो खाली खाली लगता है, कभी पूरा भरता ही नहीं है।
0: बिल्कुल पीछे रखना है, काले ड्रम के पीछे।
1: जी साहब।
2: अरे ये पैकेट तो फट गया, ये गंध कैसी है? अरे ये काला काला, ये तो लगता है अफीम है। हाँ अफीम है, चुन्नी लाल जो खाता है ना, मैं धोखा नहीं खा सकता, ये अफीम है। अच्छा एक काम करता हूँ, एक टुकड़ा जेब में रख लेता।
0: अरे अरे इतनी देर क्यों हो रही है? बाकी पैकेट तेरा बाप रखेगा क्या?
1: आया साहब आया।
2: मेरा बाप तो इन्हें उठवाएगा यहाँ से।
0: जल्दी कर।
1: जी साहब।

0: सब ठीक तो है ना केशव? इंसान भाई लौट आए? अब भैया सुबह से ग्लूकोज चढ़ रहा है, होश आता है जाता है, आता है जाता है। ये डॉक्टरनी मेम साहब कहती है कि कोई नशीली लत पड़ गई है।
1: नशीली लत पड़ गई है?
0: हाँ।
1: क्या कह रहे हो? अच्छा बात करता हूँ डॉक्टर साहब।
2: जी।
1: हमारा लल्ला ठीक तो हो जाएगा ना?
2: देखिए मामला जरा सीरियस है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं, घबराने से कुछ होगा भी नहीं। कितने शर्म की बात है कि लोग पैसा कमाने की खातिर बच्चों को भी नहीं बख्शते। इन मासूम बच्चों में नशे की आदत डलवाई गई है ताकि उनका धंधा चल सके।
1: डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपका मतलब है कुछ और भी ऐसे बच्चे हैं?
2: जी हाँ, इसी अस्पताल में दो और हैं, हो सकता है और भी कई बच्चे इसके शिकार हुए हों।
1: डॉक्टर जी एक बात बताइए।
2: जी हाँ पूछिए।
1: नशा क्या अफीम का है?
2: देखिए रिपोर्ट में आया है कि अफीम के अलावा दूसरे कई खतरनाक ड्रग्स यानी नशीली चीजें भी हैं। ओह गॉड, पता नहीं कौन है इन सबके पीछे।
3: डॉक्टर जी मैं जानता हूँ कौन है वो राक्षस।
2: कौन है?
3: मैं
2: वो?
3: जानता हूँ। ये
2: बताइए।
3: ये देखिए ये जहर का ये टुकड़ा देखिए।
2: ओह माय गॉड, ये तो अफीम है। जी
3: डॉक्टर जी मैं पूरे गैंग को रंगे हाथ पकड़वा सकता हूँ, वहां से आज ही ये माल आया है।
2: क्या कह रहे हैं आप?
3: जी मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं ठीक कहता हूँ, लेकिन डॉक्टर जी साथ में पुलिस अफसर होना चाहिए।
2: ओह ऐसी बात है, तो देखिए मैं एक डीएसपी को जानती हूँ, मैं उन्हें फोन करके पूरी टीम के साथ यहाँ बुलवा देती हूँ, ठीक है? और आप जाएंगे ना वहाँ?
3: जी जरूर जाऊंगा।
0: इंसान अली ये क्या है और तुम क्या कह रहे हो भैया, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा।
3: मुझे इंसान मत कहो केशव, मैंने तो हैवान का काम किया है।
0: क्या क्या कह रहे हो?
3: मैंने अपने हाथों से बच्चों में जहर बांटा है, अपने लल्ला का गुनाहगार भी मैं ही हूँ केशव। मैं तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा, मैं पापी हूँ गुनाहगार हूँ केशव।
0: क्या बक रहे हो?
3: हाँ केशव, मैं जो कुल्फी आइसक्रीम बेचता था उसी में नशे की चीज मिली होती थी। ये उस चंद्र बदमाश की करतूत, वो चाहता था कि बच्चों की इसकी लत पड़ जाए और उसकी बिक्री होती रहे।
0: हे भगवान,
3: आज मैं समझा बच्चे मेरे पास क्यों टूट पड़ते थे। या अल्लाह मैंने बच्चों का ये क्या किया, अब कौन यकीन करेगा कि मैं उन्हें कितना प्यार करता था। लेकिन खुदा तू तो जानता है सब कुछ अनजाने में हुआ है।
2: आइए आइए, देखिए डीएसपी साहब पूरी तैयारी के साथ आ गए हैं और आपको अब अपने काम में सफल होना है।
3: जी हुँ? जी
2: देखिए पूरे गैंग को खत्म करना है, ध्यान रखिएगा।
3: जी
2: चलिए
3: चलिए।
2: मिस्टर केशव।
0: जी डॉक्टर मैम जी।
2: देखिए नशीली चीजें बेचने वाला पूरा गैंग पकड़ा गया है।
0: अच्छा?
2: और आपके दोस्त ने बड़ी बहादुरी से एक एक को पकड़वा दिया।
0: वाह,
2: कोई भी भाग नहीं पाया।
0: जी
2: लेकिन इंसान भाई।
0: क्या हुआ इंसान भाई को?
2: वे अब हमारे बीच नहीं रहे, उन्हें गोली लगी और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो
0: क्या? नहीं नहीं, हमारा इंसान भाई मर नहीं सकता। नहीं
2: देखिए इंसान की इंसानियत हमेशा जिंदा रहती है, और हमारे डीएसपी साहब ने बताया है कि मरने से पहले इंसान अली ने आपके लिए कहा है कि
4: केशव भाई जब सांप ने तुम्हारी पत्नी को काटा था तो वो लाचार बेचारी चल बसी थी, तुम भी मजबूर थे, लेकिन आज इन इंसानी सांपों ने, इन जहर बेचने वालों ने, इन नशे के दलालों ने जिनके काटे का कोई इलाज नहीं, तुम्हारे बच्चे को मेरे देश के नौनिहालों को डसना चाहा था, पर डस नहीं पाएंगे कभी नहीं, उनके दांत टूट चुके हैं, मैं कभी नहीं डसने दूंगा, कभी नहीं, कभी भी नहीं।
5: इंसान अली मेरे भाई, तुम इन दरिंदों, इन मौत के सौदागरों से मेरे बच्चे को बचाकर खुद कुर्बान हो गए, तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे उतारूंगा इंसान भाई, तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारेंगे मेरे देश के बच्चे। इंसान भाई, इंसान भाई।
6: आप सुन रहे थे नाटिका ठंडा मीठा जहर, लेखक थे समीर कुमार गांगुली। आइए अब सुनते हैं हास्य नाटिका छुटकारा, लेखक हैं मदन मोहन खन्ना, निर्देशन किया है गंगा प्रसाद माथुर ने।
7: किसकी चिट्ठी है?
8: देती हूँ।
7: अरे किसकी है?
8: एक और मुसीबत।
7: ओहो क्या हो गया?
8: तुम्हारे ताऊ जी आ रहे हैं।
7: ताऊ जी मर गए, अब क्या होगा?
8: होना क्या है, मुसीबत तो मेरी है। आए दिन मेहमान, अभी अभी मौसी दिल्ली दर्शन करके गई है और अब ताऊ जी आ रहे हैं।
7: मैंने तो कहा था दिल्ली ट्रांसफर कराने में नुकसान ही नुकसान है, तुम ही ने जिद की, अब जिसे देखो दिल्ली चला रहा।
8: मौसी तो फिर भी चौके चूल्हे में हाथ बटा दिया करती थी, मगर ताऊ जी तो महान बोर है बोर, उनकी बातें सुनते जाओ और खिलाते जाओ।
7: लेकिन अब होगा क्या?
8: होना क्या है, सोचती हूँ दो चार दिन को मैं के हुआ।
7: हाँ हाँ भगवान, ऐसा गजब ना करना, तुम चली गई तो यहाँ क्या होगा?
8: तो बताओ मैं क्या करूँ?
7: करना क्या है, आओ बैठो, जरा सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। क्या लिखा है ताऊ ने?
8: लिखा है वो आज दोपहर की गाड़ी से घर आ रहे हैं।
7: और हम आज सवेरे अभी इसी वक्त घर से जा रहे हैं।
8: जा रहे हैं मगर कहाँ?
7: ओहो घर से चलो तो सही, फिर सोच लेंगे।
8: और तुम्हारा दफ्तर?
7: आज दफ्तर से छुट्टी।
8: और खाना?
7: खाने की भी छुट्टी।
8: और पप्पू?
7: उसे भी छुट्टी, रास्ते में चलकर उसे स्कूल से ले चलते।
8: फिर
7: क्या, पहले कहीं 12 बजे का शो देखेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर शॉपिंग करेंगे, घूमेंगे, इंडिया गेट चलेंगे, फिर रात का खाना वाना खा कर आएंगे।
8: और मेहमान?
7: और मेहमान उनकी भी छुट्टी, वो ताला देकर वापस चले जाएंगे।
8: कहाँ जाएंगे ताऊ जी?
7: अरे भाई उनके और रिश्तेदार भी तो हैं दिल्ली में, हम तो उनके दूर के रिश्तेदार
8: हैं। और तुम्हीं तो ताऊ जी को अपने सर पर चढ़ा रखा है, वो अपने सगे रिश्तेदारों को भूल ही जाते हैं।
7: ओ चलो आओ हम भी सब कुछ भूल जाएं। चलो चलो
8: चलो, कहाँ चलेंगे?
7: पप्पू को स्कूल से लेते हुए पिक्चर हाउस। आपका टिकट?
8: ये रहे हमारे टिकट।
1: मगर ये बच्चा कितने साल का है?
7: 6 साल का,
1: तो हॉल के अंदर नहीं जा सकेगा।
8: मगर क्यों, हमने इसका पूरा टिकट लिया है।
1: तो ठीक है बहन जी, मगर आपको नहीं मालूम 5 साल से ऊपर के बच्चे 12 बजे दिन का शो नहीं देख सकते।
7: ओ, ये कमबख्त तो मैं भूल ही गया।
8: मगर तुमने पप्पू की उम्र 6 साल क्यों बताई?
7: अरे तो क्या वो 5 साल से छोटा लगता है? ठहरो ठहरो कुछ और सोचने दो।
8: लेकिन भाई साहब हम बड़ी मुश्किल में हैं, इस बच्चे को कहाँ छोड़ें?
7: हम लोग इतनी दूर से आए हैं
8: और घर में इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है।
1: मैं क्या बताऊँ साहब, मजबूरी है।
8: अब क्या होगा, सारा मजा किरकिरा हो गया।
7: अच्छा तुम घबराओ नहीं शांता, अपनी टिकट लो और हॉल में जाकर बैठो, मैं अभी पप्पू का इंतजाम करके आता हूँ।
8: जल्दी करना।
7: हाँ हाँ तुम अंदर जाओ, आओ पप्पू बेटे चलो।
9: आइए साहब, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?
7: इंस्पेक्टर साहब ये बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ गया है और अपने घर का पता भी नहीं बताता।
9: क्यों भाई, क्या नाम है तुम्हारा?
10: पप्पू।
9: शाबाश, और तुम्हारे डैडी का नाम क्या है?
10: डैडी।
9: अरे भाई नाम पूछ रहा हूँ नाम, देखो जैसे मेरा नाम रामनाथ है, तुम्हारा नाम पप्पू है और
10: मेरा नाम पप्पू है और डैडी का डैडी है।
9: डैडी का डैडी है, अच्छा मम्मी का नाम क्या है?
10: मम्मी।
9: कहाँ रहते हो?
10: अपने घर।
9: अरे भाई घर कहाँ है?
10: स्कूल के पास।
9: शाबाश, और स्कूल कहाँ है?
10: घर के पास।
9: ओफो, अच्छा साहब आप जाइए, हम पूछताछ करके बच्चे को उसके घर पहुंचा देंगे।
7: अच्छा इंस्पेक्टर साहब मुझे इजाजत है?
9: जी हाँ।
7: अच्छा बेटे पप्पू, जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें लेने नहीं आ जाते तुम अपने इंस्पेक्टर अंकल के साथ ही रहना। अच्छा
10: अच्छा टाटा।
7: टाटा।
9: हाँ बेटे, बड़ा अच्छा बेटा है मेरा, क्या नाम है तेरा?
10: पप्पू।
9: और डैडी का नाम क्या है?
10: डैडी।
9: ओफो, अरे भाई मम्मी का नाम क्या है?
10: मम्मी।
9: मम्मी का बच्चा, कहाँ रहते हो?
10: अपने घर।
9: ओफो, तुम्हारा घर कहाँ है?
10: स्कूल के पास।
9: और स्कूल कहाँ है?
10: घर के पास।
9: और घर कहाँ है?
10: स्कूल के पास।
9: ओफो, क्या मुसीबत है। अरे प्यारे बेटे पप्पू, जहाँ तुम रहते हो उस जगह को क्या कहते हैं?
10: घर, हमारा घर।
9: घर का बच्चा, बदतमीज। अरे रोता क्यों है भाई, रोता क्यों है? ओफो, अरे भाई चुप हो जा बेटे, चुप हो जा, मत रो, चुप हो जा।
10: मुझे भूख लगी है।
9: भूख लगी है? भोले, ओ भोले।
11: जी इंस्पेक्टर साहब।
9: पप्पू को दूध पिलाओ।
10: मैं बिस्कुट भी खाऊंगा।
9: बिस्कुट भी खाऊंगा? हाँ। इसे बिस्कुट भी खिलाओ।
11: अच्छा साहब
9: बेटे रो रो मत बेटे, चुप हो जा, बड़ा अच्छा लड़का है मेरा बेटा, चुप हो जा।
10: मैं बेटा तो अपने डैडी का हूँ।
9: ओफो डैडी के बच्चे, अबे डैडी का नाम तो बता।
10: डैडी
9: डैडी डैडी डैडी, मेरा तो दिमाग खराब हो गया।
12: ये लीजिए दूध और पप्पू ये लो बिस्कुट।
9: भोला बच्चों को दूध पिलाकर इससे घर का पता दरियाफ्त करने की कोशिश करो।
12: जी साहब।
9: मेरा तो दिमाग खराब कर दिया इसके क्रॉस एग्जामिनेशन ने।
12: जी अच्छा सर, लो पप्पू मास्टर दूध पी लो है, और ये लो बिस्कुट भी। शाबाश शाबाश, बड़ा अच्छा लड़का है।
10: भोला अंकल अब मैं खेलूंगा।
12: खेलेगा?
10: हाँ।
12: कहाँ खेलेगा, किससे खेलेगा? अब तेरे लिए मैं बच्चे कहाँ से लाऊं?
10: तुम जो हो
12: तू मेरे साथ खेलेगा?
10: हाँ हाँ।
12: अरे तू मेरे साथ क्या खेलेगा?
10: चोर सिपाही।
12: चोर सिपाही?
10: हाँ, तुम चोर बनना।
12: मैं कांस्टेबल चोर?
10: हाँ, और मैं थानेदार बनूंगा।
12: तुम थानेदार? ओ, कहीं इंस्पेक्टर साहब सुन तो नहीं रहे। अच्छा फिर?
10: हाँ। फिर मैं तुमको पकड़ कर थाने ले जाऊंगा।
12: थाने? अरे ये थाना तो है ही, तुम्हारा घर तो नहीं है।
10: अच्छा अच्छा, अब तुम भागो, मैं तुम्हें पकड़ूंगा।
12: अरे अरे, ये इंस्पेक्टर साहब का दफ्तर है, तू मुझे मरवाएगा।
10: अरे जा डरपोक कहीं का, इंस्पेक्टर अंकल से डरता है? मैं तो नहीं डरता।
12: हाँ, तू क्यों डरेगा, तू कोई भोला कांस्टेबल तो नहीं है।
10: अच्छा अच्छा भाग। लो मैं अभी अपनी फ्लैंग स्क्वाड बुलाता हूँ। भोला चोर पकड़ा गया, भोला चोर पकड़ा गया।
9: भोला भोला।
12: यस सर।
9: ये क्या हो रहा है?
12: सॉरी सर।
10: इंस्पेक्टर अंकल, हम चोर सिपाही का खेल खेल रहे थे, भोला चोर बना था और मैं सिपाही।
9: ओह गॉड, किस मुसीबत में फंस गया। अच्छा भोला तुम जाओ।
12: जी साहब।
9: पप्पू बेटे।
10: जी इंस्पेक्टर अंकल।
9: देखो तुम ये तस्वीरें देखो चुपचाप हैं।
10: अच्छा अंकल।
9: और मुझे काम करने दो।
10: अच्छा।
13: यो घर तो सुरेश का दी कैसा, और यू नंबर तो ठीक से है, आवाज दूछने या घंटी बजाऊं? बोरे दरवाजे पे तो ताला पड़ा था, कहाँ गए होंगे ये लोग भला? मेरी चिट्ठी तो मिल गई होगी, अंदर का तो कोई रास्ता नहीं से देखूं। यूके ताला मजबूत दिखे सा।
14: रे रे, ये क्या कर रहे हो?
13: ताला तोड़ू सू संतरी जी साहब।
14: ताला तोड़ रहे हो?
13: और के
14: वो तो मैं भी देख रहा हूँ।
13: और के देख रहा से भाई, तू
14: दिन धारे ताला तोड़ रहे हो मेरे होते हुए?
13: तो तेरा के काम, यहाँ जा तू अपना रास्ता ना,
14: और तुम्हें ताला तोड़ कर चोरी करने दू।
13: चोरी चोरी? तू मैंने चोर कहे से लू खबर तेरी डंडे से।
14: खबरदार, किसी हथियार का इस्तेमाल किया तो अभी सिटी बजाकर सिपाहियों को बुलाऊंगा।
15: अरे जा जा बुलवाले, जो अपना घर से जैसा चाहूंगा वैसा करूंगा। हाँ, तू कौन से दखल देने वाला?
14: ये तेरा घर है।
15: और ये तेरे बाप का से?
14: किसके बाप का से? ये तो थाने चलकर मालूम हो जाएगा बच्चे।
15: हाँ हाँ, डाकी चल थाने, मैं भी तेरी रिपोर्ट करूंगा कि तू भले मानस पर तंग करा से।
14: तो चल थाने।
9: हाँ भाई शंकर, कैसे आए?
15: ये नहीं आए इंस्पेक्टर साहब, मैं इनको लाया हूँ।
9: तुम कौन हो?
14: सर ये घर का ताला तोड़ रहा था, मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया।
9: तो तुम ताला तोड़ रहे थे?
13: ये झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, झूठ बोल रहे हैं। वो तो मेरे भतीजे का घर है।
9: भतीजे का?
13: जी इंस्पेक्टर साहब, आज ही मैं पलवल से आया हूँ दोपहर की गाड़ी से अपने सुरेश के पास। वो घर में थे नहीं, शायद कहीं गया हो आस पास। मैं मकान में कहीं बैठने की सोच ही रहा था कि कम बखत ने धर लिया और लगा चोर चोर भगाने। मैंने चोर बता, वैसे बताओ बताओ
9: तुम्हारे पास क्या सबूत है ये? कि तुम पलवल से आए हो?
13: के बात करो से इंस्पेक्टर साहब, यू पढ़ लो कार्ड, पढ़ो है? ये मेरे सुरेश ने लिखा से, देखो इस पे क्या लिखा, इसको पता भी लिखा से। हाँ?
9: लाओ इधर लाओ। ये तो ठीक है।
13: हाँ।
9: तुम्हें गलत फहमी हुई है शंकर।
13: मुझे चोर बता भैया। इब बोल।
9: चौधरी साहब। हाँ। शंकर अपनी ड्यूटी दे रहा था।
13: हाँ।
9: आगे से ख्याल रखा करो शंकर, अच्छे बुरे की पहचान कर लिया करो। जाओ अपना काम करो।
13: जी सर। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, चालू सु है। इंस्पेक्टर साहब एक बात पूछनी से।
9: हाँ हाँ पूछिए।
13: ये छोरा कौन से?
9: ये बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ गया है साहब।
13: बिछड़ गया?
15: मगर मैं तेसु जानू सू क्यों भैया आ मेरे पास आजा आजा के नाम से तेरा है? अरे यू छोरा तो मेरे भतीजे का सा इंस्पेक्टर था
9: पप्पू तुम इन्हें जानते हो
16: नहीं अंकल वा? ये तो कोई बच्चे उठाने वाला लगता है
15: अरे
16: देखो ना अंकल इसकी गठी में कितने बच्चे हैं
15: इंस्पेक्टर साहब इसे कहने दीजिए मैं इसे घर पहुंचा दूंगा
16: नहीं नहीं अंकल मुझे बचाओ इससे मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा
9: कोई बात नहीं डरो मत बेटे जाओ बाबा जाओ अपना काम करो इस बच्चे को तुम नहीं जानते खाम खा किसी दूसरे इल्जाम में न धर ले जाओ
15: अच्छा इंस्पेक्टर साहब चालू सू है मगर इस छोरे को मैं जानू सू अच्छा राम राम
9: राम राम क्या मुसीबत है क्या क्या होगा तीन बजने वाले हैं और बच्चे के बारे में कोई पूछने तक नहीं आया
16: मैं अंदर आ सकती हूँ इंस्पेक्टर साहब
9: आइए आइए
16: मम्मी मम्मी अरे पप्पू
9: अरे ये आपका बच्चा है
16: जी इंस्पेक्टर साहब
17: मम्मी तुम
16: अरे बेटी अब मेरे पास आ जाओ ये लो चॉकलेट खाओ ये लो आओ बेटे आओ ना आओ ना इंस्पेक्टर साहब ये यहाँ कैसे आया
9: देवी जी इस बच्चे को कोई साहब यहाँ छोड़ गए थे हम तो खुद परेशान थे
16: मैं भी बहुत परेशान थी इंस्पेक्टर साहब शुक्र है मेरा पप्पू सही सलामत तो है
17: मैं ठीक हूँ मम्मी
16: अच्छा बेटे
17: इंस्पेक्टर अंकल बड़ी अच्छी हैं
16: अच्छा
17: उन्होंने मुझे दूध भी पिलाया और बिस्कुट भी खिलाए
16: अच्छा ओहो मैं किस मुंह से धन्यवाद दूँ आपको
9: नहीं नहीं देवी जी ये तो हमारा फर्ज है
16: अच्छा जी धन्यवाद पप्पू बेटे इंस्पेक्टर अंकल को टाटा करो
17: टाटा इंस्पेक्टर अंकल
9: टाटा
16: आ चले
9: शुक्र है परमात्मा का बच्चा अपनी माँ के साथ चला गया अब कुछ काम कर सकूंगा
17: मैं अंदर आ सकता हूँ
9: आइए आइए आइए आइए आइए
17: वो जी मैं देखने आया था वो बच्चा
9: वो पप्पू
17: जी
9: उसे तो उसकी माँ अपने साथ ले गई आपको नाहक परेशानी हुई
17: परेशानी मैं तो इंस्पेक्टर बड़े मजे में 12 बजे का शो देख कर आ रहा हूँ खैर शुक्र है बच्चा अपनी माँ से मिल गया मगर देखिए ना आजकल के माँ बाप को भी कितने लापरवाह होते हैं
9: जी हाँ जी हाँ बिल्कुल
17: अच्छा तो मैं चलूँ नमस्कार
9: नमस्कार
16: आ गए आप
17: और पप्पू तुम
16: मैं भी डैडी थाने में खूब खेलता रहा
17: अच्छा चलो अब घर चले नहीं आओ कहीं से खाना खा कर चले पूरी छुट्टी मनाई जाए आज
16: लो हम पहुंच गए घर आज बहुत मजा आया
17: सिनेमा देखा
16: घूमे फिरे
17: फर्स्ट क्लास खाना खाया
16: और मेहमानों से
17: छुटकारा पाया

0: हाँ बहू, मेरे पेट में जो चूहे दौड़ रहे से उनसे मैं भी तो छुटकारा दिला दो। उरा उरा तू इब बता डाकी, तू वहां थाने में क्या कर रहा था?
1: डैडी मम्मी पिक्चर देखने गए थे ताऊ जी, मैं थाने में खेल रहा था। मगर आप वहाँ क्या करने गए थे ताऊ जी?
0: तेरे साथ खेलने।
2: आप सुन रहे थे हास्य नाटिका छुटकारा। लेखक थे मदन मोहन खन्ना, निर्देशन किया था गंगा प्रसाद माथुर ने।

सनम फिल्म का ये गीत श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। गीत लिखा था समीर ने और संगीत आनंद मिलन का था।

0: और श्रोताओं, आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनवाते हैं भेंट वार्ता, जिसका विषय है स्लीप एपनिया को ना करें नजरअंदाज वरना हो सकता है खतरनाक। श्रोताओं, भेंट वार्ता कर रहे हैं डॉक्टर शलभ रस्तोगी। श्रोताओं, नींद हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस नींद में कई लोगों को आपने सुना होगा, देखा होगा कि वो खराटे भी लेते हैं। ये खराटे सिर्फ खराटे होते हैं या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लक्षण, यानी किसी गंभीर बीमारी के लक्षण तो नहीं। आज इसी विषय पर विशेष बातचीत के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है टाटा मोटर्स के ENT विभाग के प्रमुख डॉक्टर शलभ रस्तोगी जी को। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद। सारे श्रोतागणों को मेरा भी सादर नमस्कार।
0: जी डॉक्टर साहब, और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर नींद क्यों जरूरी है?
1: देखिए, नींद बेसिकली हमारे 24 घंटे की जिंदगी में लगभग 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है
0: जी।
1: और उस नींद के दौरान हमारा शरीर की जितनी भी रिपेयरिंग होनी होती है वो रिपेयरिंग होती है, सारे डिटॉक्सिफिकेशन होता है शरीर का
0: जी।
1: और जब ये सब चीज हो जाता है तो उसके बाद जो भी ग्रोथ होना होता है शरीर का वो वाला चीज होता है
0: जी।
1: तो इसीलिए हम लोग हमेशा एडवाइस करते हैं कि आपको 8 घंटे की नींद लेना चाहिए। 6 से 8 घंटे की नींद आपकी स्वस्थ जीवन के लिए बहुत जरूरी है
0: जी। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, नींद 8 घंटे की होनी जरूरी है, लेकिन डॉक्टर साहब, आज आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या नींद में जो लोग खराटे लेते हैं, यानी कि क्या खराटे लेना कोई सामान्य बात है या किसी बीमारी का संकेत माना जाता है?
1: देखिए, खराटे लेना अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। खराटे का मतलब होता है कि आपका जो एयरवे है वो सोते वक्त थोड़ा सा संकरा हो गया है
0: जी।
1: लेकिन अगर खराटे के साथ साथ आपकी ऑक्सीजन लेवल कम होने लग जाता है या बीच में सांस रुकने लग जाती है तो ये बीमारी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहलाती है और जो कि एक गंभीर बीमारी है। तो इसलिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि खराटे अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खराटे वाले मरीजों को अपना एक निरीक्षण करवा लेना चाहिए
0: जी। तो ये जो बाधक निद्रा आश्वासन यानी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये इसे ही कहते हैं क्या?
1: जी, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बेसिकली ये एक स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर का एक पार्ट होता है
0: जी।
1: और जनरली इसमें सिंपल स्नोर, एक स्पेक्ट्रम के एक तरफ सिंपल स्नोरिंग होता है जिसमें हमारा ऑक्सीजन लेवल शरीर में कम नहीं होता है
0: जी।
1: और दूसरी तरफ एक स्पेक्ट्रम होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया
0: जी,
1: जिसमें हमारा ऑक्सीजन लेवल नीचे जाने लग जाता है, सांस रुक जाती है और ऑक्सीजन लेवल नीचे जाने लग जाता है
0: जी।
1: इन दोनों के बीच में एक और चीज आती है जिसे हम बोलते हैं अपर एयरवे रेजिस्टेंस सिंड्रोम
0: जी।
1: तो पहले मरीज को स्नोरिंग होता है, फिर धीमे धीमे चल के उसमें रेजिस्टेंस बढ़ने लग जाता है तो वो अपर एयरवे रेजिस्टेंस सिंड्रोम कहलाता है और अंत में फिर जाकर के वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में बदल जाता है
0: जी। तो डॉक्टर साहब, किन लोगों में ये बीमारी ज्यादा होती है?
1: जी, बहुत अच्छा सवाल ये। बेसिकली जो मोटे लोग होते हैं जिनका BMI जो है हमारा 30 से 35 के बीच में होता है या उससे भी ज्यादा होता है
0: जी,
1: जिनकी गर्दन छोटी होती है, जिनका मैंडिबल छोटा होता है, तो ऐसे लोग में ये वाली बीमारी ज्यादा पाई जाती है। ये बीमारी पुरुषों में ज्यादा होती है और पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में भी ये वाला बीमारी ज्यादा रहती है।
0: अच्छा, तो डॉक्टर साहब, इसके लक्षण क्या हैं? कैसे जानेंगे कि ये बीमारी आ रही है?
1: देखिए, सबसे प्रमुख लक्षण तो आपने बताया कि खराटे
0: जी।
1: अगर खराटों का रिदम जो है वो बीच बीच में ब्रेक हो जाता है, अगर खराटे लेते लेते आपको लगेगा कि मरीज जो है सांस लेना भूल जाता है या सांस नहीं ले पाता है
0: जी,
1: तो हमको ये

0: वाला बीमारी के बारे में सोचना चाहिए कि हमें ये
1: अच्छा
0: वाली बीमारी हो सकती है। और इसके अलावा दूसरे लक्षण हैं कि आपकी नींद पूरी आपको नहीं लगेगी, कि नींद जो है आपकी अच्छी रही, सवेरे उठ करके भी आप थके थके महसूस करेंगे, आपको हमेशा मन करता रहेगा कि कहीं भी समय मिले तो मैं थोड़ा सा और सो जाऊं। तो ये इस बीमारी के मुख्य लक्षण हैं जो
1: जी
0: हम लोगों को हमेशा सस्पेक्ट करना चाहिए कि ये पेशेंट में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या OSA हो सकता है।
1: जी तो डॉक्टर साहब, मान लीजिए अगर किसी को ऐसा शक होता है, उनको लगता है कि उनको इस तरह की बीमारी हो रही है, तो आखिर इसका जांच क्या है, कैसे इसकी जांच करवा सकते हैं?
0: जी जरूर। बेसिकली जब कभी भी ऐसा मरीज को प्रतीत होता है कि उसको ये बीमारी हो सकती है, या डॉक्टर को सस्पिशन होता है कि मरीज को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है,
1: जी
0: तो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है पॉलीसोमनोग्राफी, जिसे
1: अच्छा
0: हम सिंपल लैंग्वेज में स्लीप स्टडी भी बोलते हैं। तो
1: जी
0: स्लीप स्टडी में भी कई तरीके की होती हैं, लेवल 1 से लेवल 4। हम लोगों को जो सबसे अच्छा लेवल होता है वो हमारा लेवल 1 का होता है, जिसमें मरीज जो है स्लीप लैब में जाकर के सोता है और एक टेक्नीशियन उनकी रात भर उनकी देखरेख करता है और सारी चीजें रिकॉर्ड करता है।
1: अच्छा
0: इनके अलावा भी हमारे कुछ कुछ टेस्ट होते हैं, जो नाक के चेकअप होता है जिसमें डायग्नोस्टिक नेजल एंडोस्कोपी कहलाते हैं,
1: जी
0: गले का चेकअप होता है जो सिंपल आप लेरिंगोस्कोपी करा करके, फाइबर ऑप्टिक लेरिंगोस्कोपी करा कर कर सकते हैं।
1: जी
0: एक और महत्वपूर्ण टेस्ट होता है जिसे हम डाइस बोलते हैं, जिसका होता है ड्रग इंड्यूस स्लीप एंडोस्कोपी। मतलब इसमें हम लोग मरीज को कृत्रिम रूप से सुलाते हैं और देखते हैं कि उनकी एयरवे में कहाँ कहाँ रुकावट आ रही है। इसके
1: जी
0: अलावा सीटी स्कैन या फिर डायनामिक MRI कराने से भी हमें ये सारी जानकारियां प्राप्त
1: जी
0: हो सकती हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि लेवल 1 से लेवल 4 तक का जो टेस्ट होता है, तो मान लीजिए कोई भी मरीज लेवल 4 के अंदर आता है, तो उस समय उसको क्या करना चाहिए? और लेवल 4 में अगर वो इलाज ना कराए, तो मैंने किस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, क्या उससे कोई नुकसान है?
0: नहीं, ये लेवल 1 से लेकर लेवल 4 ये सिवियरिटी का नहीं है।
1: जी
0: ये बेसिकली हमारे टेस्ट का तरीका होता
1: तरीका
0: है।
1: होता है, अच्छा
0: मतलब हर मरीज को हम एकदम टॉप एंड वाला टेस्ट कराने के लिए नहीं बोलते हैं, पहले हम
1: अच्छा
0: स्क्रीन करा सकते हैं, वो लेवल 4 होता है। लेवल 3 में हम कार्डियोपल्मोनरी टेस्ट उसका मॉनिटरिंग करते हैं, वो
1: जी
0: लेवल 3 होता है। लेवल 1 हम या तो घर में कर सकते हैं टेक्नीशियन के बगैर, उसे लेवल 2 बोलते हैं, या फिर ये वाला टेस्ट हम लैब में कर सकते हैं जिसे लेवल 1 बोलते हैं।
1: अच्छा
0: तो जनरली जिन मरीजों में हमें नहीं मालूम है कि उसको स्नोरिंग की प्रॉब्लम है या OSA की प्रॉब्लम है,
1: जी
0: तो उस मरीज में हम शुरुआत लेवल 4 से कर सकते हैं। या जिस
1: अच्छा
0: मरीज में हमको मालूम है कि कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट है, उनको सारी बीमारियां हैं, शुगर भी है, हार्ट डिजीज भी है, प्लस हमें ये नहीं पता चल रहा है कि उनकी नींद में क्या क्या परेशानियां हैं। स्लीप एपनिया एक प्रॉब्लम है, इसके अलावा भी स्लीप की और दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनका डिटेल जानकारी के लिए फिर हमें लेवल 1 की टेस्ट कराना पड़ता है।
1: अच्छा तो डॉक्टर साहब, अब आपसे जानना चाहेंगे कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया अगर है किसी में और वो इलाज ना कराए,
0: जी
1: तो फिर क्या नुकसान है?
0: ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने, और
1: जी
0: ये मैं चाहता हूँ कि सारे श्रोतागण भी इस चीज को बहुत ध्यान से सुने,
1: जी
0: क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक साइलेंट किलर के तौर पर जाना जाता है। आपको दिन में बहुत कम सिम्टम्स आते हैं, जो भी सिम्टम्स होते हैं मेनली रात को ही होते हैं।
1: जी
0: तो कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग सोते सोते ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो
1: बिल्कुल
0: इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का बहुत बड़ा रोल माना जाता है, क्योंकि
1: अच्छा
0: ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में सांस रुक जाती है, ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। अगर मरीज समय पर नहीं उठा तो फिर ये वाला चीज जो है उसके लिए
1: घातक
0: घातक भी हो सकता
1: जी
0: है। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से आपका सारे सिस्टम, शरीर के जितने भी सिस्टम होते हैं, सब में ही कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है।
1: जी
0: दिल में आपका हार्ट की रिदम अफेक्ट हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है,
1: जी
0: स्ट्रोक आ सकता है मरीज को, डायबिटीज अगर किसी मरीज को हो तो उसकी डायबिटीज का कंट्रोल खत्म हो सकता है।
1: अच्छा
0: साथ के साथ पर मरीज बहुत थका हुआ महसूस करता है, बहुत शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। उसकी मेमोरी लॉस होने लग जाती है, ब्रेन फॉग आने लग जाता है, कंफ्यूजन में रहता है, और एक बड़ी चीज है कि उसका रिएक्शन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अगर ऐसे मरीज की ड्राइविंग करते हैं तो कई बार एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया दो कारण से मृत्यु इसमें हो सकती है। एक तो एक्सीडेंट बहुत कॉमन होता है ऐसे पेशेंट में, वो गाड़ी चलाते चलाते सो जाते हैं, या फिर वो सामने समय से ब्रेक किया वो चीज नहीं लगा पाते,
1: मतलब उनका सेंस उस वक्त काम नहीं
0: कम
1: करता।
0: कम हो जाता
1: अच्छा।
0: है। और दूसरा वो उनका हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन हार्ट तक नहीं पहुँचती है, तो हार्ट काम करना बंद कर सकता है।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब आखिर ऐसी बीमारी का इलाज क्या है और कैसे किया जाता है?
0: देखिए, इससे पहले मैं एक बार ये बताना चाहता हूँ कि इसमें मरीज को होता क्या है। बेसिकली मरीज सोता है तो दिन भर में उसका, मतलब जब जागा रहता है तब मसल टोन की वजह से उसका एयरवे जो होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है, वो मेंटेन रहता है।
1: अच्छा। यानी
0: उसमें सांस लेने के लिए सब कुछ ठीक ठाक रहता है। लेकिन जब ऐसे मरीज सोते हैं तो उनका मसल का टेंशन जो होता है, वो टोन जो होती है वो कम हो जाती है, और रात को इसी कारण से कई बार मतलब जो एयरवे है वो कोलैप्स हो जाता है।
1: अच्छा।
0: तो बीच बीच में उसकी सांस रुकने लग जाती है। अब जब सांस रुकती है तो फिर ऑक्सीजन कम होने लग जाती है शरीर में, तो दिमाग तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, तो दिमाग जो है हड़बड़ा करके उठाने की कोशिश करता है मरीज को।
1: अच्छा।
0: तो मरीज एक दो सेकंड के लिए उठता है, जिसे हम माइक्रो अराउजल बोलते हैं, और उसके बाद फिर सांस की गति ठीक होने लग जाती है, तो फिर वो सो जाता है। तो यही प्रक्रिया दिन, मतलब रात भर में 100 बार 200 बार होती रहती है। तो इसी वजह से मरीज की नींद पूरी कभी नहीं हो पाती है।
1: अच्छा।
0: और मरीज की जो हीलिंग होनी चाहिए नींद के दौरान, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है।
1: अच्छा।
0: तो इस चीज का इलाज के लिए बेसिकली तीन मोडेलिटीज कही जाती हैं।
1: जी जी।
0: एक होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन।
1: जी।
0: लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में, चूंकि हमने पहले बताया था कि वजन इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है, तो मरीज को वजन कम करने के लिए बोला जाता है।
1: बिल्कुल।
0: प्लस थोड़ा सा एक्सरसाइज करे, मसल टोन उसकी मेंटेन रहे, तो ये वाला चीज, ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आ गया।
1: जी।
0: दूसरा चीज होता है डिवाइस थेरेपी। डिवाइस थेरेपी में हमारा सांस की नली में पॉजिटिव एयर वे प्रेशर मेंटेन रखने के लिए कुछ डिवाइस आते हैं, जैसे सी पैप आता है, ए पैप आता है, या बाई पैप आता है। तो ऐसे मरीजों को ये वाला डिवाइस लगा करके ही सोना पड़ता है, ताकि उनका रात में जो एयर वे है वो कोलैप्स ना करे।
1: जी।
0: तीसरा चीज होता है कि अगर इन दोनों चीज से भी आराम नहीं पड़ता है, तो फिर हम लोगों को देखना पड़ता है कि किस लेवल पर हमारा ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन हमारा दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम। एक होता है स्टैटिक ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे नाक में होता है, या पीछे एडिनोइड्स हैं, टॉन्सिल हैं, बड़े हुए हैं, ये रास्ता रोक सकते हैं, तो ये स्टैटिक ऑब्स्ट्रक्शन कहलाते हैं। एक होता है डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे हमारा तालवा है वो पीछे चिपकने लग जाता है, जीभ जो है वो पीछे की तरफ खिसक जाती है, तो वो सांस के रास्ते को कम कर सकते हैं। तो ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन जो कि रात को ही होते हैं, इनको हम डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। तो उसी हिसाब से जांच करके इन चीजों का ऑपरेशन किया जाता है। टॉन्सिल निकाले जा सकते हैं, नाक की सर्जरी करी जा सकती है, एडिनॉइड हटाए जा सकते हैं, पैलेट की सर्जरी कराई जा सकती है, जिसे हम UPPP बोलते हैं।
1: अच्छा।
0: और टंग बेस रिडक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके की सर्जरीज होती हैं, और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, लेकिन ये सर्जरीज अवेलेबल है।
1: अच्छा। तो डॉक्टर साहब, ये जो लक्षण हैं और इस तरह की जो बीमारी है, जो पीड़ित लोग हैं, जो बीमार हैं, वो सिर्फ रात में सोने से ही इस तरह की घटनाएं होती हैं?
0: हाँ जी। ये
1: दिन में, अगर
0: दिन में सो जाएंगे तो दिन में भी हो सकता है, सोने के दौरान उनका जो है मसल टोन खत्म हो जाता है, और उसके बाद ये वाला चीज हो।
1: जी। अब जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे, तो क्या ये बीमारी बच्चों में भी होती है क्या?
0: हाँ जी, ये बीमारी बच्चों में भी होती है, और बच्चों में इसके क्राइटेरिया टेस्ट करने के काफी स्ट्रिक्ट होते हैं।
1: अच्छा।
0: तो जैसे स्लीप स्टडी में हम लोगों को AHI जांचते हैं। AHI का मतलब है एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स। तो जैसे बड़ों में 5 से नीचे नॉर्मल मानते हैं, 5 से 15 अगर इसकी वैल्यू आए तो माइल्ड बोलते हैं, 15 से 30 मॉडरेट है, और 30 से ऊपर ये सिवियर है।
1: जी।
0: बच्चों में अगर एक भी एपिसोड अगर आता है, AHI की वैल्यू 1 भी होती है, तो हम लोगों को उसको सिग्निफिकेंट बन जाता है।
1: अच्छा।
0: तो डेफिनेटली बच्चों में भी होती है ये बीमारी, और बच्चों में मेन कारण एडिनोइड्स और टॉन्सिल बढ़ना इसका मुख्य कारण होता है।

0: जी, और अब डॉक्टर साहब चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि इससे बचाव के लिए आखिर आम लोग क्या करें।
1: देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है और मेन चीज है कि आपको अपना वजन नहीं बढ़ने देना है। एक रफ कैलकुलेशन बोलते हैं कि अगर आपकी गर्दन की जो नाप है वो 17 इंच मेल में और अगर 16 इंच फीमेल में, अगर इससे ज्यादा है तो आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होने के पूरे पूरे चांसेस हैं।
0: जी,
1: आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको स्लीप हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, तंबाकू, अल्कोहल, स्लीपिंग पिल्स, जंक फूड, ये सारी चीजों का परहेज करना चाहिए।
0: जी,
1: और अगर कभी भी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम लगती है तो जाकर के ENT चेकअप एक बार करवाना चाहिए।
0: ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इस विषय पर डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता बंधु इससे लाभान्वित होंगे। तो स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता जिसका विषय था स्लीप एपनिया को ना करें नजरअंदाज वरना हो सकता है खतरनाक। भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर शलभ रस्तोगी।

घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर। हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

और श्रोताओं, आइए अब चलते चलते बात कर लेते हैं उस शक्ति की जो हमारे घरों की रौनक है, जो कभी ममता की मूरत बनकर तो कभी हिम्मत की मिसाल बनकर हमारा मान बढ़ाती है। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की, जो केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि समाज की मानसिकता को बदलने वाला एक महाअभियान है। श्रोताओं, आपको बताएं कि भारत में गिरते लिंगानुपात और बेटियों के प्रति बढ़ती संकीर्ण सोच को चुनौती देने के लिए भारत सरकार ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत की थी। यह अभियान इस विचार इस उद्देश्य पर आधारित है कि यदि एक बेटी शिक्षित और सुरक्षित होगी तो वो न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरे राष्ट्र का भविष्य संवार सकती है।

श्रोताओं, भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही है पृत संतानमक सोच और कुछ कुरीतियों के कारण कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याएं व्याप्त थीं, और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसकी शुरुआत की। तो श्रोताओं, इसी अच्छे विचारों के साथ आज के इस कार्यक्रम कल कारखाने से मुझे यानी इंदु को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के

0: लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 5,000 रोजगार सृजित होगा। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को भी सशक्त करेगी। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने वांछित नार्को आतंकवादी इकबाल सिंह उर्फ शेरा को गिरफ्तार कर लिया है। लंबे राजनयिक और कानूनी प्रयासों के बाद पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण में सफलता हासिल की गई है। 2020 से फरार इस आतंकवादी को पाकिस्तान समर्थित नार्को आतंकी मामले में गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। IPL क्रिकेट में रायपुर में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बेंगलुरु जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP, for 14 kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has increased the MSP of kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. He said, for the kharif season, the estimated payout to the farmers will be 2,60,000 crore rupees.
0: किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया।
3: टुडे अ मेजर डिसीजन वाज टेकन फॉर फार्मर्स फॉर ऑल खरीफ क्रॉप। द एमएसपी हैज बीन फिक्स्ड एट कॉस्ट प्लस 50% और इवन हायर। विद दिस डिसीजन फार्मर्स विल रिसीव अ टोटल पे आउट ऑफ 2,60,000 करोड़ रुपीज। द एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट फॉर दिस ईयर विल बी 824 लाख मेट्रिक टन।
0: खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
2: Mr. Vaishnav added that the MSP amount paid to 14 kharif crop growing farmers during the period 2014-15 to 2025-26 was 18.99 lakh crore rupees against the payment of 4.75 lakh crore rupees during the period 2004-5 to 2013-14. The Union Cabinet has approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. Mr. Vaishnav said the scheme will generate revenue of 6,300 crore rupees per year only from mining and will also support Atmanirbhar Bharat and Make in India initiative amid current geopolitical situation. Air India has decided to reduce international flights, temporarily suspending services on some of

0: हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:10 हुए हैं। कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत थोड़ी ही देर में।
1: प्रिय जिलावासियों जोहार, मैं नीतीश कुमार सिंह, उपायुक्त सरायकेला खरसावां, समस्त जिलेवासियों से अनुरोध करता हूँ कि वर्तमान में चल रही भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत अब आप स्वगणना सेल्फ इनुमरेशन के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही भविष्य में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और सरकारी योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा। आप अपने मोबाइल से sc.census.gov.in पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं भरें। यह पोर्टल झारखंड में 15 मई 2026 तक स्वगणना हेतु खुली रहेगी। आपकी गोपनीयता हमारी प्राथमिकता है। हमारे जिले के सुनहरे भविष्य और सटीक योजना निर्माण के लिए हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब आपकी बारी। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत।
2: झारखंड के लोकगीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नीलू का जोहार। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंच परगनिया लोकगीत। कलाकार हैं राम भजन।

अभी आप सुन रहे थे राम भजन सिंह और साथियों की आवाज़ में पंच परगनिया लोकगीत। इसके साथ ही झारखंड के लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 6:20 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार प्रसारित होंगे।

0: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। पश्चिमेशिया संघर्षेण उद्भूतस्य वैश्विक ऊर्जा संकटकालस्य मध्ये प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः आवाहनस्यानन्तरं केन्द्र राज्ययोः ईंधन संरक्षणस्योपायाः तीव्राः जाताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन चतुर्दश खरीफेति ग्रैष्मिक सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यं स्वीकृतम्। सूर्यपुष्पस्य बीजस्य सर्वाधिक वृद्धिः, तदनन्तरं कर्पासतिलयोः च। तमिलनाडु राज्यस्य जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे टीवीके सर्वकारेण राज्य विधानसभायां सहज बहुमतेन शक्ति परीक्षणं विजितम्। एन रंगसामी पंचमं वारं पुडुचेरी राज्यस्य कार्यकालाय मुख्यमंत्री रूपेण शपथं स्वीकृतवान्। अपि च CBSE द्वारा अखिल भारतीय वरिष्ठ माध्यमिक वर्गस्य द्वादशी कक्षायाः परीक्षा परिणामाः घोषिताः। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विशेष रक्षा समूहस्य SPG प्रोटोकॉल इत्यस्यान्तर्गतं सर्वाः आवश्यकाः सुरक्षा व्यवस्थाः अवलम्ब्य सद्यः एव आंतरिक यात्रासु स्वस्य यात्रा वाहनानां संख्या न्यूनीकृतवान्। सूत्रानुसारं प्रधानमन्त्रिणः यात्रा वाहनानां संख्यायां न्यूनीकरणं तस्य सद्यः गुजरातस्य असम राज्यस्य च भ्रमणकाले कार्यान्वितम्। आर्थिक स्थिरतायै योगदानाय नागरिकान् प्रति प्रधानमन्त्रिणः सप्ताग्रहाणाम् अनुरूपम् एतदभवत्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः आग्रहानन्तरं केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहेन उत्तरप्रदेशस्य मध्यप्रदेशस्य दिल्ल्याः च मुख्यमन्त्रिभिः विधायकैः जनप्रतिनिधिभिः च आधिकारिकयानानां संख्या 50% यावत् न्यूनीकर्तुम् आदेशः प्रदत्तः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवासरे संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली देशानां षड् दिवसीय यात्रां करिष्यति। अद्य सायंकाले नवदिल्ल्यां प्रसार माध्यमान् संबोधयन् विदेश मंत्रालयस्य सचिवः सीबी जॉर्जः संसूचितवान् यत् पंच देशानां यात्रायाः प्रथमे चरणे श्रीमोदी शुक्रवासरे संयुक्त अरब अमीरात देशं प्राप्स्यति, यत्र हि सः राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान इत्यनेन सह मेलनं करिष्यति। सः अवदत् यत् उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक विषयेषु विशेषतः ऊर्जा सहकारे अपि च परस्पर हित सम्बद्धेषु क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु च विचार विनिमयं करिष्यतः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य 98-19 शततमे वर्षे अस्मिन्नेव दिने भारते कृत परमाणु परीक्षणस्य स्मरणं कृतम्। सामाजिक माध्यमेषु एकं संस्कृत सुभाषितं विनिमयी कुर्वन् प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् एतत् परमाणु परीक्षणं देशस्य अविचल संकल्पं प्रदर्शयति। श्रीमोदी अवदत् यत् अस्य परीक्षणस्य अनन्तरं सम्पूर्णेन विश्वेन भारतं संपीडितम्, परञ्च देशेन सिद्धीकृतं यत् कापि शक्तिः भारतम् अवरोद्धुं न शक्नोति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन विपणन सत्रस्य 27-2000 तमवर्षयोः कृते चतुर्दश खरीफ इति ग्रैष्मिक सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्ये वृद्धिं स्वीकृतम्। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य सभायाः अनन्तरं प्रसार माध्यमान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् सर्वकारेण ग्रैष्मिक सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यं वर्धितम् अस्ति, येन उत्पादकेभ्यः तेषाम् उत्पादानां कृते लाभप्रदं मूल्यं सुनिश्चितं भविष्यति। सः अवदत् यत् ग्रैष्मिक कालस्य कृते कृषकाणां कृते प्रायः 60,000-2,00,000 रूप्यकाणि प्रदीयन्ते। सः अवदत् यत् अस्मिन् ऋतौ 24,800,000 मैट्रिक टन इत्यतोप्यधिकानि सस्यानि प्राप्तानि भविष्यन्ति। श्रीवैष्णवः अवदत् यत् MSP मध्ये सर्वाधिकं 22,600 रूप्यकाणि प्रति क्विंटल वृद्धि सूर्यमुखी बीजानां कृते अनुशंसितम्। तदनन्तरं 57,500 रूप्यकाणि प्रति क्विंटल कर्पासस्य कृते, 500 रूप्यकाणि प्रति क्विंटल तिलस्य कृते च अनुशंसितमस्ति।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: प्रिया श्रोतार संस्कृत वार्ताया संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन भू अंगारस्य तथा लिग्नाइट गैसिफिकेशन परियोजनायाः प्रोत्साहनाय 37.5 कोटि रूप्यकाणां वित्तीय व्ययस्य योजना अनुमोदिता। प्रसार माध्यमान् संबोधयन् केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् इयं योजना भारतस्य अंगारस्य लिग्नाइट गैसिफिकेशन इत्यस्य च कार्यक्रमं गतिप्रदानाय प्रमुखं पदाक्षेपमस्ति। श्री वैष्णवः अवदत् यत् योजनायाः अंतर्गतं 3 लाख कोटि रूप्यकाणां अपेक्षित निवेशः भविष्यति।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: तमिलनाडु राज्ये सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे तमिलगा वेट्रिकजगम दलस्य सर्वकारेण तमिलनाडु विधानसभायां बहुमत परीक्षणं विजितम्। चतुश्चत्वारिंशोत्तरैकशत विधायकाः पक्षे मतदानं कृत्वा सभायां स्पष्टं बहुमतं प्रदर्शितवन्तः। अत्रांतरे 22 विधायकाः विश्वासप्रस्तावस्य विरुद्धं मतदानं कृतवन्तः। कार्याचरणावधौ प्रमुखः विपक्षदलं DMK विधानसभा सदनात् बहिरगच्छत्। सद्यैव समाप्तेः विधानसभा निर्वाचने तस्य दलेन केवलम् 88 शतासनानि प्राप्तानि आसन्। तमिलनाडोः राज्यपालेन राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकरवर्येण विजयाय सदने बहुमतं साधयितुम् आज्ञापितमासीत्। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दलस्य नेता एन रंगासामी अद्य पुदुचेरी राज्यस्य मुख्यमंत्री रूपेण पंचमं बारं शपथ ग्रहणं कृतवान्। लोकनिवासे आयोजिते समारोहे पुदुचेरी नगरस्य उपराज्यपालः के कैलासनाथन वर्यः पदस्य गोपनीयतायाः च शपथ ग्रहणं कारितवान्। दलस्य मल्लादी कृष्णरावः भाजपेति दलस्य एन नमशिवायं च अस्मिन् समारोहे मंत्री रूपेण शपथं स्वीकृतवन्तः। भारत ऋतु विभागेन अद्य राजस्थान राज्ये उष्णतरंगस्य कृते रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतनायाः सूचना प्रसारिता। गुजरात राज्ये महाराष्ट्रे पश्चिम मध्य प्रदेशे च श्वः यावत् उष्णतरंगस्य स्थितिः भवितुम् अर्हति। अपि च अद्य हिमाचल प्रदेशे उत्तराखण्डे च ओलावृष्ट्या सह वर्षायाः संभावना विद्यते। अद्य दिल्ली चंडीगढ़ हरियाणा जम्मू कश्मीर उत्तर प्रदेश झारखंड पंजाब इत्येतेषु प्रदेशेषु विद्युत सहित वृष्टिः तीव्र वायुवेगः च भविष्यति इति भारत ऋतु विभागेन पूर्वानुमानितम्। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा द्वादशी कक्षायाः परीक्षा परिणामाः प्रसारिताः। छात्राः आधिकारिक वेबसाइट डिजिलॉकर इत्यत्र उमंग ऐप इत्यत्र च स्वानुक्रमान् प्रविश्य परिणामं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अस्मिन् वर्षे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा द्वादशी कक्षायाः फरवरी मासस्य 17 दिनांकतः अप्रैल मासस्य 10 दिनांकपर्यन्तं लक्ष्योपलक्ष्य छात्राणां कृते परीक्षा आयोजिता। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनः एकवारम्। पश्चिम एशिया संघर्षेण उद्भूतस्य वैश्विक ऊर्जा संकट कालस्य मध्ये प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः आवाहनस्य अनन्तरं केन्द्र राज्ययोः ईंधन संरक्षणस्य उपायाः तीव्राः जाताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन 14 खरीफेति ग्रैष्मिक सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यं स्वीकृतम्। तमिलनाडु राज्ये सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे TVK सर्वकारेण सहज बहुमतेन शक्षिपरीक्षणं विजितम् इति वार्ताः।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम घर गृहस्थी।

बनो मोती की तरह चमकते दांत न केवल हमें खूबसूरत बनाते हैं बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी हैं। मुंह हमारे शरीर का प्रवेश द्वार है, अगर ये गंदा और अस्वस्थ होगा तो इसका सीधा असर हमारे हृदय रोग, मधुमेह और अन्य बीमारियों से जुड़ा है। बनो यदि मसूड़ों में संक्रमण होता है तो इसमें मौजूद बैक्टीरिया रक्त प्रवाह में प्रवेश कर धमनियों में रुकावट पैदा कर सकता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ सकता है। मसूड़ों की बीमारी रक्त शर्करा को नियंत्रित करना कठिन बना देता है, जिससे मधुमेह अगर हो तो समस्या और बढ़ जाती है। मुंह के हानिकारक बैक्टीरिया सांस के साथ फेफड़ों तक पहुंचकर निमोनिया जैसी सांस की बीमारियां पैदा कर सकती हैं। इसलिए बहनों, हर रोज सुबह और रात को खाने के बाद दांतों को साफ जरूर करें। दिन में एक बार फ्लास्क का उपयोग करके उन जगहों से भोजन के कण और प्लाक हटाए जहाँ ब्रश नहीं पहुँच पाते हैं। बनो फ्लास्क यानी एक पतला धागा जो दांतों के बीच पहुंचकर वहां की गंदगी को हटाता है। बनो खाने पीने से जीभ पर भी बैक्टीरिया जमा होते हैं, इसलिए जीभ खुरचनी का उपयोग करें। अगर मुंह से बदबू आ रही है तो माउथवॉश का भी जरूर उपयोग करें। बनो इन सब छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर आप अपने मुंह को स्वच्छ रख सकती हैं और आप सेहतमंद रह सकती हैं।

मानो गर्मी का मौसम यानी पानी की कमी का मौसम। भूमि हो या शरीर, हर जगह पानी की कमी दिखाई देती है और इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इस मौसम में क्योंकि ज़्यादा पसीना निकलता है, इसकी वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ऐसे में ये बेहद ज़रूरी है कि खूब पानी पिया जाए। प्यास ना लगने पर भी नियमित अंतराल पर पानी जरूर पिए। बहनों, इस समय नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, लस्सी और ORS का भी समय समय पर उपयोग करते रहें। नशापान तो बिल्कुल ही ना करें। चाय, कॉफ़ी और मीठे पेय पदार्थ का कम से कम सेवन करें, क्योंकि ये शरीर में पानी की कमी बढ़ाते हैं। ग्रामीण बहनों, दोपहर के समय यानी 11 बजे से 4 बजे के बीच सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है। इस समय घर से बाहर निकलने से बचें। यदि बाहर निकलना जरूरी हो तो बाहर निकलते समय हल्के रंग के ढीले ढाले और सूती कपड़े पहने, सिर को ढककर रखें और धूप में छाते का प्रयोग जरूर करें। आँखों की सुरक्षा के लिए धूप के चश्मे का इस्तेमाल करें। ज़्यादा तेल मसालेदार और भारी भोजन ना पकाए ना ही खाए। रसोई में सादा सूप पाचे और ताज़ा भोजन पकाए और सभी को परोसे। इस मौसम में ऐसे फलों को का सेवन करें जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो, जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा। सब्जी में नेनुआ, कद्दू आदि ऐसे सब्जियों को शामिल करें जिसमें तेल मसाला कम से कम डाला जाता हो। दिन में 2 बार ठंडे पानी से नहाएं, पर इस बात का भी ध्यान रखें कि धूप से आने के बाद या बच्चों के खेलने के बाद जब वे पसीने से तरबतर हों तो तुरंत ना नहाएं, क्योंकि इससे सर्द गर्म का असर होकर जुकाम भी हो सकता है। अगर गर्मी ज़्यादा लग रही हो तो गीले कपड़े से चेहरे, गर्दन और सर को पोंछें। बहनों, इतनी सावधानी बरतने के बाद भी यदि सिर दर्द, चक्कर, कमजोरी या उल्टी जैसे लक्षण दिखाई दें तो समझ लें कि लू लग गई है। ऐसे में तुरंत ठंडी जगह पर जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा पेय पदार्थ पिए, जैसे छाछ, आम पन्ना, और डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

ग्रामीण बहनों में सर्वाइकल कैंसर या गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर महिलाओं में होने वाला चौथा सबसे आम कैंसर है, पर थोड़े जागरूक रहकर इस कैंसर से बचा जा सकता है। बहनों, यह कैंसर मुख्य रूप से HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के संक्रमण के कारण होता है, जो यौन संपर्क से फैलता है। इससे बचने के लिए 9 से 14 साल की लड़कियों को HPV वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए। वैसे 26 साल तक की महिलाएं भी इसे लगवा सकती है। बहनों, 21 से 25 वर्ष की आयु से नियमित रूप से पैप स्पीयर या HPV टेस्ट करवाकर हम कैंसर के शुरुआती चरण में ही इसे पकड़ सकते हैं। बहनों, सर्वाइकल कैंसर के कुछ सामान्य लक्षण हैं: यौन संबंध के बाद रक्त स्राव होना, असामान्य योनि स्राव या पेल्विक पेन का होना, धूम्रपान, कई यौन साथी होने और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली होने से इस रोग का खतरा बढ़ जाता है। इस रोग के कोई भी लक्षण आप में या घर के किसी महिला सदस्य में दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि तुरंत इलाज होने पर यह ठीक हो सकता है, पर देर से इलाज होने पर यह जानलेवा हो जाता है।

ग्रामीण बहनों, घर के काम काज के साथ आप खेती बाड़ी भी करती हैं, ऐसे में आप कैसे स्वस्थ रहें और इसके लिए क्या करना चाहिए, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। हमारी शारीरिक गतिविधियों को

0: सही तरीके से करने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम बहुत ही जरूरी है। तो हम जानेंगे झरना दास से कि व्यायाम हमारी बहनों को कैसे करना चाहिए कि वे स्वस्थ रहें और अपने काम को सुचारू रूप से अच्छे ढंग से कर पाए। झरना दास जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जोहार।
1: जोहार।
0: झरना जी, हमारी बहनों को बताएं कि व्यायाम कैसे करना चाहिए और ये क्यों जरूरी है।
1: देखिए नीलू जी, व्यायाम करना हर किसी के लिए जरूरी है, वो चाहे पुरुष हो या महिला। जहाँ तक महिला की बात है, तो पहले ज़माने में घर के जो कामकाज होते थे वो सारी महिलाएं करती थी, और उनके पास उतने साधन नहीं थे कि वो घर का काम उनसे कर सकें, तो इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा व्यायाम की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि घर के कामकाज करने में ही वो व्यायाम हो जाता था। लेकिन आज के आधुनिक युग में महिलाओं के पास कई ऐसे साधन हैं जिससे वो अपने कामकाज निपटा सकती हैं। जैसे मसाला पीसना है तो मिक्सी है उनके पास, कपड़ा धोना है तो वॉशिंग मशीन है, तो इससे उनका जो व्यायाम है वो नहीं हो पाता। तो इस वजह से महिलाओं को बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो व्यायाम करें।
0: झरना जी, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया कि महिलाओं को व्यायाम करना चाहिए, लेकिन वो कौन कौन सा व्यायाम कर सकती हैं इसके बारे में भी ज़रा विस्तार से बताएं।
1: देखिए, व्यायाम करने के लिए कोई ऐसा खास नियम नहीं है, वो इसलिए कुछ लोग जो हैं वो नियम के अनुसार करते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो कोई भी व्यायाम आप कर सकती हैं। और दूसरी बात ये है कि हर महिला का शारीरिक बनावट अलग अलग होता है, इसलिए अगर वो चाहें कि हर तरह के व्यायाम वो कर पाएँ तो ऐसा संभव नहीं है। अब जैसे मान लीजिए रस्सी कूदना है, तो अगर महिलाएं शरीर उनका थोड़ा बड़ा हुआ है, भारी है, तो वो रस्सी नहीं कूद सकती हैं। तो ऐसे में उन्हें तेज चलने वाला व्यायाम करना चाहिए, वो तेज से चल सकती हैं कुछ देर तक, कम से कम 30 मिनट तक वो रोज चलें, पैदल चलें, तो इससे भी उनका व्यायाम हो जाएगा। इसके अलावा वो योग कर सकती हैं उसके लिए, लेकिन

0: सही। तो रोज कितनी देर तक बहनों को व्यायाम करना चाहिए?
1: देखिए, व्यायाम के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप सुबह सुबह अगर करें तो बहुत
0: हाँ
1: ही अच्छा होता है, लेकिन अगर बहनें सुबह काम में व्यस्त रहती हैं और सुबह सुबह नहीं कर पाती तो आप उसके बाद भी कर सकती हैं, लेकिन अगर आप खाना खाने के बाद थोड़ा सा अगर टहल लें, 10 मिनट भी टहल लें, तो वो खाना पचने में और आपका शुगर कंट्रोल करने में बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। तो इसलिए खाने के बाद थोड़ा सा टहले जरूर। और जहाँ तक व्यायाम की बात है तो वो शाम को जब खाने के 3-4 घंटा के बाद पेट खाली रहता है तो उस समय भी वो व्यायाम कर सकती हैं, या फिर सुबह सुबह करें।
0: अच्छा, व्यायाम करने से क्या क्या फायदे होते हैं?
1: देखिए, व्यायाम करने से आपका जो शरीर है वो बहुत चुस्त दुरुस्त रहेगा, क्योंकि व्यायाम से क्या होता है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होता है, और अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो आपके शरीर के जो सारे अंग हैं वो सुचारू रूप से काम करेंगे। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हर व्यक्ति व्यायाम करे, यानी कि अपने शरीर को क्रियाशील रखे। अगर वो क्रियाशील रहेगा तो शरीर सुचारू रूप से काम करेगा और वो स्वस्थ महसूस करेंगी। मोटापा, मधुमेह, दिल की बीमारी और कमजोरी जैसी जो समस्याएं होती हैं ये बहुत कम हो जाएंगी।
0: क्या मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी यह करना जरूरी है?
1: बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य जो है वो आपके शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ होता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करें, ताकि आप तनाव से दूर हों और आपका मन खुश रहे।
0: हमारी बहनें घर के कामकाज में बहुत व्यस्त रहती हैं। ऐसे में व्यायाम करने का वो समय कैसे निकाले और वो किस तरह व्यायाम करे, इस बारे में आप हमारी बहनों को कुछ बताएं।
1: देखिए, ऐसा नहीं है कि महिलाओं के पास समय की कमी होती है। अगर आप अनुशासित तरीके से काम करें तो आपके पास समय आराम से निकल आएगा। जैसे अब सुबह की ही बात लें, अगर आप सुबह करना चाहती हैं तो आप सुबह में नित्य क्रिया से निपट के आप व्यायाम कर सकती हैं, उसके बाद आप रसोई का काम शुरू करें। और इसके अलावा अगर दिन भर आप व्यस्त हैं तो शाम का समय आपके पास थोड़ा सा ज़रूर खाली मिलता है जब आप व्यायाम कर सकती हैं, तो उस समय घर में छोटे मोटे कसरत कर सकती हैं आप, और पैदल चलना कर सकती हैं, यानी जिसको हम टहलना कहते हैं, वो बहनें, 2-4 बहनें मिलकर टहलेंगी तो गप्पे भी मार सकती हैं और टहलना भी उनका हो जाएगा। तो इस तरह व्यायाम के लिए समय उनके पास निकल आएगा।
0: मतलब हमारी बहनों को थोड़ा अपने लिए वक्त तो निकालना ही होगा। दिन भर घर के कामकाज में तो व्यस्त रहती हैं, लेकिन उनका कुछ अपना समय भी होना चाहिए। क्यों, ठीक
1: जी,
0: कहा ना
1: बिल्कुल
0: मैंने?
1: बिल्कुल बिल्कुल। और जब शाम को वो जब साथ में निकलेंगी अपनी सहेलियों के साथ, तो वो जो बातें करेंगी उससे उनका मन भी हल्का होगा, और साथ ही साथ जो वो पैदल चलेंगी तो उससे उनके शरीर का व्यायाम भी हो जाएगा और वो शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा और अपने आप में वो एक स्फूर्ति महसूस करेंगी।
0: झरना जी, आपने हमारी बहनों को बहुत सारी बात बताई और हमारी बहनों ने बहुत ध्यान से सुना भी। अंत में आप हमारी बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए नीलू जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि व्यायाम सभी महिलाएं करें और इस पर ज़रूर ध्यान दें। अपने लिए अगर समय नहीं है तो कम से कम शाम के वक्त समय ज़रूर निकालें, जिससे अपने तन को तो वो स्वस्थ करें ही, अपना मन भी खुश रख सकेंगी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो बिना सोचे समझे व्यायाम ना करें, वो डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें, किसी चिकित्सक से मिलकर वो जरूर सलाह लें कि वो कितना व्यायाम कर सकती हैं और कौन कौन सा व्यायाम कर सकती हैं।
0: झरना जी, आपने हमारी बहनों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: प्रिय जिलावासियों, जोहार। मैं नीतीश कुमार सिंह, उपायुक्त सरायकेला खरसावां, समस्त जिलेवासियों से अनुरोध करता हूँ कि वर्तमान में चल रही भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत अब आप स्वगणना सेल्फ इनुमरेशन के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही भविष्य में स्कूल, अस्पताल, सड़क।

और सरकारी योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा। आप अपने मोबाइल से sc.census.gov.in पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं भरें। यह पोर्टल झारखंड में 15 मई 2026 तक स्वगणना हेतु खुली रहेगी। आपकी गोपनीयता हमारी प्राथमिकता है। हमारे जिले के सुनहरे भविष्य और सटीक योजना निर्माण के लिए हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब आपकी बारी। धन्यवाद।

ग्रामीण बहनों, आप घर बाहर अनेकों जिम्मेदारियां निभाती हैं। ऐसे में कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें करके आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती हैं। आप चाहें तो स्वयं सहायता समूहों और सरकारी योजनाओं की मदद से घर से ही छोटे स्तर पर अपना व्यवसाय शुरू कर सकती है। आप अपने घर के लिए अचार, पापड़ और मसाला तो तैयार करती ही हैं, इन्हें आप व्यवसायिक स्तर पर भी करके अपनी आय बढ़ा सकती है। मक्का, बाजरा और अन्य अनाजों की पिसाई, ग्रेडिंग करके इन्हें अच्छी तरह से पैक करके आप बाजार में बेच सकती है। बहनों, जैम, जेली, जूस आदि बनाकर भी आप बेच सकती हैं। दूध से दही, पनीर, घी, खोया, लड्डू, मठरी और भुने हुए खाद्य पदार्थ तो आप बनाती ही हैं। बस जरूरत है इन्हें व्यवसायिक स्तर पर करने की। इसलिए आप सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाएं जैसे महिला आजीविका मिशन, इसके तहत आप ग्रामीण महिलाएं खाद प्रसंस्करण का प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बन सकती हैं। यदि आप स्वयं सहायता समूह या SHG से की सदस्य बनती हैं तो 40,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी की सहायता आपको मिल जाएगी। आप कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण लेकर तकनीकी और प्रबंधन कौशल सीख सकती हैं। बहनों, आपके छोटे प्रयास से न केवल आप आत्मनिर्भर बनती हैं बल्कि आप दूसरी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना सकती हैं।

ग्रामीण बहनों, मौसम को ध्यान में रखते हुए इस समय अगर आप अनाज का भंडारण कर रही हैं तो भंडार घर को अच्छे से साफ कर लें। छत या दीवारों पर यदि दरारें हैं तो इन्हें भरकर ठीक कर लें। बोरियों को 5% नीम के तेल के घोल से उपचारित करें और इन्हें धूप में सुखा लें, जिससे कीटों के अंडे और लार्वा और अन्य बीमारियाँ नष्ट हो जाए। इस समय आप ग्रीष्मकालीन बोई जाने वाली हरी खाद जैसे सनई ढांचा की भी बुआई कर सकती है। सने की बुआई दर 60 से 70 और ढैंचा की 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। ये थी मौसम आधारित कृषि सलाह। ग्रामीण बहनों, आज हम सभी परेशान हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता और बेवजह जिद करता है। पर अगर हम अपने व्यवहार में थोड़ा बदलाव लाएं तो इस समस्या का समाधान है। हमारे पास बच्चों को थोड़ा समय देने की ज़रूरत है। उसकी बात करें, उसकी मदद करें और उसके द्वारा दिए गए सुझाव को भी सुने। अगर वो कुछ भी काम करता है, जैसे किसी को एक गिलास पानी दे दिया, अपने कपड़े को सही जगह पर रख दिया या खाने की प्लेट को ही धोने की जगह पर रख दिया, तो इन छोटी छोटी बातों की तारीफ करें। इससे आपके बच्चे आपके करीब आएंगे। इससे बच्चे न केवल मानसिक रूप से विकसित होंगे बल्कि उनके जीवन में अनुशासन भी आएगा। बहनों, बच्चे जब गलतियाँ या बदतमीजी करते हैं तो उन्हें सजा ना दें, ना ही उन्हें नज़रअंदाज करें, बल्कि उन्हें उनकी गलतियां बताएं और इसे दोबारा ना करने की सलाह दें। इस बात का भी ध्यान रखें कि आप भी कहीं वो गलती तो नहीं कर रही हैं, इसलिए ज़रूरी है कि पहले अपने को अनुशासित करें। इसके साथ ही बहनों, हमारा आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। नीलू को दीजिए।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम घर गृहस्थी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। शाम के 6:55 हुए हैं। अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: श्रोताओं, कुछ ही देर बाद हम सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: मंत्रिमंडल ने 14 खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए 37,500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना भी मंजूर। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल प्रबंधन योजना के तहत 5 मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के लिए मंजूर किए 25 करोड़ रुपए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लोक भवन के कारकेड के वाहनों की संख्या घटाकर 4 कर दी है। खूंटी पुलिस ने पीएलएफआई के हार्डकोर उग्रवादी राजेश महतो को किया गिरफ्तार, हथियार और पर्चा बरामद। और रांची में कल होगा झारखंड टी20 लीग 2026 ट्रॉफी लॉन्च समारोह, ईशान किशन होंगे शामिल। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी बीज के एमएसपी में सबसे अधिक 622 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इसके बाद कपास में 557 रुपए और तिल में 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। नई दरों के अनुसार ग्रेड ए धान का एमएसपी 2,461 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। सरकार ने खरीफ सीजन में किसानों को लगभग 2,60,000 करोड़ रुपए के भुगतान का अनुमान जताया है। वहीं मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए 37,500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत लगभग 7,50,00,000 टन कोयला और लिग्नाइट के गैसीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल प्रबंधन तथा अनुरक्षण योजना के तहत 5 मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के लिए 25 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद, फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका और मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज पलामू को 5-5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस राशि का उपयोग अस्पतालों में मरम्मत, पेयजल, बिजली, साफ सफाई, दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था बेहतर करने में किया जाएगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ईंधन संरक्षण और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दिया है। राज्यपाल ने लोक भवन में कारकेड के वाहनों की संख्या घटाकर केवल 4 गाड़ियां रखने का निर्णय लिया है। झारखंड के पूर्व मंत्री माधवलाल सिंह का आज रांची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए विधानसभा लाया गया। मंत्री दीपिका पांडे ने कहा कि श्री सिंह का योगदान राजनीति के क्षेत्र में हमेशा यादगार रहेगा।
1: वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, दिल इंसान जिंदा दिल इंसान रहे। उनके क्षेत्र के लोग वो एक अच्छे इंसान के रूप में याद करते रहेंगे और पूरे इलाके के लोग बहुत दुखी हैं। कांग्रेस के सभी वरीय नेता उनके अंतिम यात्रा में भी सम्मिलित होंगे। इस वक्त उनके परिजन को इस दुख की घड़ी में सांत्वना देना चाहती हूँ।
0: हमारे बोकारो संवाददाता ने बताया है कि गोमिया में पूर्व मंत्री माधवलाल सिंह के निधन पर शोक की लहर है। गुमला जिला भाजपा ने आज समाहरणालय के समक्ष बिजली और पेयजल संकट को लेकर आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था, बिजली और पेयजल व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है।
2: सुविधाओं को लेकर गुमला में धरना प्रदर्शन हुआ क्योंकि राज्य में पानी, बिजली, विधि व्यवस्था सारी चीजें चौपट है। आम नागरिक त्राहिमाम कर रहे हैं। जिन योजनाओं के लिए पैसा खर्च की जा चुकी है लेकिन उसका पानी नहीं मिल रहा है। पेयजल पर भारी घोटाला हुआ है। इन सारे चीजों की जांच भी होनी चाहिए और अभी जिला प्रशासन को राज्य से मिल करके आम आदमी तक राहत पहुँचाना चाहिए।
0: रांची नगर निगम में नक्शा पास करने की प्रक्रिया को लेकर दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल किया कि राज्य में असिस्टेंट टाउन प्लानर कार्यरत होने के बावजूद रांची नगर निगम में उनसे नक्शा पास कराने का काम क्यों नहीं लिया जा रहा है। अदालत ने नगर आयुक्त को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews

0: को रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड की पारंपरिक कला, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में आज कोलकाता के थिएटर रोड में झारक्राफ्ट के नए एम्पोरियम का उद्घाटन किया गया। उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर उद्योग सचिव अरवा राजकमल भी उपस्थित रहे। खूंटी पुलिस ने PLFI के हार्डकोर उग्रवादी राजेश महतो उर्फ राजेश यादव को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक देसी पिस्टल, दो गोलियां और तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि आरोपी लेवी वसूली, फायरिंग और आगजनी समेत कई मामलों में वांछित था और पिछले एक दशक से प्रतिबंधित संगठन PLFI के लिए सक्रिय था।
1: हम लोगों ने चेकिंग लगाई थी और पुलिस के द्वारा राजेश यादव पकड़ा गया। इसने अपना अपराध स्वीकारा कि जहां जहां इसने इन्वॉल्वमेंट रहा है पास्ट में, फिर इसकी निशानदेही पे हम लोगों को कर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक स्थान से एक 9mm का पिस्टल देसी मेड बरामद हुआ और इसके पास से हम लोग को रिकवरी हुई है एक उसका मोबाइल, जिस मोबाइल के माध्यम से यह अपने टारगेट को भी कॉल करते थे और संगठन में भी जो है ये लोग आपस में उससे बात करते थे। बड़ा अचीवमेंट है खूंटी पुलिस के लिए।
0: इधर गिरिडीह में साइबर पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरिडीह SP डॉ. विमल कुमार ने बताया कि इनकी गिरफ्तारी बेंगाबाद थाना क्षेत्र से हुई है। इनके पास से करीब एक दर्जन मोबाइल और सिम बरामद किया गया है। ये अपराधी फर्जी लिंक भेजकर लोगों को ठगते थे।
2: सूचना प्राप्त हुई है कि बसनबारी और कोलरिया जंगल में कुछ साइबर अपराधी एक्टिवेट हैं और इनके द्वारा ठगी की जा रही है। DSP साइबर के नेतृत्व में टीम बनाया गया था और 6 साइबर अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 11 मोबाइल, 13 सिम कार्ड और 5 बाइक ये भी बरामद किया गया है। ये लोग कई तरह का गैस से रिलेटेड या ई चालान से रिलेटेड भेजते थे और ठगी करते थे।
0: साहिबगंज जिले में हर घर सुरक्षा अभियान के दूसरे चरण के तहत सभी प्रखंडों में ग्राम संगठनों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान के दौरान ग्रामीण परिवारों और सखी मंडलों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की जानकारी दी गई। साथ ही बीमा नवीनीकरण, क्लेम प्रक्रिया और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ कल रांची में झारखंड T20 लीग 2026 के आधिकारिक ट्रॉफी लॉन्च समारोह का आयोजन करेगा। इस कार्यक्रम में झारखंड क्रिकेट के भविष्य और राज्य में विश्व स्तरीय क्रिकेट मंच विकसित करने की रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी। समारोह में भारतीय क्रिकेटर और झारखंड के खिलाड़ी ईशान किशन विशेष रूप से शामिल होंगे। पेंटाथलॉन। सरायकेला खरसावां जिले के 3 खिलाड़ी 17 मई को धनबाद में होने वाली राज्य स्तरीय मॉडर्न पेंटाथलॉन चयन प्रतियोगिता में भाग लेंगे। जिला संघ के सचिव सिकंदर महतो ने बताया कि शोभा महतो, रसिक चंद्र हसा और मिलन सोए जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। चयनित खिलाड़ियों को गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 खरीफ फसलों के MSP में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए 37,500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना भी मंजूर। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल प्रबंधन योजना के तहत 5 मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के लिए मंजूर किए 25 करोड़ रुपए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लोक भवन के कारकेड के वाहनों की संख्या घटाकर 4 कर दी है। खूंटी पुलिस ने PLFI के हार्डकोर उग्रवादी राजेश महतो को किया गिरफ्तार, हथियार और पर्चा बरामद। और रांची में कल होगा झारखंड T20 लीग 2026 ट्रॉफी लॉन्च समारोह, ईशान किशन होंगे शामिल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं जिले में आज
4: जिले में आजकल

0: इस अंक में आप सुनेंगे गुमला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गुमला संवाददाता।
1: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में शामिल आयुष्मान भारत गुमला जिला के गरीब मरीजों के लिए न सिर्फ जीवनदायिनी साबित हो रहा है बल्कि इस योजना के कारण गरीब व लाचार मरीजों के जमीन व जायदाद भी सुरक्षित हैं। इस योजना को लेकर गुमला सदर अस्पताल में इलाज करा रहे मरीज के परिजनों ने बताया कि
2: मेरा नाम दिलमोहन सिंह है, आयुष्मान कार्ड के जरिए मेरा इलाज हो रहा है और दवा चल रहा है, नहीं तो हमको जमीन बेचना पड़ता या कोई चीज को माल मौसी को बेचना पड़ता, इसलिए मेरा फ्री में सब दवाइयां और ऑपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। मोदी जी को धन्यवाद।
3: मेरा नाम प्रद्युम्न सिंह है, मेरा लड़का का सुखदेव सिंह नाम है और गुमला अस्पताल में अच्छा से इलाज हो रहा है और मोदी जी का आयुष्मान दिया हुआ मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो कि मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे खेत बेचना पड़ता, हर बैल बेचना पड़ता, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ।
4: मेरा नाम नारायण साहू है, मेरा भैया का इलाज करा रहे हैं भारत आयुष्मान कार्ड से, बढ़िया इलाज हो रहा है, हम लोग का खर्चा कम पड़ रहा है, हम लोग गरीब इंसान है तो हम लोग के पास पैसा नहीं था, इसलिए भारत आयुष्मान कार्ड से करा रहे हैं।
5: मेरा नाम सुविता है, मेरा बच्चा है, वजन के चलते आयुष्मान के द्वारा मेरा चल रहा है और आयुष्मान नहीं रहते तो मेरा बच्चा को बहुत दिक्कत होता, मेरा बच्चा आयुष्मान के चलते ही अच्छा है। और कार्ड नहीं रहता तो समस्या था ये कि हम लोग का अस्पताल में ही भर्ती नहीं होता और कार्ड के चलते ही हो रहा है अच्छा से देखभाल, बाहर नहीं जा सकते।
1: गुमला जिला में आयुष्मान भारत के तहत लाभ ले रहे मरीजों एवं जिले के लक्ष्य को लेकर डॉक्टर मोनिका ने बताया कि
6: ये तो ऐसा एक प्रोग्राम है जिसमें टर्शरी जो ट्रीटमेंट होता है, सेकेंडरी या टर्शरी ट्रीटमेंट, उसका हम लोग लाभुकों को बेनिफिट देते हैं। यहाँ जनरली पीएमजे के उस 5 लाख तक का कवरेज मिलता है और ये कैशलेस ट्रीटमेंट होता है। हमारे जिला का टारगेट जो था उसके हिसाब से अभी हम लोग 69% कवरेज कर चुके हैं, दैट इज हम लोगों ने 69% लोगों को आयुष्मान कार्ड प्रोवाइड कर दिया है। हमारे स्टेट में राशन कार्ड धारी होते हैं उन्हीं को आयुष्मान कार्ड बना के देते हैं, अंडर पीएमजे 5 लाख रुपए तक का कैशलेस ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें जो पेशेंट एडमिट होते हैं उनका ना केवल एडमिशन के समय जो होता है और उसके बाद एडमिशन के दौरान टेस्टिंग या फिर दवाई जो लेते हैं वो उनको फ्री में मिलता है। गुमला जिला में तो जैसे एवरेज हम लोग महीने में सदर में ही केवल 500 जैसा लाभुक रहते हैं और बाकी सीएचसी वगैरह में भी ऑन एन एवरेज 100 जैसा लाभुक हर सीएचसी में पर महीने आ जाते हैं, बट गवर्नमेंट सिस्टम में तो जो उनको दवाई वगैरह बाकी सब इलाज उनको फ्री ही रहता है। इसमें हमारे बहुत सारे पेशेंट है जो रांची जाके इसका लाभ उठाते हैं। ये प्रोग्राम भी इसलिए बना था जो लाभुकों को ऐसा ना लगे कि उनके पैसे के अभाव में वो अच्छी इलाज या अच्छा दवाई नहीं ले पा रहे हैं, इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वो लोग जाते हैं तो इसका इम्पैनल्ड हॉस्पिटल से वो फ्री का इलाज और फ्री की दवाइयां ले सकते हैं।
1: बहरहाल केंद्र सरकार की यह महत्वपूर्ण आयुष्मान भारत योजना गुमला जिला के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला।
0: अभी आप सुन रहे थे गुमला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है साप्ताहिक विज्ञान पत्रिका जिज्ञासा।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को संतोषी का नमस्कार। साप्ताहिक विज्ञान पत्रिका जिज्ञासा में एक बार फिर स्वागत है आप सभी श्रोता दोस्तों का।

दोस्तों वॉशिंगटन डीसी स्थित दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित स्मिथसोनियन नेशनल एयर एंड स्पेस में अब भारत की एक ऐसी उपलब्धि को जगह मिली है जो तकनीक नहीं बल्कि जज्बात और संस्कृति से जुड़ी है। आधुनिक रॉकेट्स और स्पेसक्राफ्ट्स के बीच इसरो की दिग्गज वैज्ञानिक नंदिनी

0: हरिनाथ की साड़ी को म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया। आपको बता दें दोस्तों, ये वही साड़ी है जिसे पहनकर उन्होंने भारत की ऐतिहासिक मंगलयान मिशन की कमान संभाली थी। ये प्रदर्शनी वैश्विक मंच पर भारतीय महिला वैज्ञानिकों की शक्ति और रॉकेट वुमन के योगदान का जीवंत प्रमाण बन गई है। नंदिनी हरिनाथ मंगलयान मिशन की डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर थी। उन्होंने 300 दिनों की इस जटिल यात्रा के सफल संचालन में मुख्य भूमिका निभाई और उस ऐतिहासिक दिन उन्होंने ये नीले और लाल रंग की रेशमी साड़ी पहन रखी थी, जिसे स्मिथसोनियन ने अपनी फ्यूचर इन स्पेस गैलरी में रखा है। दोस्तों, इससे ये संदेश जाता है कि अंतरिक्ष में पहुंचने के पीछे इंसानी जुनून के साथ साथ सांस्कृतिक पहचान भी अहम हिस्सा है। इस मिशन ने भारत को मंगल तक पहुंचाने वाला पहला एशियाई देश और दुनिया का चौथा देश बनाया था। वैज्ञानिक नंदिनी हरिनाथ के अंतरिक्ष विज्ञान में उनके असाधारण योगदान के कारण भारत की रॉकेट वुमन के नाम से जाना जाता है। उनकी साड़ी को म्यूजियम में इसलिए रखा गया है क्योंकि वे मंगलयान की सफलता का प्रतीक हैं। उनके अनुसार, इसे पहनने वाली भारतीय महिला वैज्ञानिक की क्षमता को वैश्विक मंच पर सम्मान देने का ये एक तरीका है। मंगलयान को भारत ने अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंचाया। इसे 6 से 10 महीने के लिए डिजाइन किया गया था, पर यह यान पूरे 8 साल तक एक्टिव रहा, जो इसरो की तकनीकी कुशलता का लोहा मनवाने के लिए काफी है। इस बातचीत के बाद दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और चर्चा करते हैं एक ऐसे विषय पर जो आज के डिजिटल युग में हम सब के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज मोबाइल फोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया हमारे जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। बैंकिंग से लेकर पढ़ाई, खरीदारी से लेकर सरकारी सेवाएं, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। लेकिन जहां सुविधा होती है, वहां खतरे भी होते हैं। इंटरनेट की दुनिया में बढ़ते अपराधों ने साइबर सुरक्षा और साइबर जागरूकता को बहुत जरूरी बना दिया है। साइबर जागरूकता की क्या आवश्यकता है, इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं धनंजय कुमार। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: डिजिटल युग में जब लगभग हर कार्य इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है, तब हैकिंग एक गंभीर समस्या बन गई है। यह व्यक्तिगत, व्यावसायिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है। हैकर्स के प्रकार। ब्लैक हैट हैकर्स अवैध रूप से डेटा चोरी या नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। व्हाइट हैट हैकर्स सुरक्षा विशेषज्ञ जो सिस्टम की कमजोरियां ढूंढकर उन्हें ठीक करने में मदद करते हैं। ग्रे हैट हैकर्स बिना अनुमति सिस्टम में प्रवेश करते हैं, लेकिन हमेशा नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य नहीं होता। फिशिंग एक प्रकार का साइबर अपराध है, जिसमें अपराधी लोगों को धोखा देकर अपनी गोपनीय जानकारी जैसे पासवर्ड, बैंक विवरण, OTP, आधार संख्या आदि प्राप्त कर लेते हैं। यह आज के डिजिटल युग में सबसे समान एवं खतरनाक ऑनलाइन धोखाधड़ी में से एक है। फिशिंग में ठग नकली ईमेल संदेश, कॉल या वेबसाइट के माध्यम से स्वयं को किसी विश्वसनीय संस्था जैसे बैंक, सरकारी विभाग या कंपनी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जब व्यक्ति उन पर भरोसा कर अपनी जानकारी साझा कर देता है, तो अपराधी उसका दुरुपयोग करते हैं। फिशिंग के प्रकार। ईमेल फिशिंग, नकली ईमेल भेजकर लिंक पर क्लिक करवाना। स्मिशिंग, SMS के माध्यम से धोखा देना। विशिंग, फोन कॉल द्वारा जानकारी लेना। स्पियर फिशिंग, किसी विशेष व्यक्ति या संस्था को निशाना बनाना। वेलिंग, बड़े अधिकारियों या महत्वपूर्ण व्यक्तियों को लक्ष्य बनाना। फिशिंग के दुरुपयोग बैंक खाते से धन की चोरी, पहचान की चोरी, व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग, संस्थाओं की प्रतिष्ठा को नुकसान। मेलवेयर, वायरस या हानिकारक सॉफ्टवेयर से हमला। मेलवेयर हानिकारक सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को नुकसान पहुँचाता है। मेलवेयर क्या है? मेलवेयर एक प्रोग्राम या कोड होता है जो बिना उपयोगकर्ता की अनुमति के डिवाइस में प्रवेश कर जाता है। यह अक्सर संदिग्ध लिंक, ईमेल, अटैचमेंट, फर्जी वेबसाइट या संक्रमित सॉफ्टवेयर के माध्यम से फैलता है। मेलवेयर के प्रकार। वायरस फाइलों में जुड़कर सिस्टम को संक्रमित करता है। वॉर्म नेटवर्क के माध्यम से तेजी से फैलता है। ट्रोजन उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में छिपकर नुकसान पहुंचाता है। मेलवेयर से बचाव के उपाय। विश्वसनीय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। सॉफ्टवेयर और सिस्टम को नियमित रूप से अपडेट रखें, अज्ञात लिंक और ईमेल अटैचमेंट से बचें, केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही ऐप या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, नियमित रूप से डेटा बैकअप रखें। मैलवेयर एक गंभीर साइबर खतरा है जो व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों स्तर पर नुकसान पहुंचा सकता है। जागरूकता, सावधानी और उचित सुरक्षा उपाय अपनाकर हम अपने डिजिटल उपकरणों और डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। रैंसमवेयर, डेटा लॉक करके पैसे की मांग करना, पासवर्ड क्रैकिंग, पासवर्ड तोड़कर खाते में प्रवेश करना, डेटा ब्रीच, गोपनीय जानकारी का लीक होना। सोशल इंजीनियरिंग एक प्रकार की साइबर ठगी है जिसमें अपराधी तकनीकी हैकिंग के बजाय लोगों की भावनाओं, भरोसे और मनोविज्ञान का फायदा उठाकर गोपनीय जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें व्यक्ति को धोखे से पासवर्ड, बैंक विवरण, OTP या अन्य संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए उकसाया जाता है। यह ऐसी तकनीक है जिसमें ठग स्वयं को किसी विश्वसनीय व्यक्ति या संस्था के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जैसे बैंक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, कंपनी प्रतिनिधि या जान पहचान वाला व्यक्ति। वे डर, लालच, सहानुभूति या तात्कालिकता का माहौल बनाकर व्यक्ति से जानकारी हासिल करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग के समान तरीके इस प्रकार हैं। प्रीटेक्सिंग, नकली पहचान बनाकर जानकारी मांगना। वेटिंग, लालच देकर जैसे फ्री गिफ्ट, लॉटरी फंसाना। फिशिंग, नकली ईमेल या लिंक के माध्यम से जानकारी चुराना। विशिंग, फोन कॉल द्वारा धोखा देना। टेलगेटिंग, किसी सुरक्षित स्थान में बिना अनुमति प्रवेश करना। इसके दुष्परिणाम, बैंक खाते से धन की चोरी, पहचान की चोरी, निजी डेटा का दुरुपयोग, संस्थानों की गोपनीय जानकारी का लीक होना। सोशल इंजीनियरिंग साइबर ठगी तकनीकी कमजोरी से अधिक मानवीय कमजोरी का फायदा उठाती है, इसलिए जागरूकता, सतर्कता और सही जानकारी ही इससे बचने का सबसे प्रभावी उपाय है। डिजिटल युग में सुरक्षित रहने के लिए समझदारी और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। अब अंत में साइबर सुरक्षा के उपाय और भारत में साइबर सुरक्षा प्रावधान पर बात करते हैं। डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा के लिए विभिन्न कानूनों, नीतियों और संस्थाओं की स्थापना की है। इन प्रावधानों का उद्देश्य नागरिकों को डेटा, ऑनलाइन लेनदेन और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 लागू किया गया। यह कानून इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता देता है। हैकिंग, डेटा चोरी, पहचान की चोरी, साइबर आतंकवाद आदि अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करता है। 2008 में इसमें संशोधन कर साइबर अपराधों के लिए सख्त प्रावधान जोड़े गए। CERT इन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया देश की प्रमुख साइबर सुरक्षा एजेंसी है। यह साइबर हमलों की निगरानी करती है, सुरक्षा संबंधी अलर्ट और दिशा निर्देश जारी करनी है, सरकारी और निजी संस्थानों को तकनीकी सहायता प्रदान करती है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 का उद्देश्य सुरक्षित साइबर स्पेस बनाना है और साइबर अवसंरचना की रक्षा करना है। साइबर सुरक्षा में कौशल विकास पर जोर, संवेदनशील सूचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा संचालित यह पोर्टल नागरिकों को ऑनलाइन साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करने की सुविधा देता है, विशेष रूप से ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी और महिलाओं, बच्चों से संबंधित अपराधों की रिपोर्टिंग। भारतीय न्याय संहिता, साइबर अपराधों के कुछ मामलों में BNS की धाराएं भी लागू होती हैं, जैसे धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक विश्वासघात। भारत में साइबर सुरक्षा के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा मौजूद है, परंतु केवल कानून पर्याप्त नहीं है, नागरिकों की जागरूकता, सावधानी और जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार भी उतना ही आवश्यक है। सरकार और समाज के संयुक्त प्रयासों से ही सुरक्षित डिजिटल भारत का निर्माण संभव है। भारत में साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन भी बना हुआ है। डिजिटल धोखाधड़ी, ऑनलाइन ठगी या किसी भी साइबर अपराध की स्थिति में तुरंत शिकायत करना बहुत आवश्यक है। भारत सरकार ने इसके लिए विशेष हेल्पलाइन और पोर्टल उपलब्ध कराए हैं। यह हेल्पलाइन विशेष रूप से ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, UPI, ATM, नेट बैंकिंग आदि के मामलों के लिए है। जैसे ही आपको पता चले कि आपके खाते से गलत लेन देन हुआ है, तुरंत 1930 पर कॉल करें। जल्दी सूचना देने पर ट्रांजैक्शन को रोका या ट्रेस किया जा सकता है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, यह पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा संचालित है, जिसका वेबसाइट है cybercrime.gov.in। यहाँ कोई भी अपना शिकायत दर्ज करा सकता है। महिलाओं और बच्चों से संबंधित साइबर अपराधों के लिए अलग विकल्प उपलब्ध हैं। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान के साथ साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइबर सुरक्षा नीतियां बनाकर डिजिटल प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाने का प्रयास कर रहा है। स्कूलों और कॉलेजों में भी साइबर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अतः हमें साइबर सुरक्षा के प्रति अतीव सचेत रहना है।
0: साइबर सुरक्षा क्या है और इसकी जागरूकता की आवश्यकता क्यों है, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे धनंजय कुमार। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना संतोषी झा के साथ। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

एक आवश्यक सूचना। नीतीश कुमार सिंह, उपायुक्त सरायकेला खरसावां, समस्त जिलेवासियों से अनुरोध करते हैं कि वर्तमान में चल रही भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत अब आप स्वगणना के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही भविष्य में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़कें और सरकारी योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा। आप अपने मोबाइल से sec.census.gov.in पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं भरें। ये पोर्टल झारखंड में 15 मई 2026 तक स्वगणना हेतु खुली रहेगी। आपकी गोपनीयता ही हमारी प्राथमिकता है। जिले के सुनहरे भविष्य और सटीक योजना निर्माण के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने की अब आपकी बारी है। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। रात्रि के 8 बजे हैं। फिल्म संगीत थोड़ी ही देर में।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरी यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: नमस्कार जमशेदपुर, नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
2: ज्ञान विज्ञान
3: इतिहास के पन्नों से,
2: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
1: मौसम का मिजाज,
2: अपने शहर की खबरें,
3: बातों मुलाकातों के साथ
1: सुरीला मनोरंजन
2: और भी बहुत कुछ।
1: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 तक
2: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
4: नमस्कार जमशेदपुर।
0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
5: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे तो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
5: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
6: प्रिय जिलावासियों जोहार, मैं नीतीश कुमार सिंह उपायुक्त सरायकेला खरसावां समस्त जिलेवासियों से अनुरोध करता हूँ कि वर्तमान में चल रही भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत अब आप स्वगणना सेल्फ इनुमरेशन के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही भविष्य में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और सरकारी योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा। आप अपने मोबाइल से sc.census.gov.in पोर्टल पर अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं भरें। यह पोर्टल झारखंड में 15 मई 2026 तक स्वगणना हेतु खुली रहेगी। आपकी गोपनीयता हमारी प्राथमिकता है। हमारे जिले के सुनहरे भविष्य और सटीक योजना निर्माण के लिए हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब आपकी बारी। धन्यवाद।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से प्रस्तुत है फिल्म संगीत। तमाशा फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह और अलका याग्निक की आवाजों में। बोल हैं इरशाद कामिल के, धुन बनाई है AR रहमान ने।

जी करिया, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे जिसके लिए आवाज़ें दी थीं विक्रांत भारती और ऐश्वर्या मजूमदार ने, बोल थे फराज अहमद के, धुन बनाई थी राज प्रकाश ने। सुई धागा इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसके लिए आवाज़ें दी हैं पापॉन और रोंकिनी गुप्ता ने, गीतकार हैं वरुण ग्रोवर, संगीतकार अनु मलिक।

शब्द रचना थी अमिताभ भट्टाचार्य की, संगीत निर्देशन प्रीतम का। अमित मिश्रा और शिल्पा राव की आवाजों में आपने सुना फिल्म ऐ दिल है मुश्किल का ये गीत। जब हैरी मेट सेजल, इस फिल्म का गीत लीजिए सुनिए। आवाजें अरिजीत सिंह और प्रीतम की है, बोल हैं इरशाद कामिल के, धुन बनाई है प्रीतम ने।

दिलवाले फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज़ें अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की थी। गीत लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने, धुन बनाई थी प्रीतम ने। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए आतिफ असलम को फिल्म टाइगर जिंदा है में, बोल इरशाद कामिल के हैं, संगीत विशाल शेखर का।

आतिफ असलम के गाए इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब समाचार प्रसारित होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए

0: लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी, इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जाँच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों, विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय

0: में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit,
2: यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
1: People to people connect.
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि चार यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
1: The visit to the four European countries.
2: चार यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
1: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से तीन भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
4: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
1: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना,

0: इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95.70 रुपए पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet increases minimum support prices MSP of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests 5 persons in connection with NEET UG 2026 paper leak case. Raids continue in several states. Prime Minister Narendra Modi reduces his convoy size, prompting BJP chief ministers and other leaders to adopt austerity measures. West Bengal government decides to hand over recruitment scam probes to CBI, lifts all interstate restrictions on the movement of essential products. And in weightlifting, India's Ganeshwari Yadav bags a silver and bronze at Asian Senior Championships in Gandhinagar. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support price, MSP, of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet,

0: चर्चा का विषय है।
1: दुनिया की नब्ज पश्चिम एशिया के तेल कुओं की धड़कनों से जुड़ी है। जब इन धड़कनों में युद्ध का शोर सुनाई देने लगे तो वैश्विक बाजार की सांसें फूलने लगती हैं। लाल सागर की लहरों से लेकर तेल के टैंकरों के बदलते रास्तों तक, आज एक बार फिर दुनिया ब्लैक गोल्ड यानी कच्चे तेल की अस्थिरता के मुहाने पर खड़ी है। जब हॉर्मूज की जलधारा में हलचल होती है तो दिल्ली, मुंबई और हर भारतीय शहर की सड़कों पर उसकी गूंज सुनाई देती है। लेकिन 2026 का भारत कल की तुलना में कहीं अधिक सजग है। आज हम केवल तेल के दाम गिरने का इंतजार नहीं करते, बल्कि ऊर्जा के नए विकल्पों और सामरिक भंडारों से अपनी सुरक्षा की दीवार ऊंची कर रहे हैं। नमस्कार, चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम एशिया संकट और ऊर्जा बाजार, उभरती चुनौतियों के बीच भारत की तैयारियों पर। आज के कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत पश्चिम एशिया के इस झटके को सहने के लिए तैयार है और कैसे हमारी एनर्जी डिप्लोमेसी वैश्विक राजनीति के नए समीकरण लिख रही है। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व सीएमडी ओएनजीसी के सुभाष कुमार और ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू।
3: थैंक्स।
1: सुभाष जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। और हम सब जानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है। जो इस समय हॉर्मूज की मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत की जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति है, जिसमें रूस, इराक और अमेरिका के बीच जो संतुलन भी है, कितना प्रभावी सिद्ध हो रही है?
3: आनंद जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। एक्चुअली आज के दिन में भारत जो है अपनी सप्लाई के लिए हॉर्मूज पे ओवरली डिपेंडेंट है। इनफैक्ट यदि हम तेल का देखें तो लगभग 80% से ऊपर वो हॉर्मूज से आता है और 40-50% तो गल्फ स्टेट से आता है। एलपीजी का भी इसी हिसाब से देखें तो लगभग सारी एलपीजी इस प्रॉब्लम से पहले गल्फ स्टेट से ही आती थी। तो अब इस हालात में एक्चुअली जो एनर्जी का चीज है, एक और एक एस्पेक्ट है कि इस क्षेत्र में, खाड़ी क्षेत्र में, ना केवल एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट है बट यहाँ पे लगभग 1 करोड़ इंडियंस भी रहते हैं और जो कि इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज रिमिट करते थे। तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए हैं उसमें उन्होंने जो क्रूड जो सोर्सिंग है वो डाइवर्सिफाई की है और इस डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी तरह मॉलिक्यूल्स पे की सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए अमेरिका, लैटिन अमेरिका, रशिया और अफ्रीका से भी तेल जो है इंपोर्ट किया है। तो ये जो सारा एक्शन है ये अभी तक काफी सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि यदि पूरा इफेक्ट इस डिसरप्शन का पड़ता तो शायद सिर्फ इसके भरोसे एक्चुअली इंडिया में तेल और तेल के प्रोडक्ट्स की किल्लत हो सकती थी।
1: पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि रोजमर्रा के जीवन में वो कैसे बदलाव लाकर इस संकट के समय देश और सरकार को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या अपील की है।
4: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें, जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आएं। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा।
1: नरेंद्र जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी बात ऊर्जा की होती है और भविष्य की तरफ हम देखते हैं तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व यानी एसपीआर की भी चर्चा होती है और कई सारे मंत्रालय की तरफ से ये बयान दिया गया कि भारत के पास 74 दिन, 80 दिन, 60 दिन के आसपास का रिजर्व है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम विश्लेषण के नजरिए से देखें तो विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादूर में भारत ने जो अपने नए रिजर्व की खोज की है, क्या आपको लगता है कि अगर युद्ध लंबा चला तो भारत के लिए ये तीन सेंटर्स या कुछ और सेंटर्स एनर्जी शॉक से बचाने के लिए पर्याप्त है?
0: देखिए, हमको देखना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का साइज क्या है। आज हम दुनिया की अगर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो लार्ज इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और किसी भी अर्थव्यवस्था का, खासतौर से अगर आप विकासशील अर्थव्यवस्था है जो भारत है, उसकी जो बैकबोन होती है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो ऊर्जा होती है। बिना ऊर्जा के अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ती है। और जब विकासशील अर्थव्यवस्था जैसी होगी, खासतौर से भारत जैसी, वहां ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती है। हमारे देश में तेल की खपत जो है वो लगभग 3.5% से 4% प्रति वर्ष बढ़ रही है, क्योंकि देश का विकास हो रहा है, क्योंकि प्रगति हो रही है, क्योंकि ज्यादा लोग जो है वो जो गरीबी से बाहर आ रहे हैं, मिडिल क्लास के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए उसकी खपत बढ़ रही है। हम आज की तारीख में लगभग 57 और 58 लाख बैरल तेल प्रतिदिन उसकी हमारे यहाँ खपत है, 5.8 मिलियन रफली बैरल्स पर डे, और उसका भारी मात्रा में लगभग 53 लाख बैरल हम आयात करते हैं लगभग 42 अलग अलग देशों से। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे सामने जो है दुविधा ये होती है, क्या हम जो विकास की गति है उसको रोकें, या वो लोग जिनको अभी भी और ऊर्जा की आवश्यकता है क्या उनको हम रोक सकते हैं, या किस हिसाब से हम ऊर्जा का इस तरह का प्रयोग करें।

0: जिससे कि हमारे को दिक्कत ना हो। जहां तक अब युद्ध जो है ये भारत ने तो शुरू नहीं किया, जैसे जो कोविड था, कोविड की शुरुआत चाइना से हुई थी, ये युद्ध तो फारस की खाड़ी से शुरू हुआ है, खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो है सबसे बड़ी दिक्कत वहां से आ रही है। तो ऐसे में भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है, ऊर्जा का उपभोक्ता है, दूसरा सबसे बड़ा आयातक है और भारी तेजी से जो आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो हमारे सामने चुनौती ये हो जाती है हम इसको कैसे देखें। जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की आपकी बात करी गई, स्ट्रेटेजिक रिजर्व इसलिए बनाए जाते हैं कभी कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए कि देश के अंदर जो तेल लाने में जो है डिस्ट्रप्शन हो जाए, मतलब विदेशों से तेल लाने में दिक्कत हो, तो हम उसका प्रयोग कर सके। लेकिन हमारा इतना विशाल देश है और हम इतनी तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है कि हमारी जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जिनको SPR बोलते हैं वो है, लगभग 25 से 28 दिन के रिजर्व हमारे पास वो हैं। इसके अलावा जो तमाम रिफाइनरीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो है ऑयल टैंक फार्म्स होते हैं, उनके अंदर भी हमेशा क्रूड ऑयल जो है और प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम उन दोनों को जोड़ लें तो हमारे पास 50 से लेकर के 55 दिन के रिजर्व तो होते हैं। और दूसरा ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर ऐसे अच्छे रिलेशंस हैं, खासतौर से जो तेल के निर्यातक हैं, ऊर्जा के निर्यातक हैं, कि वह हमने जो है कहीं ना कहीं से हम तेल का इंतजाम हो रहा है। और आज भी भारत उन गिने चुने देशों के अंदर है जहां पे पेट्रोल या डीजल की कहीं कोई किल्लत नहीं है, उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है।
1: जी
0: और दाम भी भारत में अगर आप देखें अन्य देशों के मुकाबले तो काफी हुए। तो चूंकि हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं, और दूसरी बात एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, चूंकि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल के उपभोक्ता हैं
1: जी
0: और दूसरे सबसे बड़े आयातक, हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी होती है टू सिक्योर सप्लाई। लेकिन जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, कुवैत हो गया, इराक, इनके लिए आवश्यक होता है भारत से अच्छे संबंध रखें, क्योंकि उनकी एनर्जी सिक्योरिटी डिमांड से ताल्लुक रखती है। और डिमांड कहाँ सबसे ज्यादा पैदा हो रही है, वो भारत में। पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड का लीडर आज कौन है, वो भारत है। तो वो भी भारत से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, इसलिए ये भी हमको सिक्योरिटी देता है। आपने जिक्र किया एनर्जी डिप्लोमेसी का, साथ में मैंने आपको ये बताया कि हिसाब से उनके लिए भारत एक हम बाजार है, इसलिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमारा अभी तक जो देखा जाए, अब बहुत लंबा युद्ध चलता है, डिस्ट्रप्शन बहुत बड़ा हो जाता है, वो तो भविष्य के गर्भ में है, उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आज के धरातल पे जब मैं देखता हूं, ठीक है, तैयारी हमको चाहिए, कंजर्वेशन हमको करना है, तेल को हमको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन पैनिक बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है।
1: जी बिल्कुल, आपने जिस तरफ चर्चा को आगे बढ़ाया कि भारत के पास अभी पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि भारत के पास आने वाले कुछ महीनों के लिए रिजर्व मौजूद हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements. I am amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35 or 36,000 metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
1: सुभाष जी, भारत सरकार लगातार कुछ नए प्रयोग कर रही है और इसी दिशा में आज कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया कि जो कोल गैसीकरण परियोजना है उसको बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत स्वच्छ कोयला उपयोग, ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता कम होगी। हम सब जानते हैं कि आज के समय में जब तेल बिल्कुल अस्थिर हो गया है, उसकी कीमतें और रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे में दूसरे विकल्पों पर हम ध्यान दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पहल को जो आज कोल गैसीकरण योजना को मंजूरी दी गई है?
3: जैसे कि तनेजा जी ने पहले ही बताया था कि भारत एक तेजी से विकसित होती हुई इकोनॉमी है और लगभग थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल और गैस का, तो इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी का है। और इकोनॉमी को यदि ग्रो करना है तो उसके लिए एक असेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो है एनर्जी। और लकीली इंडिया में कोयले के काफी विशाल भंडार हैं, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी पहल है कि हम कोल गैसिफिकेशन, अपने इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं उसको किसी तरह इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मैनर में यूज कर पाए। बिकॉज कोल के साथ जनरली ये कहा जाता है कि उससे एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है, एमिशन रेट इज वेरी हाई, बट यदि कोल गैसिफिकेशन होता है इंस्टीट्यूट तो आपको ना तो बड़ी बड़ी खदानें खोदनी पड़ेंगी और ना ही उसका जो एमिशन है वो एक पॉइंट के बियॉन्ड जाएगा। इनफैक्ट उससे ये होगा, आपको दोनों एक टाइमली एनर्जी भी मिल जाएगी और एमिशन लेवल जो है ग्रोथ के लिए

0: और यदि डोमेस्टिक है तो ये सोने पे सुहागे की तरह है।
1: हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कोयला गैसीकरण आपके लिए अगर नई चीज है तो ये होता क्या है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोयले को उच्च तापमान और दबाव पर ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से युक्त सिनी गैस प्राप्त होती है जिसे औद्योगिक उपयोग के लिए संसाधित किया जा सकता है। ये पहल भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत प्राकृतिक गैस, उर्वरक और रसायनों के आयात पर निर्भरता को कम कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना है। इस योजना के तहत प्रोजेक्ट का चयन एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है। और इसी पर और जानकारी दी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामूहिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है, कोल गैसिफिकेशन की स्कीम। इस गैस से आगे उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से एलपीजी का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी निकाले जा सकते हैं। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है और ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का बड़ा इंश्योरेंस बनता है।
1: नरेंद्र जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में इथेनॉल ब्लेंडिंग और ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर दिया है। क्या ये ग्रीन फ्यूल्स आने वाले समय में, चाहे शॉर्ट टर्म की ही हम बात करें, कच्चे तेल की कीमतों के झटके को सहने में हमारी मदद कर सकते हैं?
3: कि हम बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है जैसे मैंने पहले कहा, और हमारी अर्थव्यवस्था जो है कुल मिलाकर के फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है। फॉसिल फ्यूल का मतलब हुआ तेल, गैस और कोयला, कोयला भी फॉसिल फ्यूल होता है। पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था 80% आज की तारीख में भी वो फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है, लेकिन क्योंकि हमारी निर्भरता तेल पे, गैस पे बहुत ज्यादा है अन्य देशों के मुकाबले अगर आप देखें तो, इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे रिसोर्सेज को ढूंढें जिससे हमारी आयात पर निर्भरता कम हो सके। हालांकि ये अलग बात है कि हमारी आयात पर निर्भरता एकदम कम होने वाली नहीं है, इसलिए क्योंकि हम बहुत तेजी से हमारा विकास हो रहा है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से उसका विस्तार हो रहा है, इसलिए आने वाले समय में हमारे देश में तेल की जो जरूरत है वो भी बढ़ने वाली है, गैस की भी बढ़ने वाली है और कोयले की भी बढ़ने वाली है। लेकिन साथ में जो है हमने इथेनॉल जो ब्लेंडिंग करके उसमें जो लगभग 20% पेट्रोल में भी वो किया जाता है, डीजल में नहीं किया जाता, पर उससे हमने आयात में थोड़ी सी निर्भरता जो है कम करी है। ठीक उसी तरीके से जो देश होता है वो भविष्य की तरफ भी देखता है और जिसमें हाइड्रोजन को एक ऐसी ऊर्जा माना जाना है कि आने वाले समय के अंदर जो हमारा मिशन है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस मतलब ऊर्जा की स्वतंत्रता हमको चाहिए 2047 तक, 2047 तक, उसमें हाइड्रोजन जो है एक फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है और उसमें बड़ी भूमिका वो निभाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें जिसका भी मैंने जिक्र किया, इसका जो ये भविष्य के बारे में ज्यादा है, भविष्य का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100 साल बाद, लेकिन अभी इनको थोड़ा समय लगने वाला है, हाइड्रोजन का को भी समय लगने वाला है, लेकिन ये है कि देश उस तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो सबसे जरूरत चीज ये है वो है कि इस समय हमारी सरकार की कोशिश कि जो ऊर्जा की गरीबी के नीचे के लोग हैं उनको कैसे ऊर्जा उपलब्ध कराया जाए, उसके तहत एलपीजी हरेक को दी गई उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत, साथ में भी ये कोशिश है कि जो चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो या वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो या जो हमारी ऊर्जा एनर्जी की आवश्यकता है उसके लिए हमको क्या करना है, क्योंकि युद्ध जो है कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता, और खत्म भी हो जाएगा फिर भी उसका जो असर है हमारी अर्थव्यवस्था पे, विश्व की अर्थव्यवस्था पे, वो एक लंबे समय तक रह पाएगा। तो एक तरफ तो सरकार जो है इस बात की तैयारी कर रही है, फ्यूचर के लिए तैयारी हो रही है, भविष्य की तैयारी हो रही है, लेकिन साथ में जो वर्तमान है, वर्तमान में भी पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां से जो है तेल लेके आया जा सकता है, प्राकृतिक गैस लेके आया जा सकती है, उसको लाया जा रहा है। उसके लिए दो चीजों का प्रयोग करा जा रहा है, एक तो ये कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जो हमारी गुडविल है, जो G20 में हमारा दबदबा है, और उसके अलावा विकसित देशों में भी जो हमारा अच्छे संबंध है जैसे क्वाड के अंदर है, उसको साथ में, इसके अलावा ब्रिक्स के अंदर है, आपको पता है ब्रिक्स की मीटिंग भी विदेश मंत्री की जा रही है, जहां भी एक विषय रहने वाला है, वो सबका यूज करा जा रहा है जिससे कि जो तेल की जो सप्लाई है उसमें किसी तरह की बाधा ना आए।

0: तो इस समय सरकार का सबसे बड़ा फोकस है कि सप्लाई डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, और भारत तो उन गिने चुने देशों में है, खासतौर से विकासशील दुनिया में या ग्लोबल साउथ में, जहां अभी तक सप्लाई का डिसरप्शन आपने नहीं देखा है, खासतौर से तेल को लेकर के। एलपीजी में थोड़ी चुनौतियां आई हैं, लेकिन उसको भी काफी हद तक एड्रेस कर दिया गया है, काफी हद तक। तो मेरा ये मानना है कि हमको दो चीजें, एक तो प्रेजेंट और एक साथ में मीडियम टू लॉन्ग टर्म, और दूसरा फ्यूचर, ये तमाम चीजें जिसमें हमने जो कोल गैसिफिकेशन की बात करी, ये जो है मीडियम टारगेट्स में ज्यादा आती हैं और लॉन्ग टर्म की तैयारी में आती है, कि आज से अगर 15 साल बाद, 10 साल बाद वो हालात पैदा जो आज हैं, तो हम जो है काफी हद तक उसमें बिना किसी घबराहट के उसका जो है जो सोल्यूशन है वो देश के अंदर ही ढूंढ पाए। देखिए, हमको ध्यान रखना पड़ेगा जो ऊर्जा सुरक्षा है, एनर्जी सिक्योरिटी, वो आर्थिक सुरक्षा या इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बुनियाद होती है, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद होती है। अगर आप तीनों सिक्योरिटीज को देखते हैं, सबके बॉटम में या बुनियाद में वो एनर्जी सिक्योरिटी होती है। एनर्जी के बिना कुछ नहीं मूव करता, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो या समाज हो, मोहल्ला हो, शहर हो, देश हो, बिना एनर्जी के कुछ नहीं चलता। और इसलिए सरकार की पूरी कोशिश है कि दुनिया में चुनौतियां आती रहती हैं, ये तो सुनामी जैसी चुनौती है, तमाम अर्थशास्त्री इसको जो है एनर्जी कोविड के नाम से बुला रहे हैं, यूरोप में कुछ अर्थशास्त्री इसको जो है इकोनॉमिक कोविड के नाम से बुला रहे हैं, लेकिन भारत ने जिस जिम्मेदारी और मुस्तैदी से इसका जवाब दिया है, देश को तैयार किया है। और अब अगर प्रधानमंत्री की स्पीच को देखें, तो प्रधानमंत्री ने आम जनता से संवाद किया है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करी है खुले प्लेटफॉर्म पर। प्रधानमंत्री की ब्रेनस्टॉर्मिंग और संवाद यह है, दुनिया में ऐसा ऐसा हो रहा है और हमको उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है इतनी जरूरत ना पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री वो देश से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, खुल के जैसे डेमोक्रेसी में होना चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि दुनिया के हालात क्या हैं और हम जो है कैसे कैसे हमने जो है इसकी तैयारी करनी चाहिए, उनके विचार जो है वो आम आदमी से साझा कर रहे हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं।
1: जी हाँ, बिल्कुल। और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की है और आने वाले वर्षों में हमें इसमें और सफलता मिलने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ग्रीन हाइड्रोजन विल अल्टीमेटली सक्सीड वेयर देयर इज लोकल डिमांड, देयर इज लोकल प्रोडक्शन एंड देयर इज लोकल कंजम्पशन, एंड देयर आर नॉट मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड एज यूनिकली क्वालिफाइड as India is to make that happen. We set ourselves a target of producing 5 million tons of green hydrogen annually by 2030, supported by strong policy frameworks and a significant financial outlay.
1: सुभाष जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब पश्चिम एशिया का संकट है और दुनिया के कई देश प्रभावित हो रहे हैं और भारत भी इससे अलग नहीं है, ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आने वाले समय में आप और किस तरह की पहल की उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या निजी कंपनियों की तरफ से?
3: जी, ये आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया। एक्चुअली जहाँ तक ऊर्जा सुरक्षा की बात है और जिस तरह का ये क्राइसिस है, उसमें सबको आगे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो अपने स्तर पे इमीडिएट बेसिस पे कर सकती थी वो कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अभी क्योंकि देश को आगे बढ़ना है और उसके लिए बड़ी क्लैरिटी है कि अगले 25 साल में कहाँ जाना है और 2070 तक कहाँ जाना है, वो क्लैरिटी है। तो इसके लिए मैं जो कुछ चीजें समझता हूँ कि बहुत जरूरी है, एक तो जो एनर्जी एफिशिएंसी है, टू बी एबल टू जो एग्जिस्टिंग एनर्जी जितनी कंज्यूम हो रही है उससे जितना ज्यादा से ज्यादा वर्क या आउटपुट ली जा सके, दैट शुड बी आइटम ऑन प्रायोरिटी। जो दूसरा इशू है वो जो डोमेस्टिक एंडोमेंट्स है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उनको किसी तरह यूज करके यदि हम अपनी जो ऊर्जा की सप्लाई है उसको बढ़ा पाए। और इसमें मिसाल जैसे आपने एथेनॉल की दी, मैं एक्चुअली उससे एक स्टेप और आगे जाऊंगा। सीबीजी एक ऐसा पोटेंशियल है जो आइडेंटिफाइड है और 15 मिलियन टन का गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सतत प्रोग्राम एनविसेज किया था। टोटल पोटेंशियल जो है वो लगभग 62 मिलियन टन का है। तो अब क्योंकि इस तरह की स्थिति में वो एक एरिया होगा जहां हम ट्रिगर करें और जो सीबीजी का पूरा पोटेंशियल है उसके यूज करें, और ये सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन होगा फॉर द रीजन के सारा कंट्री लकीली सीजीडी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो आपको सेपरेट सप्लाई चेन्स नहीं बनानी है, सप्लाई चेन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। यदि आप डोमेस्टिक सप्लाई को बढ़ा सकते हैं तो देश को ही जो किसान है और जो गांव है हमारे, क्योंकि सीबीजी लार्जली उन एरियाज में प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक साधन बनेगा। तीसरा जो है, जो देश में बाकी जितने साधन है, चाहे वो हाइड्रोजन की बात हो रही है, आपकी सोलर की बात है, या इवन थर्मल पावर की।

0: बात है, सब जो है वो इस टाइम ट्रिगर करने के लिए एक दीर्घकालीन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आगे कोई इस तरह का डिसरप्शन आता है। ऑफ कोर्स इस बार भी इंडिया ने उसको बड़ा बखूबी फेस किया है, पर क्योंकि आने वाले समय में 10 साल बाद लेट से यदि इकोनॉमी 2.5-3 गुना हो जाती है, तो उस स्थिति में आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम से कम दुगनी होगी, और यदि वो दुगनी होगी तो आप डोमेस्टिकली कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो होना चाहिए। और एक जो बात है, जो पिछले कुछ सालों में अच्छा भला देश ने काफी ऑयल और गैस प्रॉपर्टीज भी काफी एक्वायर की थी दुनिया में, और वो एक बहुत बड़ा कुशन की तरह काम कर सकती हैं, तो हमें स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ऑफ एसेट्स जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यदि आप कोशिश करिए कि आपका अपने रिसोर्सेज हो, पर यदि वो बाई चांस आपके वो एडिक्वेट नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आपको ग्लोबली इतनी ओनरशिप है कि जब जरूरत पड़े तो आप इंडिया को भेज सकें। तो और कोल गैसिफिकेशन तो एक बहुत ही बढ़िया कदम है जो उठाया जा रहा है, और यदि इसका ही भी पोटेंशियल और कंट्रीब्यूशन काफी रहेगा।
1: जी,
0: तो मैं सोचता हूँ ये 4-5 चीजें डेफिनेटली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में होंगी, और काम ऑलरेडी चल रहा है, तो ये काफी कंट्रीब्यूट करेंगी एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ।
1: और हम बात कर रहे हैं ऊर्जा सुरक्षा की, और देशवासियों की चिंताओं को लेकर लगातार अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन हो रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत की क्या स्थिति है ऊर्जा को लेकर।
2: वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते जैसा आप जानते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति वर्ल्ड सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हुए हैं ऊर्जा आपूर्ति में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी प्राइस वॉलेटिलिटी देखी जा रही है, परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंट्री मेंटेन है, टाइड अप है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही है, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं, और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है।
1: नरेंद्र जी, कार्यक्रम में समय बहुत ज्यादा नहीं है, आपसे एक सवाल पर संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहेंगे कि तेल की कीमतों में जो अस्थिरता का असर हो रहा है भारतीय रुपए और करंट अकाउंट डेफिसिट पर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि तेल व्यापार के लिए रुपया पेमेंट मैकेनिज्म, जिसकी चर्चा कुछ समय से चल रही है, इसको और प्रभावी बनाने से कुछ राहत मिल सकती है?
3: नहीं, अच्छा प्रश्न है और काफी इसकी चर्चा भी है, लेकिन ये जो हमारे जो कुल मिला के संबंध है पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों से, उस पर डिपेंड करेगा हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं। अमेरिका से हमारे बड़े अच्छे संबंध है, सामरिक संबंध है और लॉन्ग टर्म संबंध है, हम क्वाड के मेंबर हैं और अमेरिका को हम चाहते हैं या ज्यादा और निवेश करे, और वो जो फ्री वर्ल्ड जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, उसका अमेरिका काफी उसमें दबदबा है, और अमेरिका जो है वो पेट्रो डॉलर को मजबूत रखना चाहता है, वो बड़ी आपत्ति करता है अगर कोई लोकल करेंसीज में तेल खरीदता है, लेकिन हमको अपने राष्ट्रीय हित देखने हैं, और पिछले दिनों को हमने रूस के साथ तमाम जो डील हुई है उसमें रुपए की बड़ी भूमिका रही है, और इस तरीके की बातचीत कुछ अन्य देशों से भी चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर के हमको बैलेंस बना के चलना होता है राजनीति के अंदर, क्योंकि तेल के बारे में कहा जाता है तेल 90% जियोपॉलिटिक्स है, तो उसमें हमको उसको भी बैलेंस रख के चलना है, लेकिन के साथ साथ मुझे लगता है आवश्यक हमारे लिए ये है कि हम एक लॉन्ग टर्म जो हमारा प्लान रहेगा उस पर और थोड़ा जोर डालें, देश के अंदर जो तेल का खनन है, उत्पादन है, उसको और इंसेंटिवाइज करें, विदेशों में जाकर के जहां भी तेल के भंडारों में हम हिस्सेदारी खरीद सकते हैं उसको थोड़ा और एग्रेसिवली खरीदें, और साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी को हम काफी जोर दे ही रहे हैं, लेकिन हमको ये भी साथ में समझना पड़ेगा कि हमारी देश का जो प्रगति है, जो हमारा विकास, उससे तो हम समझौता कर नहीं सकते, और आने वाले समय के अंदर हमें और तेल की जरूरत पड़ेगी हमारी अर्थव्यवस्था को, और गैस की भी जरूरत पड़ने वाली है, और ये सारा कुछ सौभाग्य से हमारे आसपास के देशों में उपलब्ध है, खासतौर से खाड़ी के देशों में। एक नया वेस्ट एशिया बनेगा ये जब भी युद्ध समाप्त होता है, ईरान की अर्थव्यवस्था शायद खुलेगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से जो है वहां नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सऊदी अरब का रवैया जो बड़ा कड़ा रहा है वो थोड़ा नरम पड़ेगा, तो मुझे लगता है हमारे देश के आसपास ही नई संभावनाएं जो है उनका शीघ्र जन्म होगा, और हमको देखना पड़ेगा क्या वहां से हम पाइपलाइन बना सकते हैं या हम अपने एलएनजी टैंकर बना सकते हैं, अपने टैंकर्स बना सकते हैं, बहुत सारी इसमें चीजें हैं, तो मुझे लगता है युद्ध तो है, लेकिन युद्ध में हमको देखना है कि अवसर क्या है, और हमारे इतने अच्छे संबंध हैं तमाम देशों से जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, और साथ में हमारी जो भारत की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, अपने विजन में बिल्कुल क्लियर है, तो मुझे लगता है कि हमको चिंता का विषय नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि समय के साथ साथ जरा थोड़ा हमको इस दिशा में खासतौर से एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ थोड़ा और स्मार्टली और तेजी से बढ़ना पड़ेगा।
1: जब हमारे आपके परिवार पर संकट आता है तो हम अपने अभिभावकों की तरफ देखते हैं और उनके दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी समझते हैं। जब पश्चिम एशिया में संकट है तो भारत के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वो टीम इंडिया की तरह एकजुट होकर इसका सामना करें। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
4: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा, हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
1: कहते हैं संकट ही समाधान की जननी है। पश्चिम एशिया की ये चुनौतियां भारत को याद दिलाती हैं कि हमारा रास्ता आत्मनिर्भरता की ओर ही जाता है। चाहे वो हमारी सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, रेलवे का सोलर विजन हो या फिर रेगिस्तानों के नीचे छुपा हमारा सामरिक तेल भंडार, भारत अपनी सुरक्षा की कहानी खुद लिख रहा है। पश्चिम एशिया की रेत में भले ही हलचल हो, लेकिन भारत का संकल्प अडिग है। हम न केवल इस संकट से उबरेंगे बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया को एक नई राह भी दिखाएंगे। सुभाष जी आपका, नरेंद्र जी आपका आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
3: थैंक यू,
0: धन्यवाद।
1: आप ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
5: चर्चा का विषय है

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है मासिक उड़िया कार्यक्रम

0: मासिक उड़िया कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे प्रतिभा साहू के द्वारा रचित कुछ कविताएं, साथ ही सस्मिता पात्रो के द्वारा लिखी गई कहानी भी आप सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। तो आइए आरंभ करते हैं प्रतिभा साहू की इन कविताओं के साथ।
1: नमस्कार प्रिय श्रोतागण को आमर यही ओडिया कार्यक्रम रे मो प्रतिभा साहू स्वागत जनाऊ। आज मु मोर स्वरचित किसी कविता आपण को पढ़ी शुणाइवा को चाहूँगी। प्रकृतरे कवितार भाव समस्त हृदय रे फुटी थाए, किंतु किए लेखे नहीं। जदि ताहा लेखा हो जाए तेबे ताहा एक अर्थपूर्ण मुहूर्त सह आंतरिक अनुभूतिर निविड़ परिप्रकाश साजी कवितार रूप निए ओ मन को आंदोलित करिथाए। सेई साउंटी नेथिबा कविता मध्यरु मु आरंभ करुची मोर प्रथम कविता जहा ओडिसार ठाकुर जगतर नाथ जगन्नाथंक पाई उत्सर्गीकृत। कवितार ना बड़ ठाकुर। हे जगन्नाथ बड़ ठाकुर, हे जगन्नाथ बड़ ठाकुर, बड़ नाम तोर बड़ दांड भी तोर, तेबे किंपा नाही मो पाई बड़ दया तोहर। महाप्रभु बोलाई महाप्रसाद देऊ खुआई, महाप्रभु बोलाई महाप्रसाद देऊ खुआई, तेबे किंपा नाही मो पाई महा औषधि

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसके तहत आइए आज सुनते हैं शहनाई वादन। कलाकार हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खान। राग है बिहाग। तो आइए सुने राग बिहाग में उस्ताद बिस्मिल्ला खान का शहनाई वादन।

अभी आप सुन रहे थे शहनाई वादन, कलाकार थे उस्ताद बिस्मिल्ला खान, राग था विहाग। इसके साथ ही हमारा आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रति वर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। CBI ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव CB जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। IPL क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष्ण रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by R.S. Raghu. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP, for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnaw said, the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesamum. He said, for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera semi-high-speed double-line project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. Prime Minister Narendra Modi has said that the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price MSP for Kharif crops for the marketing season 2026-27 will ensure that crores of food providers in the country receive fair and profitable prices for their produce. In a social media post, Mr. Modi said that this decision will bring greater prosperity to the lives of the farmers of the country. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested five accused persons in connection with the alleged irregularities and paper leak related to the NEET UG 2026 examination. The five accused persons in the case, three from Jaipur, one from Gurgaon, and one from Nashik, and several other suspects are currently being examined. The agency has also carried out searches today at multiple locations across the country based on emerging leaks. During the searches and arrests, several incriminating materials and electronic devices, including mobile phones, have been seized. The agency is also coordinating with the Special Operations Group Rajasthan, which had conducted a preliminary inquiry in the case. Prime Minister Narendra Modi's appeal to reduce the consumption of fuel has made a profound influence, resulting in curtailing the use of petrol and diesel. Setting an example, the Prime Minister himself significantly reduced his convoy size, prompting several BJP chief ministers and other leaders to adopt similar measures. In keeping with the Prime Minister's appeal, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has directed an immediate 50% reduction in the fleet of vehicles. Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav has also announced that he will use a minimum number of vehicles for his convoy and asked his ministerial colleagues to do the same. Delhi Chief Minister Rekha Gupta has announced limits on official vehicles used by ministers, MLAs and other public representatives. Rajasthan Chief Minister Bhajan Lal Sharma also announced to reduce his convoy's size. Gujarat Governor Acharya Devrat announced that he will travel within Gujarat using trains, state transport buses and public transport. Bihar Deputy Chief Minister Vijay Kumar Chaudhary has announced that he will undertake official travel only when necessary. Foreign Minister of the Islamic Republic of Iran, Sayyed Abbas Araghchi, arrived in New Delhi this evening to participate in the meeting of the foreign ministers of the BRICS member country. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders have set a target of 193 runs for Royal Challengers Bengaluru and Raipur. In reply, RCB were 71 for 1 in 7.1 overs when reports last came in. Put into bat first, Kolkata Knight Riders posted 192 for 4 in the stipulated 20 overs. Earlier, Royal Challengers Bengaluru won the toss and elected to field after rain and a wet outfield delayed the start of the match. In weightlifting, India's Gyaneshwari Yadav bagged two medals, a silver and a bronze at the Asian Senior Championship in Gandhinagar today. And that is the end of this news bulletin.
3: एफ एम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। अब संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। इसी फ्रिक्वेंसी पर कल प्रातः 5:55 पर हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। शुभ रात्रि। जय हिंद।